पूर्ण सर्वाग्यु जो किस करता है कारण कीनो मन बुरो ना लागेउ साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जागेउ जन नानक ओड़ तुहारी परयो आयो सरनागेउ नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लागेउ गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन सीतल मन सीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख त्रिशन सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर्मस्तक गुर पूरे तरेओ मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मूके अचरज एक सुनो रे भाई गुरे ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकर जो पेटे हो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एहो अचंभव सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच भये बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते तरनी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद बिचारी महापुरखन इउं कहिया बिन हर भजन नाही निस्तारा सूख ना किन्हू लहिया तीन भवन की लक्ष्मी जोरी बूझत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावै फिर तो पहरे पहरे अनक बलास करत मन मोहन पूरन होत ना कामा जल तो कबहू ना बूझत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारै नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको एह बिद को समझावै करता होए जनावै रहाओ अनजानत किस इन्ह कमानो जप तप कशु ना साधा दह दिस लै इह मन दौरायो कमन कर्म कर बांदा मन तन धन भूम का ठाकुर हौ इसका इह मेरा परम मोह कस सूझस नाही एह पैखर पय पैरा तब इह कहां कमावन परिया जब इह कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपह करता अपने कर्तव्य आपे जानै जिन इहो रचन रचाया कहो नानक करनहार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिथे जप तप संयम कर्म कमाणी एह ओरै मूसे रहाओ वर्त नेम संयम मह रहता तिनका आड़ ना पाया आगे चलन और है पाई ऊहा काम ना आया तीर्थ नाए अर धरनी भ्रमता।

मुख बचनी उच्चरै आगे महल ना पाईए बूझै नाही एक सुधाखर ओहो सगली झाख चखाईए नानक कहतो एहो बीचारा जे कमावै सो पार ग्रामी गुरसेव हो अर नाम त्याव हो त्याग हो मन हो गुमानी गौड़ी माला पंजवा माधो हर हर हर मुख कहिए हम ते कशु ना हुवै स्वामी ज्यो राखो हो त्यों रहिए रहाओ क्या किछ करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो हो तित ही लागा पूरन खसम हमारे करो कृपा सर्ब के दाते एक रूप लिव लावो हो नानक की बेनंती हर पह अपना नाम जपावो राग गौड़ी माज महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दीन दयाल दमोदर राया जीओ कोट जना कर सेव।

गुरमन की आस पुराई जियो, जिन नाओ पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो शोभा बंता जियो, जिस साधु संगत तिस सब सुकरनी जियो, जन नानक सहज समाई जियो, गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस सास सास चितारे जियो, संत देव संत

त्रिभवन सुख परमानंदा जीव सेज सुहावी इहो मन बिकसंदा जीव देख दर्शन इहो सुख लहिया जीव चरण पखार करी नित सेवा।

कहिया जियो, इस पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा।

मारै सुख वसा सच शब्द निशान रहाव सबे गल्ला जातिया सुन कै चुप किया तद ही सुरत न लदिया माया मोहड़िया दे बुझारत सारता से अखी डिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहया इकस दोहो चौहो क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अद नाए रसियड़ा का विरली जाए गुठी भगत सच्चे दर सोहंदे आनंद करह दिन रात रंग रत्ते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौड़ी महला पंजवा मांझ दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराधी है पूरन सतगुर ज्ञान रहाव जित घट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थाव जम कंकर नेड़ ना आवई

गयो गुर, गुर सच्चा सिरजनहार, गुर तुठे सब किश पाया, जन नानक सद बलिहार, गौड़ी माज महला पंजवा, हर राम राम राम रामा, जप पूर्ण होए कामा रहा, राम गोबिंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र, हर जस सुनिए जिस ते सोई भाई मित्र, सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे, क्यों गोविंद मनो विसारी है जिस सिमरत दुख जाए, जिस लड़ लगे जीवी है भवजल पई है पार, मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार, जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास, नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास, गौड़ी बाज महला पंजवा।

आज सब फिक्किया तन मन फिक्का होए, बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोए। अंचल गह कह साधका तरना एहो संसार, पार ब्रह्म आराधी है उदरै सब परवार। साजन बंद समित्र सो हर नाम हिरदय दे, औगण सब मटाए कह पर उपकार करे। माल खजाना थे हो कर हर के चरण निदान, नानक जाचक दर तेरे प्रभ तुदनो मंगे दान। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी महला नौवां, साधो मन का मान त्यागो काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनस भागो रहाओ सुख दुख दोनों सम कर जाने। और मान अपमाना हरख सोग ते रह अतीता, तिन जग तत पछाना। पुस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक एहो खेल कथन है किन्हू गुरमुख जाना। गौड़ी महला नौवा साधु रचना राम बनाई, एक बिनसै एक अस्थर मान अचरज लखियो ना जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई, झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यो सुपना रह नाई। जो दिसै सो सगल बनासै ज्यो बादर की शाई, जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहियो राम सरनाई। गौड़ी महला नौवा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एहन समग्न रहे माया में कहो कैसे गुण गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यो एहे विद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग देख तास उठ धावे। भुगत मुक्त का कारण स्वामी मूड़ता ही बिसरावे, जन नानक कोटन मैं को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नौवा साधु एहो मन गहियो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है या ते थिर ना रहाई रहाओ। कठन क्रोध घट ही के भीतर जेहे शुद्ध सब बिसराई,

प्राणी गौड़ी महल्ला नौवा मन रे कहां भयो तै बवरा अहनस औद कटै नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहा जो तन तै अपनो कर मान्यू हर सुंदर ग्रह नारी इन मैं कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रत्न जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमक ना लीन भयो चरणन सियो बिरथा औद सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावे गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पार रे रहाओ वेद पराण जास गुण गावत तां को नाम ही है मोह धर रे पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर नह पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उतर रे राग गौड़ी अष्टपदियां महला पहला गौड़ी गुआर री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निद सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी विमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिख थाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यो लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा चित हर स्यो राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोए न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रातो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज घर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे समाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना।

कर्म है अमृत तस कर ले, नन्ना कार न कोई करे, राख है आप बड़ियाई दे, नील अनिल अग्न एक ठाई, जल निवरी गुरबूज बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई, जैसा कर बाहर सो तैसा, वैस गुफा में आखों कैसा, सागर डूंघर निरपो ऐसा, मुए को कहो मारे कौन, न डरे को कैसा डर कवन, शब्द पछाने तीने पौन, जिन कहया तिन कहन बखानिया, जिन बूझया तिन सहज पछानिया, देख भी चार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रहया समाई, निज कर व्याप रहया निज ठाई, पुस्तत करह केते मुन प्रीत, तन मन सूचै साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत, गौड़ी गुआरी महला पहला, ना मन मरे न कार्य होय, मन वस दूता दुरमत दोय, मन माने गुरते एक होय, निर्गुण राम गुण वस होय, आप निवार बिचारे सोए रहाओ, मन भूलो बहु चितै विकार, मन भूलो सिर आवै भार, मन माने हर एक अंकार, मन भूलो माया घर जाए, काम बुरु दूर है ना ठाए, हर भज प्राणी रसन रसाए, गैवर हैवर कंचन सुत।

मेल मलाए गुण संग्रह औगण शब्द जलाए गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावे सब दुख निवास मनमुख मूड माया चितवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखे आस मन चंचल धावत फुन धावे साचे सूचे मैल ना भावे नानक गुरमुख हर गुण गावे गौड़ी ग्वार री महला पहला हो मैं करत्या नह सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बगूते भावे दोए सो कमावे तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मांगे नाम बिसारी रहाओ अदिष्ट दिसे ता कहया जाए बिन देखे कहना बिथा जाए गुरमुख दिसे सहज सुभाए सेवा सुरत एक लिवलाए सुख मांगत दुख आगल होए सगल वकारी हार परोए एक बिना झूठे

पौ जोगी निरंजन त्यावे अन दिन जागे सच लिव लावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारी जरा मरण गत गर्भ निवारी आप करे पितरी निस्तारी सतगुर सेवे सो जोगी होए पै रच रह सो निरपो होए जैसा सेवै तैसो होए नर निह केवल निरपो नाओ अनाथ नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म

कामण हितकारी क्रोध बनासै सगल विकारी तत मत खोवै नाम वसारी पर कर चीत मनमुख डोलाए गल जेवरी धंधै लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यों तन विधवा पर को देई काम दाम चित पर वस से बिन पिर त्रिपत ना कबहू होई पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद प्राण पढ़ै सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी त्रिपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरै न लेखै पावै वेस करै बहु भस्म लगावै नाम विसार बहुर पछतावै तू मन हर जियो तू मन सुख नाम बसार सह जम दुख रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर माया मगन परम पद दूर नाम बसारे है सब कूड़ो कूर नेजे वाजे तखत सलाम अदकी कृष्णा व्यापै काम बिन हर जाचे भगत ना नाम वाद अहंकार नाही प्रभ मेला मन दे पावह नाम सुहेला दूजे पाए अज्ञान दुहेला बिन दम के सौदा नहीं हाट बिन बोहित सागर नहीं वाट बिन गुर सेवे घाटे घाट तिसको वाह वाहो जे वाट दिखावे तिसको वाह वाहो जे शब्द सुनावे तिसको वाह वाहो जे मेल मलावे वाह वाहो तिसको जिसका एहो जियो गुर शब्दी मत अमृत पियो नाम वडाई तुद भाणे दियो नाम बिना क्यों जीवा माए अन दिन जपत रहो तेरी सरनाए नानक नाम रते पत पाए गौड़ी महला पहला हऊ मैं करत भेखी नहीं जानिया गुरमुख भगत बिरले मन मानिया हौ हौ करत नहीं सच पाईए हऊ मैं जाए परम पद पाईए रहाऊ हऊ मैं कर राजे बहुतावह हऊ मैं खपह जन्म मर आवह हऊ मैं निवरै गुर शब्द विचारै चंचल मत त्यागै पंच संघारै अंतर साच सहज घर आवह राजन जान परम गत पावह सच करनी गुर परम चकावै निरपो कै घर ताड़ी लावै हौ हौ कर मरना क्या पावै पूरा गुर भेटे सो झगड़ चकावै जेती है तेती केहो नाही गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही हौ मैं बंधन बंद पवावै नानक राम भगत सुख पावै गौड़ी महला पहला प्रथमे ब्रह्मा कालै घर आया ब्रह्म कमल पयाल ना पाया आग्या नहीं लीनी भरम भलाया जो उपजै सो काल संघारिया

आवत जावत दुख मोह रहाव। अपियो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बहस सहज कर लही है। हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल निश्चल नहीं डोलै। गुरमत साच सहज हर बोलै, पीवै अमृत तत् वरोलै। सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पियो अंतरगत कीनी। गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार। परमहंस सच जोत अपार, जह देखो तह एकंकार। रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुर चरणी। मन ते मन मानिया चूकी अहं भरमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया। हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर ना पारिया। साच महल गुर अलख लखाया, निश्चल महल नहीं छाया माया। साच संतोखे परम चुकाया, जिनकै मन वसिया सच सोई। तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मल खोई। गौड़ी महला पहला, राम नाम चित रापै जाका। उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपो अपाग तुम्हारा। जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा रहाओ, गुरमत राम जपै जन पूरा। तित घट अनहत बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार। से प्रभ राखे कृपा धार, जिन कै हिरदय हर हर सोई। तिनका दर्श परस सुख होई, सर्व जिया मैं एको रवै। मनमुख अहंकारी फिर जूनी भवै, सो बूझै जो सतगुर पाए। हऊ मैं मारे गुर शब्दे पाए, अर्ध उर्द की संध क्यों जानै। गुरमुख संध मिले मन मानै, हम पापी निर्गुण कौ गुण करियै। प्रभ हुए दयाल नानक जन तरियै। सोलह अष्टपदियां ग्वारी गौड़ी किया, गौड़ी बैरागण महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ज्यो गाई को गोयली राख है कर सारा। एहन सुपाल है राख ले आत्म सुख तारा। इत उतराखो दीन दयाला, तो शरणागत नजर निहाला रहा। जह देखो तह राव रहे राख राखन हारा। तू दाता भुगता तू है, तू प्राण अधारा। किरत पया अद ऊर दी, बिन ज्ञान बिचारा। बिन उपमा जगदीश की, बिन सैना अधियारा। जग बिन सत हम देखिया, लोभे अहंकारा। गुर सेवा प्रभ पाया, सच मुक्त द्वारा। निज कर महल अपार को, अपरम्पर सोई। बिन शब्द ते

है अपनो नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कह कड़ुए को मीठा। राते की निंदा करह ऐसा कल मैं दीता। चेरी की सेवा करह ठाकुर नहीं दिस। पोखर नीर वरोली है माखन नहीं रिस। इस पद जो अर्थाए ले सो गुरु हमारा। नानक चीन आप को सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया। गुर किरपा ते बूजी है सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा अष्टपदिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन का सूतक दूजा पाओ। परमे भूले आवो जाओ। मनमुख सूतक कबह ना जाए। जिचर शब्द ना पीजे हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोह आकार मर मर जम्मे वारो वार। सूतक अगन पौने पानी माहे। सूतक भोजन जेता किस खाए। सूतक कर्म ना पूजा होए। नाम रत्ते मन निर्मल होए। सतगुर सेवे सूतक जाए। मरे ना जन्मे काल ना खाए। सास्त सिमरत सोध देखो कोय। विण नामे को मुक्त ना होए। जोग चारे नाम उत्तम शब्द विचार। कल मह गुरमुख उतरस पार। साचा मरे ना आवे जाए। नानक गुरमुख रह समाए। गौड़ी महला तीजा गुरमुख सेवा प्राण अधारा। हर जियो राखो हृदय उर तारा। गुरमुख शोभा।

बहुत चतराई, जो किछ कमावै सो थाए न पाई, आवै जावै थौर न काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजियों लाए बह नित ध्याना, जम पकड़िया तब ही पछताना। बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई।

इहु संसारा नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हूं मैं मारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लप

अहंकारी आप ना चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोहे अत परम पलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रत्ते सदा बैरागी गिरही अंतर साच लिवलागी नानक सतगुरु सेवह सेवड भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिसते उपजे देव मोह प्यासा त्रै गुण भरमे नाही निज करवासा हम हर राखे सतगुरु मलाया अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वाद बखान है सिर मारे जमकाला तापना चीन है बन है पांड पराला मनमुख अज्ञान।

का मोहताज पंडित कहावे, भिख्या राता बहुत दुख पावे, जम का गल जीवड़ा नित काल संतावे, गुरमुख जम काल नेड़ ना आवे, हौ मैं दूजा शब्द जलावे, ना मेरा ते हर गुण गावे, माया दासी भगतां की कार कमावे, चरनी लागे ता महल पावे, सद ही निर्मल सहज समावे, हर कथा सुन है से तनवंत दिस है जुग माही, तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही, सहजे गुण रवह साचे मन माही, पूरे सतगुर शब्द सुनाया, त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया, नानक हौ मैं मार ब्रह्म मलाया, गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा वेद पढ़े वाद वखाणे, अंतर तामस आप ना पछाणे, ता प्रभ पा

रहाउ। गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे, गुर कै शब्द अंतर सहज रीदे। मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे, सतगुर मेले प्रभ आप मलाए। मेरे प्रभ साचे कै मन पाए, हर गुण गावह सहज सुपाए। बिन गुर साचे परम पलाए, मनमुख अंधे सदा बिख खाए। जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की सरनाई। हौ मैं मार सच लिवलाई, सदा रह हर नाम लिवलाई। सतगुर सेव है से जन निर्मल पविता, मन स्यों मन मिलाए सब जग।

ज्ञान सब जग मह लोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसै अन दिन लिव लागी सहजे सच मिलिया परसादी सतगुर पाया पूरे वड भागी हौ मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हृदय रविया चरण निवास जिस नाम दे सोई जन पाए गुरमुख मेले आप गवाए हृदय साचा नाम वसाए नानक सहजे साच समाए गौड़ी मोहल्ला तीजा मन ही मन सवारिया पै सहज सुपाए शब्द मन रंगिया लिवलाए निज कर वस्या प्रभ की रजाए सतगुर सेवया जाए अभमान गोविंद पाई है गुणी निदान रहाओ मन बैरागी जां शब्द पौ खाए मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहया समाए गुर किरपा ते मिले मलाए हर दासन को दास सुख पाए मेरा हर प्रभ इन बिद पाया जाए हर किरपा ते राम गुण गाए त्रिग बहु जीवन जित हर नाम ना लगे प्यार त्रिग सेज सुखाली कामन मोह गुबार तिन सफल जन्म जिन नाम आधार त्रिग त्रिग ग्रह कटंब जित हर प्रीत ना होए सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए हर नाम बिना मैं अवर ना कोए सतगुर ते हम गत पत पाई हर नाम ते आया दूख सगल मटाई सदा आनंद हर नाम लिव लाई गुर मिले हमको शरीर सुध पई हम मैं तृष्णा सब अग्न बुझई बिनसे क्रोध खिमा गह लई हर आपे कृपा करे नाम देवे गुरमुख रतन को बिरला लेवे नानक गुण गावे हर अलख अपीवे एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

मन करहला अत निर्मला मल लागी हूं मैं आई परतख पीर घर नाल प्यारा विछुड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय कित ना लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए कर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुरु गोविंद संभाल रहाओ मन करहला विचारिया मनमुख फाथिया महाजाल गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सत संगत सत गुर भाल सत संगत लग हर त्याई है हर हर चले तेरे नाल मन करहला वड भागिया हर एक नदर निहाल आप छड़ाए छुट्टी है सतगुर चरण संभाल मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत संभाल गुर नौनिध नाम वखालिया हर दात करी दयाल मन करहला तू चंचला चतुराई छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन करहला बड़ भागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़ग हाथ धारिया जम मारियड़ा जमकाल अंतर निदान मन करहले भ्रम भवह बाहर पाल गुर पुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा संभाल हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द संभाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वड भागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी गुआरी महला पंजवा अष्टपदिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब इहो मन मह करत गुमाना तब इहो बावर फिरत बेगाना जब इहो हुआ सगल कीरीना ता तेर मैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मशकीनी सतगुरे अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको इहो जान समंदा तब सगले इस मेल है फंदा मेर तेर जब इन्ह चुकाई ताते इस संग नहीं बैराई जब इन्हें अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किस कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एकी बूझिया तब ते इसनो सब किस सूझिया जब इह तावे माया अर्थी नह त्रिपतावे नह ते सलाथी जब इसते इह होयो जौला पीछे लाग चली उठकौला
कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदर मह दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी, कर्ण करामन सब किश एक है, आपे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना नेरै सब कै संगा, सच सलाहन नानक हर रंगा, गौड़ी महला पंजवां, गुर सेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा, तिसकै हिरदै रविया सोए, मन तन सीतल निश्चल होए, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे रहाउ, जास जपत पहु अपदा जाए, तावत मनुआ आवै ठाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत एह हो मैं भागे, जास जपत वस आवै पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगाह सिजे, जास जपत कोट मिटह अपराध, जास जपत हर होवह साध, जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे, जास जपत रतन हर मिले, बहुर न छोड़े हर संग हिले, जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सहज निवास, जास जपत एह अग्न ना पोहत, जास जपत एहो काल ना जोहत, जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाथा, जास जपत मुश्किल कशु ना बने, जास जपत सुन अनहत तुने, जास जपत एह निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए, गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर तारे, पंच जना स्यो संग निवारे, दस इंद्री कर राखे वास, ता कै आत्मै होए प्रगास, ऐसी दृढ़ता ता कै होए, जाको दया मया प्रभ सोए रहाओ, साजन दुष्ट जाकै एक समान, जेता बोलन तेता ज्ञान, जेता सुनना तेता नाम, जेता पेखन तेता ध्यान।

जपना सहजे पूजन सहजे पाओ सहजे मिटियो सगल दुराओ सहजे हुआ साधु संग सहज मिलियो पार ब्रह्मन संग सहजे ग्रह में सहज उदासी सहजे दुबदा तन की नासी जाके सहज

सहज कथा मह आत्म रसिया तां कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया तां कै कार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयू कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जां कै सहज भया सो जाने नानक दास तां कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवां प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तमन अस्थान जो कबह ना तरे तमन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रै गुण माया बिनस बिताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुरक अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दीसै पासारा बिनस जाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहां सदवसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे तां का विचार कहो नानक जिस कृपा करे निश्चल थान साध संग परे गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वडियाई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुबदा मार गवावे इसह मार राज जोग कमावे रहाओ जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे जो इस मारे सो दरगाह सिजे जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवे गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वडभागा जो इस मारे सो अनदिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परे कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म ना मिटे इस मारी बिन जमते नहीं छुटे इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किस मैला इस मारी बिन सब किस जौला जाको पये कृपाल कृपा निद तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जाकी है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवा हर स्यों जुरे ता सबको मीत हर स्यों जुरे ता निश्चल चीत हर स्यों जुरे ना व्यापै काड़ा हर स्यों जुरे ता हुए निस्तारा।

आस नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदर है। कोट मज्जन जा कै सुन नाम, कोट पूजा जा कै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते बिद जानी। माने अपने मैं फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबनासी

बात एकह आप अनेकह पांत, जांकी दृष्ट होए सदा निहाल, मन मेरे करता की काल, ना को चतर ना ही को मूड़ा, ना को हीन ना ही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस भागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीव है साकत नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन मह जिया, कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाओ, बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिस्ता महवास, बिन सिमरन पय कुकर काम, साकत बेसवा पूत नाम, बिन सिमरन जैसे सींग सतारा, बोलह कूर साकत मुख कारा, बिन सिमरन घर दब की न्याई, साकत थान पृष्ट फराही, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंद ना पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती, जिस भया कृपाल तिस सतसंग मलाया, कहो नानक गुर जगत तराया, गौड़ी महला पंजवा, गुर कै बचन मोहे परम गत पाई, गुर पूरै मेरी पैज रखाई, गुर कै बचन त्यायो मोहे नाम।

गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप। गुर कै बचन मिटिया मेरा भरम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म। गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग। गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाउ निध। जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, तिस की कटिया जम की पासा। गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवां।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत।

करी नमस्कार। काल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी महला पंजवा, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव, नाम बिना त्रिग त्रिग असनेव।

ज्यो मृतक मिथ्या श्रृंगार नाम बसार करे रस भोग सुख सुपन नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावै कोट कर्म करतो नरक जावै हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जम पुरबादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जान ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद ज्यो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहै हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख पूर्ण।

सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग। पूर्ण पुरख नव तन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला। कहो नानक हर हर पद चीन, सर्बस नाम भगत कौ दीन। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। खोजत फिरे

सुन पंत डराओ बहुत पै हारिया मैं तकी ओट संता लेहो उबारिया मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया गुर निव निव लागो पाए देहो देखारिया मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया सब गुण किसे ही नाही हर पूर भंडारिया चहो दिस जपिया नाओ सूख सवारिया मैं आही ओड़ तुहार नानक बलिहारिया गुर काढ़ेओ पुजा पसार मोह कुपारिया मैं जीतेओ जन्म अपार बहुर ना हारिया मैं पायो सर्ब निदान अकथ कथारिया हर दरगाह शोभावंत बाहां लुडारिया जन नानक लद्दा रतन अमोल अपारिया गुर सेवा भौजन करिया कहो पुकारिया गौड़ी महला पंजवां एक ओवंकार सतगुर प्रसाद नारायण हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो रहाओ ताज हों मैं गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो जो दिसै सो संग ना गयो साकत मूड लगे पच मोयो मोहन नाम सदा रब रहियो कोट मदे किनै गुरमुख लहियो हर संतन कर नमो नमो नौ निद पाव है अतुल सुखो नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निधो काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दोहो ते रहियो दुख अंधेरा घर ते मिटियो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो जिन सेविया सो पार परियो जन नानक गुरमुख जगत तरियो महला पंजवां गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए मेरे मन सब सुख पायो रहाओ बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो पावक सागर गहरु चर संतन नाव तरायो ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पुजा अपायो पव खंडन दुख भंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृथ संत उटायो निर्गुण यारे की बेनती देहो दर्स हर रायो नानक सरन तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो गौड़ी महला पंजवां रंग संग बिखिया के भुगा इन संग अंध न जानी हौ संचो हौ खातता सगली अवध बेहानी रहाओ हौ सूरा प्रधान हौ को नाही मुझे समानी जो बनवंत अचार कुलीना मन में हुए गुमानी ज्यो उलझायो बाद बुद्ध का मरत्या नहीं बिसरानी पाई मीत बंदप सके पाछे तिन्हू कौ संपानी जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी अहम बुद्ध सुच कर्म कर एहे बंधन बंधानी दयाल पुरख कृपा कर।

आहार मीठ रस भोग भोजन सब झूठ कितै ना लेखे मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे नानक सा धन मिलै मलाई बिन पिर नींद ना आवे मुंदन मानड़िया जियो बिन धनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन उर तारे नाह बिन कर वास नाही पुछो हो सखी सहेलियां बिन नाम प्रीत प्यार नाही वस है साच सहेलियां सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमती सहु जानिया नानक नाम ना छोड़ै सा धन नाम सहज समानिया मिल सकी सहेलड़ी हो हम पिर रावेहा गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द सनेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया निकस जातो रह अस्थर जाम सच पछाणिया साच की मत सदा नौतन शब्द नेहो नवेलो नानक नदरी सहज साचा मिलो सखी सहेली हो मेरी इच्छ पुन्नी जियो हम कर साजन आया मिलवर नारी मंगल गाया गुण गाए मंगल प्रेम रहसी मुंद मन अमाहो साजन रहसे दुष्ट व्यापे साच जप सच लाहो कर जोड़ सा तन करै बिनती रैन दिन रस पिनिया नानक पिर तन करह रलिया इच्छ मेरी पुनिया गौड़ी चंत महला पहला सुन नाह प्रभु जियो ए कलड़ी बन माहे क्यों ती रहगी नाह बिना प्रभु वे परवाहे तन नाह बाजो रह ना साकै बिखम रैन कनेरिया नह नींद आवै प्रेम पावै सुन बेनंती मेरिया बाजो प्यारे कोई ना सारे ए कलड़ी कुरलाए नानक सा तन मिलै मलाई बिन प्रीतम दुख पाए फिर छोड़ियाड़ी जियो कमण मलावै।

सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुण सारे सतगुर मेली ता फिर रावी बिगसे अमृत बाणी नानक सा धन ता फिर रावे जा तिसकै मन पाणी माया मोहनी नी करिया जियो कूड़ मुट्ठी कूड़ आरे क्यों फूलै गल जेवड़िया जियो बिन गुर अथ प्यारे हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवै उन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल धोवै नाम बिना गत कोई ना पावै हठ निग्रह बेबाण नानक सच कर शब्द सुन्यापै दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जीऊ।

भगत लाहा अन दिनु तिस बाज वखर कोई ना सूजै नाम ले वो खिन खिनु परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक ना

हर के गुण सारे। हिन पल रह न सकै जियो बिन हर प्यारे, बिन हर प्यारे रह न सकै गुर बिन महल न पाईऐ। जो गुर कहे सोई पर कीजै तिसना अग्न बुझाईऐ। हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई, बिन सेवै सुख न पाए नानक सा धन मिलै मलाई जिसनो आप मलाए। धन रैन सुहेलड़िए जियो हर सिओ चित लाए, सतगुर सेवे भाओ करे जियो विचों आप गवाए। विचों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा भाओ, सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द समाओ। हर गुण सारी ता कंत प्यारी नामे तरी प्यारू, नानक कामण नाह प्यारी राम नाम गल हारू। तन एकलड़ी जियो बिन नाह प्यारे, दूजे भाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे। बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे, माया मोहे खुआई कूड़ बगुती तां फिर मुती सा तन महल न पाई। गुर शब्दे राती सहजे माती अन दिन रह समाए, नानक कामण सदा रंग राती हर जियो आप मलाए। ता मिलिए हर मेले जियो हर बिन कमण मलाए, बिन गुर प्रीतम आपने जियो कौन भरम चुकाए। गुर भरम चुकाए इओं मिलिए माए ता सा तन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए, कामण रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे। नानक कामण हर वर पाया गुर कै पाए प्यारे। गौड़ी महला तीजा फिर बिन खरी निमाणी जियो, बिन फिर क्यों जीवा मेरी माई फिर बिन नींद ना आवै जियो। कापड़ तन ना सुहाई, कापर तन सुहावै जां फिर भावै गुरमती चित लाइए। सदा सुहागण जा सतगुर सेवे गुर कै अंक समाइए। गुर शब्दै मेला तां फिर रावी लाहा नाम संसारी, नानक कामण नाह प्यारी जां हर के गुण सारी। सा धन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे, अहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे। गुर शब्द विचारे हमें मारे इन बिद मिलो प्यारे, सा धन सुहागण सदा रंग राती साचे नाम प्यारे। अपने गुर मिल रही है अमृत गही है दुबदा मार निवारे, नानक कामण हर वर पाया।

कूड़ मुठी कूड़ आरी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जुए जन्म ना हारी। गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचो हमे मारी। हर का नाम हृदय बसाए, ऐसा करे सिंगारू। नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू। मिल मेरे प्रीत मां जियो, तुद बिन खरी निमाणी। मैं नैणी नींद न आवे जियो, भावे अन्न ना पानी। पानी अन्न ना भावे, मरिए हावे। बिन फिर क्यों सुख पाईए, गुर आगे करो बिनंती। जे गुर पावे ज्यो मिले तिवे मिलाईए। आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए। नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो। हर कै सहज सुपाए, मन मोहन मोए लिया जियो। दुबदा सहज समाए, दुबदा सहज समाए। कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए। एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल ताई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजै, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन पिरह प्यारी, विचों आप गवाए। कामन पिर पाया जियो, गुर कै भाई प्यारे। रैण सुख सुती जियो, अंतर उर तारे। अंतर उर तारे मिलिए प्यारे, अन दिन दुख निवारे। अंतर महल पिर रावे कामन, गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सुहागण, गुर कै हेत अपारे। आव हो दया करे जियो, प्रीतम यत प्यारे। कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिंगारे। सच शब्द सिंगारे हम मैं मारे, गुरमुख कार्य सवारे। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझै गुर बिचारे। मनमुख काम व्यापी, मोहि संतापी। किस आगे जाए पुकारे, नानक मनमुख थाऊ ना पाए। बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो। फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो। आपे बख्शन हारा, अवगुण बख्शन हारा। कामन कंत प्यारा, कट कट रहे आसमाई। प्रेम प्रीत पाए भगती पाईए, सतगुर बूझ बुझाई। सदा आनंद रहे दिन राती, अन दिन रहे लिव लाई। नानक सहजे हर वर पाया, सा तन नौ निद पाई। गौड़ी महला तीजा, माया सार सबल वरतै जियो। क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहे था जियो। शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए। हर आप लंघाए, इन बिद दुत्तर तरिए। गुरमुख भगत प्राप्त होवै, जीवतियां इउं मरिए। जिन मह राम नाम किलविख काटे, पए पवित शरीरा। नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पए मनूरा। स्त्री पुरख काम व्यापे जियो, राम नाम की बिद नहीं जानी। मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी। डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी, हम मैं तात संसारे। जो आया सो सब को जासी, उभरे गुर विचारे। गुरमुख होवे राम नाम बखाने, आप तरह कुल तारे। नानक नाम बसे घट अंतर, गुरमत मिले प्यारे। राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा। दृढ़ भगत सच्ची जियो।

सेवा सुरत भगत एह साची विचों आप गवाई है। हम मत हीन मूरख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सहावे अन दिन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे। जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए। आपे गुणदाता अवगुण काटे हृदय नाम वसाए। नानक सद बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा।

हर पाए, घर बैठिया हर पाए, सदा चित लाए, सहजे सत सुभाए, गुर की सेवा खरी सुखाली, जिसनो आप कराए, नामो बीजे नामो जम्मे, नामो मन वसाए, नानक सच नाम वडियाई, पूरब लिखिया पाए, हर का नाम मीठा पिरा जियो, जा चाख है चित लाए, रसना हर रस चाख मुइये जियो, अनरस साध गुआए, सदा हर रस पाए जा हर पाए, रसना शब्द सुहाए, नाम त्याए सदा सुख पाए, नाम रहे लिवलाए, नामे उपजे नामे बिनसे, नामे सच समाए।

छोड़ परदेश सदाए दूजै किनै सुख ना पायो पिरा जियो बिखिया लोभ लुभाए बिखिया लोभ लुभाए भरम भलाए ओह क्यों कर सुख पाए चाकरी वडाणी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए माया बंधन टिकै नाही खिन खिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूकै जां गुर शब्दी चित लाए मन मुख मुग्ध गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए माया का भ्रम अंध पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुर पाए मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए नानक नाम रतन जग लाहा गुरमुख आप बुझाए राग गौड़ी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन बैराग भया जियो क्यों देखा प्रभ दाते मेरे मीत सखा हर जियो गुरपुरख बधाते पुरखो बधाता एक श्री तर क्यों मिलह तुझै अड़ीनिया कर करह सेवा आसीस चरणी मन आस दर्श निमानिया सास सास ना घड़ी विसरै पाल।

सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोहे लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास धन क्यों धीरे गुणवंत नाहा दयाल बाला सर्व गुण भरपूरे फिर दोष नाही सुख है दाते हों विछुड़ी बुरियारे बिनवंत नानक दया तार हो कर आव हो नाह प्यारे हों माने अर्पी सब ताने अर्पी अर्पी सब देसा हों सिर अर्पी तिसमीत प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता सीस सुथान गुर पह संग प्रभु दिखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया दिन रहन रलियां करै कामण मिटे सगल अंदेसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ ते हम जैसा मेरा मन आनंद भया जियो वजी वधाई कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया सब मीत बंदप हरख उपजिया दूत थाऊ गवाया अनहत वाजे बजे है कर्म है फिर संग सेज विछाई बिनवंत नानक सहज रह हर मिलिया कंत सुखदाई गौड़ी महला पंजवा मोहन तेरे ऊचे मंदर महल अपारा मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला धर्मशाल अपार दयार ठाकुर सदा कीर्तन गावे जह साध संत इकत्तर होवे तहां तुझे त्यावे कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू मन है एक जी अवर सबराली मन है ता एक अलेख ठाकुर जिन्ह सब कल धारिया तुद बचन गुर कै वस किया आदि पुरख बनवारिया तू आप चलिया आप रहिया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक सरन तुम्हारिया मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्श ध्याना मोहन जम नेर ना आवै तुद जपहै निधाना जम काल किनको लगै नाही जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराध है से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगियाना बिनवंत नानक राज निश्चल पूरन पुरख भगवाना मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे तारिया जहान लहिया अभमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुद नो धन कहया तिन जम नेड़ ना आया बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही सतगुर पुरख मरारी बिनवंत नानक टेक राखी जित लग तरिया संसारी गौड़ी महला पंजवां सलोक पतत असंख पनीत कर पुनः पुनः बलिहार नानक राम नाम जप पाव को तिन किल बिख दाहनहार संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधु त्याए मना मरार मुकंदे कटिए काल दुख फादु दुख हरन दीन सरन श्री तहर चरण कमल अराधियै जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर निमक सिमरत साधियै कल मलै दहता शुद्ध करता गिन सरैण अराधु बिनवंत नानक करहु कृपा गोपाल गोविंद माधु सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर
भगत वत्सल बिरदाया। भगत वत्सल पुरख पूरन मन है चिंदिया पाईए, ताम अंध कूप ते उधार है नाम मन वसाईए। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनक भगती गाया, बिनवंत नानक करहु कृपा पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन तारी, करुणा में समरथ स्वामी कट कट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम अपारू, शरण जोग समरथ मोहन

पूर्ण काला बिनवंत नानक इच पुन्नी जपत दीन दयाला गौड़ी महला पंजवा सुन सखिए मिल उदम करेहा मनाए लह हर कंत मान त्याग कर भगत ठगौरी मोह है साधु मंत सखी वास आया फिर छोड़ ना जाई एह रीत भली भगवंत है नानक जरा मरन पै नरक निवार पनीत करे तिस जंत है सुन सखिए एह भली बिनंती एहो मतांत पकाइए सहज सुपाए अपाद रहत हुए गीत गोविंद गाइए कल कलेश मिट है ब्रह्म नास है मन चिंदिया फल पाइए पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम त्याइए सखी इश करी नित सुख मनाई प्रभ मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सबाए खोज लहो हर संत जना संग समर्थ पुरख मलाए नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता से वड भागी माए सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे मेरा मन तन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद पली मैं आपनड़ा फिर मिलिया प्रम खोयो शांत सहज स्वामी प्रगास भया कौल खिलिया वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सुहाग ना टलिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौड़ी बावन अखरी महला पंजवा सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंदप सुहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेस गुरुदेव मंत नरोदरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित्र करा गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक आप है किया कराया आप है कर्म जोग नानक एको रब रहया दूसर हुआ ना होग पौड़ी ओं साध सतगुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपह सुन आपह सुख आसन आपह सुनत आप ही जासन आपने आपह उपायो आपह बाप आप ही मायो आपह सूखम आपह असथूला लखी न जाई नानक लीला कर कृपा।

एक बखाननो, नानक एक अनेक पौड़ी। ओं गुरमुख कियो अकारा, एक है सूत परो मनहारा। पिन पिन त्रै गुण बिस्थार, निर्गुण ते सरगुण दृष्टार। सगल पांत कर करह अपायो, जन्म मरण मन मोह बढ़ायो। दुहू भांत ते आप नरारा, नानक अंत न पारा वारा। सलोक से सहा भगवंत से, सच संपै हर रास। नानक सच सोच पाई है, तेहे संतन कै पास। पवड़ी ससा सत सत सत सो, सत पुरख ते भिन्न ना को। सो सरन परै जिह पायं, सिमर सिमर गुण गाए सुनायं। संसय परम नहीं कछ व्यापत, प्रगट प्रताप ताहू को जापत। सो साधु एह पहुंचन हारा, नानक ता कै सद बलिहारा। सलोक धन धन।

होत जात सब तूर पवणी तद्दा तूर पुनीत तेरे जनुआ तन तेऊ जे रुच या मनुआ तन नहीं बाछ है सुरगना आच है अच प्रिय प्रीत साध रज राच है धंधे कहा व्यापहता हूं जो एक शाद अन कत ना जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक भेख अर ज्ञान ध्यान मन हठ मिलियो ना कोय कहो नानक कृपा पई भगत ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों अनक जुगत शास्त्र कर पातों ज्ञानी सोए जाकै दृढ़ सो कहत सुनत कस जोग ना हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै उसन सीत समसर सब ताकै ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा तारी सलोक आमने आए सृष्ट मह बिन बूजे पस ढोर नानक गुरमुख सो बुझे जा कै भाग मथोर पौड़ी या जुग मह एक को आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मह उर्द तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देव नहार मन है बिसराना तारु कृपा जिसह गुसाई इत उत नानक तिस बिसरहो नाही सलोक आवत हुक्म बनास हुक्म आग्या पिन्ना कोए आमन जाना ते मिटे नानक जिहे मन सोए पौड़ी एऊ जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जो नफासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कश कहो उपाया जाते तरो बिखम एह माया कर कृपा सतसंग मलाए नानक ताकै निकट ना माए सलोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप असे आपन हों हों करे नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी ये कह आप करावन हारा आपे पाप पुन बिसथारा या जुग जित जित आप लायो सो सो पायो जो आप दुआयो वाका अंत ना जाने को जो जो करे सो फुन हो ये कहते सगला बिसथारा नानक आप सवार नहारा सलोक राच रहे बनता बनोद कुसुम रंग बिख शोर नानक ते सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जह रचो तह तह बंधन पाहे जेह बिद कतु ना छूटी है साकत तेऊ कमाहे हौ हौ करते कर्म रत

या भवजल करना यया जन्मना आवे सो एक नाम ले मन है पुरु यया जन्मना हारी है गुरपुरे की टेक नानक ते सुख पाया जान कह रह एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के मीत गुरपुरा अपदेसिया नानक जपी है नीत पौड़ी अन दिन सिमरहो तास को जो अंत सहाई होए एह बिख्या दिन चार छे छाड चल्यो सब कोए काको मात पिता सुत धीआं ग्रह बनता कस संग ना लिया ऐसी संच जो बिन सत नाही पत सेती अपने घर जाही साध संग कल कीर्तन गाया नानक तेते बहुर ना आया सलोक अत सुंदर कलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत मृतक कह नानका जेह प्रीत नहीं भगवंत पौड़ी गंगा खट शास्त्र होए ज्ञाता पूरक कुंभक रेचक करमाता ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी सोम पाक अपरस उदयानी राम नाम संग मन नहीं हेता जो कशकीनो सो अनेता वाते उत्तम गनो चंडाला नानक जे मन बसह गोपाला सलोक कुंट चार दह जिस भ्रमे कर्म किरत की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख पवड़ी कक्का कारण करता सो लिखियो लेख न मेटत को नहीं होत कश दो बारा करने हार न भूलन हारा काहू पंत दिखारे आपे काहू उद्यान भ्रमत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो सलोक खात खर्चत बिलछत रहे टूट ना जाहे भंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहे सुमार पौड़ी खखा खूना कछ नहीं तिस समरथ कै पाहे जो देना सो दे रहे हो भावे तह तह जाहे खर्च खजाना नाम तन या भगतन की रास हिमा गरीबी आनंद सहज जपत रह गुणतास खेलह बिगसह अंध स्यों जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम ग्रह माल खेद ना दुख ना दान ते जा को नदर करी नानक जो प्रभ पाणिया पूरी तिना परी सलोक गन मिन देखो मने माहे सर पर चलनो लोग आस अनित गुरमुख मिटै नानक नाम अरोग पौड़ी गग्गा गोविंद गुण रवो हो सास सास जप नीत कहां बसासा देह का बिलम ना करे हो मीत नह बारक नह जोबन नह बिरदी कश बंद ओह बेरा नह दूजी है जो आए पर जम फंद ज्ञानी ध्यानी चतुर पेख रहन नहीं ए ठाए छाड़ छाड़ सगली गई मूड़ तहां लपटाए गुर प्रसाद सिमरत रह जाहू मस्तक भाग नानक आए सफलते जा को प्रिय है सुहाग सलोक कोखे शास्त्र वेद सब आनना कथतो कोए आद जुगादी हुण होवत नानक कै सोए पौड़ी कग्गा कालो मन है एह बिन हर दूसर नाही नह हुआ नह होवना जत कत ओही समाहे कुलै तो मन जो आवे सरना नाम तत कल मह पुनः चरना काल काल अनक पछतावे बिन हर भगत कहां थित पावे कोल महारस अमृत ते पिया नानक हर गुर जा को दिया सलोक गण काले सब दिवस सास नह बदन कटन तिल सार जीवन लो रह परम मोहो नानक ते गुवार पौड़ी गंगा अंगरा सह काल ते जो साकत प्रभ कीन
अनक जोन जन्मह मरह आत्म राम ना कीन। ज्ञान ध्यान ताहू को आय कर कृपा जिह आप दुआय। गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे। सो जीवत जे जीवत जपया प्रगट भये नानक नह छपया। सलोक चित चितमो चरनार बिंद ऊंद कवल बिग शांत। प्रगट भये आप गोबिंद नानक संत मतांत। पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन उआ दिन संजोग सुभागा। चार कुंट दह दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार बचार बिन स्यो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ। चिंत बिसारी एक दृष्टिता नानक ज्ञान अंजन जेह नेत्रा। सलोक छाती शीतल मन सुखी संत गोबिंद गुण गाय। ऐसी कृपा करहु प्रभ नानक दास दसाए। पौड़ी छछा शोहरे दास तुम्हारी दास दासन के पानी हारी। छछा शार होत तेरे संता अपनी कृपा करहु भगवंता। छाड़ सियानप बहु चतराई संतन की मन टेक टकाई। शार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई। सलोक जोर जुन्म फूल कनो काची दे विकार। हम बुद्ध बंधन परे नानक नाम छुटार। पौड़ी जज्जा जान हों कछ हुआ बांधे ज्यो नलनी भ्रम सुआ। जो जान हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी। जो जान मैं कथनी करता व्यापारी बसधा ज्यो फिरता। साध संग जे हो मैं मारी नानक तां को मिले मरारी। सलोक चालांगे उठ नाम जप निसबासुर आराध। कारहा तुझे ना व्यापई नानक मिटे उपाद। पौड़ी चज्जा चूरन मिटे तुमारो राम नाम स्यो कर व्यवहारो। चूरत चूरत साकत मुआ जां कैरदै होत पाओ बिया। चरह कसम्मल पाप तेरे मनुआ अमृत कथा संत संग सुनुआ। चरह काम क्रोध दृष्टाई नानक जा को कृपा गुसाई। सलोक यतन करो तुम अनक बिद रहन न पावो मीत। जीवत रहो हर हर भजो हो नानक नाम प्रीत। पवड़ी जन्या जानो दृढ़ सही बिन सजात एह हेत। गणती गणो ना गण सको ऊठ सधारे केत। न्यो पेखो सो बिन सतो कास्यो करिय संग। ज्ञान होया बिद सही चित झूठो माया रंग। ज्ञान तो सोई संत।

भरे पंडार, दैन हार सद जीवन हारा, मन मूर्ख क्यों ताहे बसारा, दोष नहीं काहू को मीता, माया मोह बंद प्रव कीता, दर्द निवार है जाके आपे, नानक तेते गुरम।

सदा तावत तौ मिटै संत संग होए बास तुरते कृपा करो आप तौ होए मनह परगास तन साचा तेऊ सच साहा हर हर पूंजी नाम बसाहा धीरज जस सोभा ते बनिया हर हर नाम श्रवण जेह सुनिया गुरमुख जेह कट रहे समाई नानक।

सुख संपै बहु भोग रस नानक साध रुआल पौड़ी बब्बा ब्रह्म जानत ते ब्रह्मा वैष्णो ते गुरमुख सुच धर्मा बीरा आपन बुरा मटावै ताहू बुरा निकट नहीं आवै बांधियो आपन हो बंदा दोष देत आगह को अंधा बात कीत सब रही सियानक जिसै जनाब हो सो जानै नानक सलोक पै पंजन अग दुख नास मनह अराध हरे संत संग जेह रिद बसेओ नानक तेना भ्रमे पौड़ी पब्बा परम मटावहो अपना या संसार सगल है सुपना परमेश्वर नर देवी देवा परमे सिद्ध साधक ब्रह्मेवा परम परम मानुख डहकाए दुत्तर महा बिखम एह माए गुरमुख भ्रम पै मोह मटाया नानक तेहे परम सुख पाया। सलोक माया डोलै बहु विधि

मत पूरी प्रधान ते गुरपूरे मन मंत जिह जान्यो प्रभ अपना नानक ते भगवंत पौड़ी मम्मा जाहू मर्म पछाना भेटत साध संग पतियाना दुख सुख अवा कै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निरलेपा पूर्ण घट घट पुरख बसेखा वा रस मैं वाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं तेह माया। सलोक यार मीत सुन साजन हो बिन हर शूतन नाही नानक तेह बंधन कटे गुर की चरणी पाहे पवड़ी जैया यतन करत बहु विदिया एक नाम बिन कह लो सिदिया याहू जतन कर होत छटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरण धारे सब को वाहे जपे बिन उबर ना हो याहू तरन तारन समराता राख लेहो निर्गुण नरनाथा मन बच क्रम जेह आप जनाई नानक तेह मत प्रगति आई। सलोक रोस न काहू संग करहो अपने आप विचार होए निमाना जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी रारा रे न होत सब जाकी ताज अवमान छुटे तेरी बाकी रण दर्ग है तो सीजै भाई जो गुरमुख राम नाम लिवलाई रहत रहत रह जाहे बिकारा गुरपूरे कै शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदाते। सलोक लालच झूठ बिखै ब्याद या देही महबास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सूख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहु दुख दर्द ते मिटै खनाऊ नाम औखद जे हृदय हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवे हर औखद सब घट है भाई।

वासुदेव सर्वत्र में ऊन न कतहु ठाए, अंतर बाहर संग है नानक काय दुराय पौड़ी, ववा वैर न करिए काहू, घट घट अंतर ब्रह्म समाहू, वासुदेव जल थल में रविया, गुर प्रसाद विरले ही गविया, वैर विरोध मिटे ते मनते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चिहन सगल ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हौ हौ करत बेहानिया, साकत मुग्ध अजान, रड़क मोए ज्यो त्रिखावन, नानक किरत कमान पौड़ी, राड़ा राड़ मिटै संग साधु, कर्म तर्म तत नाम अराधु, रूड़ो जेहे बसे उरिद माही, वा की राड़ मिटत बिन साही, राड़ करत साकत गावारा, जेहे ही है हम बुद बेकारा, राड़ा गुरमुख राड़ मटाई, निमख माही नानक समझाई। श्लोक साधु की मन ओट गहो, उकत सियान पत्याग, गुर दीखिया जेह मन बसै, नानक मस्तक भाग पौड़ी, सस्सा शरण परे अबहारी, शास्त्र सिमरत वेद पुकारी, सोधत सोधत सोध बीचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सास सास हम भूलन हारी, तुम समरत अगणत अपारी, शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। सलोक खुदी मिटी तब सुख पये, मन तन पये अरोग, नानक दृष्टि आया उस्तक करने जोग पौड़ी, खखा खरा सराहू ताहू, जो खिन मैं ऊने सुबर पराहू, खरा निमा ना होत परानी, अन दिन जापै प्रभ निर्वाणी, भावै खसम तां वा सुख देता, पार ब्रह्म ऐसो आगंता, असंख खते खिन बख्शन हारा, नानक साहिब सदा दयारा। सलोक सत कहो सुन मन मेरे, शरण परहो हर राय, उकत सियानप सगल त्याग, नानक लय समाए पौड़ी, सस्सा सियानप छाड़ आना, हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना, सहस भांत करह चतुराई।

के आखिर किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे ताकि एक दर्श तुहारू नानक उन संग मोहे उधारू।

जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते तरे पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम।

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना।

जिनकी आत सचीत रख नानक निबही नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। जिन तू साज सवार शिंगारिया, गर्भ अग्न मह जिन्ह उभारिया। बार व्यवस्था तुझह प्यार दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद। बिरद भया ऊपर साख सहन।

क्रम करे संग सहाय किस पर हरे चंदन लेप उतारे धोए गर्धब प्रीत पस्म संग होय अंध कूप मह पतत बिकराल नानक काड ले हो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया छपश नाही कछ करे छपाया बाहर ज्ञान

सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेहो ओढ़ निबिहावे, कहां बजारत दूजै डोरा, निस कहिए तो समझै पूरा, कहां बिसन पद गावे गोंग, जतन करे तो पी सुर भंग, कहां पिंगल पर्वत पर भवन।

दृढ़ कर्मा न मन है प्रतीत, काल न आवे मूले चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात

लपट रहे हो तह अंध अंधार बताऊ स्यो जो लावे ने ताको हाथ ना आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब।

मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर दर्ब को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद।

जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के नरारथ दाम। तन तन ते जन जे घट बस्यो हर नाम, नानक तां कै बल बल जाम। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत। जन नहार प्रभु परबीन, बाहर भेख ना काहू भीन। अवर अपदे

ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत, जिस पावै तिस लय लड़ लाई, थान थनंतर रहे आसमाय, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी, सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी, जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे, तिस ठाकर को रख मन माहे, जे प्रसाद सुगंधत तन लावह, तिस को सिमरत परम गत पावह, जे प्रसाद बसह सुख मंदर, तिसै त्याहि सदा मन अंदर, जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरहो तिस रसना, जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याहि त्यावन जोग, जे प्रसाद पाठ पटंबर हंधावह, तिसै त्याग कत अवर लुभावह।

मन सुख पावह हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल सिदर ढाके मन चरनी पार ठाकर प्रभ ताके जे प्रसाद

ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लाग हो, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस पव को मूल।

मया आपो कछु न किन्हु लया जित जित लाभ हो तित लग है हर नाथ नानक इनके

कथा साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वर्णै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुल्लै साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहु धावै साध संग अस्थित मन पावै।

को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध क्या संग नाही हो ताप, साध क्या संग तजै सब आप, आपे जाने साध बुदाई, नानक साध प्रभु बने आई, साध क्या संग न कबहू तावे, साध क्या संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त अगोचर लह, साधु कै संग अजर सह, साध क्या संग बसै थान उच्च, साधु कै संग महल पहुंच, साध क्या संग निर्ढह सब धर्म, साध क्या संग केवल पार ब्रह्म, साध क्या संग पाहि नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साध क्या संग सब कुल उधार, साध संग साजन मीत।

सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्ब स्थान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं कछ काल दर्शन भेट होत निहाल साध कै संग कलूखत हरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग इहां उहां सोहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साध कै संग न बिरता जावै पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उधरै साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाऊ साध संग हर के गुण गाऊ साध कै संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध कै संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट दीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संग गत भई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा भेद न जान है जेता सुनह तेता बखियान है साध की उपमा तेहो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बन आई नानक साध प्रभ भेद ना पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर ना पेख एकस बिन कोए नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जा

जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी संगल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी कीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्म ज्ञानी हम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजह महेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी

निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओह अपरस सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस

रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विसन की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हुए निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म

पावै भगवती भगवंत भगत कारंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन परीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म में सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो

कार अष्टपदे कई कोट होए पुजारी, कई कोट अचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रम है उदासी।

त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम। नानक प्रभु कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मशकीनिया। आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसकै अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान। जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कहो कर्मवंत कहावे, जन्म मरै बहु जोन प्रमावै।

पद आप अहंकारी धर्मराय तिस करी खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सूजन नानक दरगाह प्रवान कोट कर्म करे हो तारी श्रम पावे सगले बिरथारी अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगाह कहू कैसे गवे आपस कहो जो भला कहावे तिसह पलाई निकट न आवे सर्ग की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकी निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कश होए तब इसको सुख नाही कोए जब ए जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माई

को उठ धावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे नह तृपतावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राज्य सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करन हार इसके हाथ कहां विचार।

संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखने आर जा कटे संत कै दुखन जमते नहीं छुटे संत कै दुखन सुख सब जाय संत कै दुखन नरक मह पाय संत कै दुखन मत हुए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हथे को रखे ना कोई संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत किरपाल किरपा जे करे नानक संत संग निंदक पी तरे संत के दुखन ते मुख पवे संतन कै दुखन काग ज्यों लवे संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मह जले।

नाही। नानक संत पावै ता ओए पी गत पाहे। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का

नानक जो तिस पावै सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ

कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जल मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत की ओह सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोही निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसह ना लागह दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं दुलावे जिस प्रभ अपना

ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ।

नानक सो जन सदा अरोग, ज्यो मंदर को थमै थमण, त्यो गुर का शब्द मनै अस्थमण, ज्यो पाखाण नाव चढ़तरै, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै।

संग मिल जोत प्रगटावे। तिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए।

राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक किस पुरख का किने अंत ना पाया, जाकी लीला की मित नाही, सगल

पाए, सब घट तिसके सब तिसके ठाव, जप जप जीवै नानक हर नाव, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे कुरियां सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण।

प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख सब माहि समाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसह बुझाए तिसह सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जान जा कै हृदय प्रवेश सत नित बूझै जे कोई नाम जपत ता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जानै अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करनै हार अवरना बूझ करत बीचार करते की मित ना जानै किया नानक जोत सुभावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भये बिस्माद जिन बूझया तिसे आया स्वाद प्रभ कै रंग रात जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे वे दाते दुख काटन हार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सो वड भागी।

अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आप पात राखै, ताकी गत मित कोए ना लाखै। प्रभु के सेवक को ना पहुंचै, प्रभु के सेवक उचते उच्चे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया। नीकी कीरी मह कल राखै, पसम करै लश्कर कोट लाखै। जिसका शासन काटते आप, तां को राखत दे कर हाथ। मानस जतन करत बहु पान।

सोए काहे सोच करह रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख वडाणी बारंग बार बार प्रभ जपिया ई अमृत इहु मन तन तृपिया नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही दृष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मन तन नामे नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदकाम बोलो हो जस जेह बा दिन रात प्रभ अपने जन कीनी दात करह भगत आत्म कै चाए प्रभ अपने स्यो रह समाए जो होवा होवत सो जान प्रभ अपने का हुक्म पहचान तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पैर प्रभ बसै हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मन तने अपना तिन जन दे जिन जन अपना

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै

बल जाओ। सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म, एक कह आप नहीं कछ भरम। सहस सियान पलया ना जाइए, नानक ऐसा गुरबद भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुन कर बचन करन आगहने, मन संतोख आत्म पतियानी। पूरा गुर अखयो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखा हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावे तिस लये मलाए। जिहवा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकी कीमत किने ना पाई। अनक भगत बंधन नित करह, चरण कमल हृदय सिमरह। सद बलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावे जन कोए, अमृत पीवे अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जां कै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखै हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परम मोह।

कोट कोट रवे रूप रंग पये प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलिहारी सलोक साथ न चल बिन भजन विखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक इहो तन सार अष्टपदी संत जना मिल करो बीचार एक सिमर नाम आधार अवर अपाव सब मीत बसार हो चरण कमल रिद मह उरतार हो करन कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवत इहो तन संचो हो।

0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन सह पूर्ण होए आस, भगत भाई आत्म परगास, चित कर जाए बसै अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी,
1: तत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरै सो काचो काचा, आवागमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग सरन गुरदेव, इउ रतन जन्म का हुए उदहार, हर हर सिमर प्राण अधार, अनक अपाव न छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करहु मन।

भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे, आप जप हो अवरा नाम जपाव हो, सुनत कहत रहत गत पाव हो, सार पूत सत हर को नाव, सहज सुपाए नानक गुण गाव, गुण गावत त्रि उत्तर सुमैल, बिन सजाए हो मैं बिख फैल, होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम सुमहाल, चाड़ सियान पसगली मना, साध संग पावह सच धना, हर पूंजी संच करो व्यवहार,

सदा सदा प्रभु के गुण गावो, सास सास प्रभु तुम्हें त्यावो, चरण कमल स्यो लागे प्रीत, भगत करो प्रभु की नित नीत, एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभु सार, प्रभु की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए, जिन चाखिया से जन त्रिपताने,

मन सब त्याग, अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग, बड़ भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए, शिव की मनसा पूरी भई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन भया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, इच्छ पुन्नी सरदा सब पूरी, रव रहिया सतसंग हजूरी, जिसका साथिन लिया मलाए, नानक भगती नाम समाए, सो क्यों बिसरै जे घाल ना भानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै, सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन दिया, सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै, सो क्यों बिसरै जे बिखते काढै, जन्म जन्म का टूटा गांडै, गुरपूरै तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करहो इहो काम, आन त्याग जपहो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावहो, आप जपहो अवरहा नाम जपावहो, भगत भाए तरिय संसार, बिन भगती

एक दर्श सुख हुए मन बिगसै साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजै करमया।

कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो होए पनीत, भगत भाए लावे मन हीत, हम निर्गुण आर नीच अजान, नानक तुमरी सरन पुरख भगवान, सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अनक राज भोग बडियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत, पली सो करनी सो बातनवंत।

अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कह ते होता जब धारी आपन सुन समात तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बांध मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाय तब शिव सकत कहो कित ठाय जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कवन नडार कवन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अबनासी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा।

जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कमन माए बाप मित्र सुत भाई, जह सर्व कला आपह प्रवीन, तह वेद कतेव कहां को चीन। जब आपन आप आप उर्तारै।

नानक फल पावहु, फलत पलत दोए लेहु सवार, राम नाम अंतर उर धार, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया, मन तन नाम जपो निवलाई, दुख दर्द मन ते भउ जाई।

की दृष्ट, दर्शन पेहत उदरत श्रेष्ठ, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रदान, जिस मन बसै सो होत निहाल, ताकै निकट ना आवत काल, अमर पए अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया, सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर बनास, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास, अष्टपदे संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समिग्री एक सकट माहे, अनकरंग नाना दृष्टाहे, नौ

किनै कछ करा आप भला करतूत आत्मी की आपे जाने अपने जी की आप साच धारी सब साच ओत पोत आपन संगराच ताकि गत मित कही ना जाए।

तिस सदा सुख होए, आप मलाए नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआउ, जन कै संग चित आवे नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार।

हस्तपदी पूरे गुर का सुन अपदीस पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगल सागर तरहो हर धन के परले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक नवार उधार हो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वोह नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोकह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मलाए मिट गए बैर भये सबरेन अमृत नाम साध संग लैन।

समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग महता की गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध सरन नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत जिस जन आवै हर

नानक संत निर्मल भये, जिन मन वसिया सोए पौड़ी, तृतीया त्रै गुण बिखे फल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग भ्रम तो घणो, सदा संघारे नीच, हरख सोग सहसा संसार, हौं हौं करत बिहाय, जिन किए तिसह न जाननी, चित में

मोह परम बूढ़त कणो महानरक महवास कर कृपा प्रभ राख ले हो नानक तेरी आस। श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजया अभमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भजन।

नानक प्रभ कै रंग पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसुम बास बहुरंग घणो सब मिथ्या बलबंच नह जापै नह बूझियै नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदेओ अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जून भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना बिचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारा वार भगत सोह गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुणयंत ना जान है सेख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीदे हर स्यों बीदे भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिनसेओ पाई सरन दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिरे साध संग लिव लाए खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम त्याय सलोक संत मंडल हर जस कथ है बोल है सत सुपाय नानक मन संतोखी है एकस स्यों लिव लाए पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारा वार आप तजो हो गोविंद भजो हो सरन पर हो हर राय दुख हरे पव जल तरे मन चिंदे आप फल पाए आठ पहर मन हर जपै

पुत्त जो हर की मत दे नानक तिस बलिहार ने हर हर नाम जपे सलोक आठ पहर गुण गाई है तजी है अवर

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नानक।

सारे नरक सुर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म न सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरै तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस दिस खोजत मैं फिरयो जत देखूं तत सोए मन बस

अंत मन मह चितव पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत टहल कमाई नानक इहो संजम प्रभ कृपा पाई।

कौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इन बिद वर्त संपूर्ण भया धावत मन राखे एक ठाई मन तन शुद्ध।

नानक प्रभ स्यों मिल रहे, बिनसे सगल जंजाल पौड़ी, द्वादशी दान नाम इशनान, हर की भगत करो ताजमान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता सह कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सब कौ संतोख है, पंच भू आत्मा हर नाम रस पोख है, गुर पूरे ते एह निश्चौ पाइय नानक।

राम पतत उदारन मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार आवत जात नरके अवतार हर हर भजन ना मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख ना गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिन विकार करत श्रम पायु नैनी नींद सुपन बरड़ायु हर बिसरत होवत एह हाल सरन नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौ

नाम पौड़ी 14 चार कुंट प्रभे आप सगल भवन पूर्ण प्रताप दसे दिशा रव्या प्रवेक तरन आकाश सब मह प्रभ पीक जल थल बन पर्वत पाताल परमेश्वर तह बसह दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पिछान। श्लोक आत्म जीता गुरमति गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी किंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पय संतोख दिया गुरुदेव मन तन शीतल शांत सहज लागा प्रभ की सेव टूटे बंधन बहु विकार सफल पूर्णता के काम दुर्मत मिटी हों मैं छुट्टी सिमरत हर को नाम। शरण गही पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरिया कुटुंब स्यों

नानक सुख विश्राम सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता पूरा किया प्रभ आप दिन दिन चढ़े सुआया नानक होत ना घाट पौड़ी पूर्णमा पूर्ण प्रवेक करण कारण समरथ जी जंत दयाल पुरख सब ऊपर जा का हाथ गुण निदान गोविंद गुर किया जा का होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए पार ब्रह्म परमेश्वरो सब विद जानन हार संत सहाई सरन जोग आठ पहर नमस्कार अकथ कथा नह बूझिय सिमरहु हर के चरण पतत उदारन अनाथ नाथ नानक प्रभ की शरण सलोक दुख बिन से सहसा गयो शरण गही हर राय मन चिंदे फल पाया नानक।

तै को दृढ़ तिसका हुए उदहार, इलबिक काटै हुए निर्मला, जन्म जन्म मल जाय, हलत पलत मुखी उजला, नह पोहै तिस माय, सो सुरता सो वैष्णो, सो ज्ञानी तनवंत, सो सूरा कलवंत सोए, जिन भजिया भगवंत, खतरी ब्राह्मण सूद बैस, उदरै सिमर चंडाल, जिन जानियो प्रभ अपना, नानक तिसह रवाल, गौड़ी की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महला चौथा, सतगुर पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोय, एक दृष्ट कर देखदा, मन भावनी ते सिद्ध होय, सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर त्याई है, गुरमुख पावे कोई महला चौथा, हों मैं माया सब बिक है, नित जग तोटा संसार, लाहा हर तन खटिया, गुरमुख शब्द विचार, हों मैं मैल बिख उतरै, हर अमृत हर उरतार, सब कार्य तिनके सिद्ध है, जिन गुरमुख कृपा तार, नानक जो तुर मिले से मिल रहे, हर मेले सिरजनहार, पौड़ी तू सच्चा साहेब सच है, सच सच्चा गोसाई, तुदनो सब त्याई दी, सब लगे तेरी पाई, तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है, जिन कीती तिस पार लंघाई,

मनमुख अहंकार सलाहंदे हमै ममतावाद जिन सलाहन से मरह खप जावे सब अपवाद जन नानक गुरमुख उबरे जप हर हर परमानाद महला चौथा सतगुर हर प्रभ दस नाम त्याई मन हरी नानक नाम पवित हर मुख बोली सब दुख पर हरी पौड़ी तू आपे आप निरंकार है निरंजन हर राया जिन्नी तू एक मन सच त्याया तिनका सब दुख गवाया तेरा शरीक को नाही जिसनो लवे लाए सुनाया तुद जेवर दाता तू है निरंजना तू है सच मेरे मन पाया सच्चे मेरे साहिबा सच्चे सच नाया श्लोक महला चौथा मन अंतर हमै रोग है भ्रम भूले मन मुख दुर्जना नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना महला चौथा मन तन रत्ता रंग सियो गुरमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुर साबास पौड़ी तू करता पुरख अगम है किस नाल तू बड़ी है तुद जे वडहोए सो आखी है तुद जेहा तू है पढ़ी है तू घट घट एक वरतदा गुरमुख परगड़ी है तू सच्चा सब सदा खसम है सब दू तू चढ़ी है तू करह सो सच्चे होए सी ता कायत करी है श्लोक।

सतगुर सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यों बोलन तिवें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू कर है सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छिड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठे सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा। सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखे ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे तिन विचों तिस्तिया ना कोई सतगुर सबना दा

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब भावै तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी, सलोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित, तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या तिन

आपे वर्तै नित कर कर देखै चलत सवाय। महला चौथा एक मन एक वर्तदा जित लगै सो थाए पाए। कोई गल्ला करे कनेरिया जे घर वत हो साई खाए। बिन सतगुरु सोजी ना पवै अहंकार ना विचों जाए।

पौड़ी। सच सच्चा सबदू वड्डा है, सो लए जिस सतगुर टिके, सो सतगुर जे सच त्याईंदा। सच सच्चा सतगुर इक्के, सोई सतगुर पुरख है, जिन पंचे दूत कीते वस छिके, जे बिन सतगुर सेवे आप गणाईंदे। तिने अंदर कूड़ फिट फिट मुंह फिके।

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन होए सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वे आपे सच्चै वख कड्डे जजमाले सचियार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर का आया।

पौड़ी तू साहिब अगम दयाल है वड दाता दाना तुद जेवड़ मैं होर को दिस ना आवई तू है सुगड़ मेरे मन पाना मोह कटंब दिस आमदा सब चलन हारा आवन जाना जो बिन सच्चे होरत चित लाएं दे से कूड़े आर कूड़ा तिन माना नानक सच त्याए तू बिन सच्चे पच पच मोए अजाना सलोक महला चौथा अगों दे सत भाओ न दिच्चै पिछों दे आख्या कम ना आवै अध विच फिरै मन मुख वेचारा गली क्यों सुख पावै जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की सो कूड़ी आवै कूड़ी जावै जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवै ता अपिओ पीवै शब्द गुर केरा सब काला अंदेसा भरम चुकावै सदा आनंद रहै दिन राती जन नानक अन दिन हर गुण गावै महला चौथा गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम त्यावै उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर नावै उपदेश गुरु हर हर जप जापै सब किल विख पाप दोख लह जावै फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावै बहिंदियां उठदियां हर नाम त्यावै जो सास ग्रास त्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावै जिसनो दयाल होवै मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की जो आप जपै अवरह नाम जपावै पौड़ी जो तुद सच त्याई दे से विरले थोड़े जो मन चित एक अराध दे तिनकी बरकत खाही असंख करोड़े तुदनो सब त्याई दी से थाई पए जो साहिब लोड़े जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैन दे से मोए मर जम्मे कोड़े ओए हाजर मिठा बोल दे बाहर विस कढ़ मुख कोले मन खोटे दइये विछोड़े सलोक महला चौथा मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा तिन वे मुख वे मुखे नो पाया पास ना दे कोई बहन जगत मह गुहू पर सगवी मल लाए मन मुख आया पराई जो निंदा चुगली नो वेमुख करके भेजिया उथे पी मुह काला दोहा वेमुखा दा कराया तड़ सुनिया सबत जगत विच भाई वेमुख सुने नफरे पौली पौंदी फावा होए कै उठ घर आया अगै संगती कुड़मी वेमुख।

रखै। हलत पलत सब तिसका गया, नित चहियां पाए झगू सुटे, झकदा झकदा झड़ पया। नित अपाव करै माया धन कारण, अगला धन भी उड़ गया। क्या ओह खट्टे क्या ओह खावै, जिस अंदर सहसा दुख पया। निर्वैर नाल जे वैर विचारे, सब पाप जगतै का तिन सिर लया। ओस अगे पिछे ढोई नाही, जिस अंदर निंदा मुहे अंब पया। जे सोइने नो ओह हाथ पाए, आखेहू से तीर हल गया। जे गुर की सरनी फिर ओह आवे, ता पिछले औगण बख्श लया। जन नानक अन दिन नाम त्याया, हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब तू ऊपर तू दीवान। जो तुद सच त्याईंदे, सच सेवन सच्चे तेरा मान। ओना अंदर सच मुख उजले, सच बोलन सच्चे तेरा तान। से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाहिया,

पाए अपने आप भगतां की रख करे हर स्वामी निंदकां दुष्टां के मुंह काले कराए सतगुरु की वडियाई नित चढ़े सवाई हर कीरत भगत नित आप कराए अनदिन नाम जपो गुर सिखो हर करता सतगुर करी वसाए सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो हर करता आप मुंह कढ़ाए गुरसिखा के मुंह उजले करे हर प्यारा गुर का जयकार संसार सबत कराए।

सच साहा हमारे सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ वणजारे ठारे सच सेव है सच वणंज लै है गुण कथ है निरारे सेवक भाए से जन मिले गुर शब्द सवारे तू सच्चा साहब अलख है गुर शब्द लिखारे। सलोक महला चौथा जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवे भला ओस दे आखे कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या ओस दा सब गया नित चुगली करे अनहोंदी पराई मुंह कड ना सके।

आस ना होई, विस खादी तत्काल मर जाए। भाई वेखो न्याओ सच करते का, जेहा कोई करे तेहा कोई पाए। जन नानक को सब सोजी पाई, हर दर कियां बातां आख सुनाए। महला चौथा होंदै प्रतख गुरु जो विछड़े, तिनको दर ढोई नाही। कोई जाए मिलै तिन निंदका, मुंह फिके थुक थुक मुहे पाही। जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित भंबल भूसे खाही। जिन गुरु गोपिया अपना, से लैंदे ढहां फराही। तिनकी भुख कदे ना उतरै, नित भुखा भुख कुकाही। उना दा आख्या को ना सुने, नित हौले हौल मराही। सतगुर की वड़ियाई वेख ना सकनी, उना अगे पिछे थां नाही। जो सतगुर मारे तिन जाए मिलह, रहंदी खुंदी सब पत गुआही। ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके, जे उस मिलै तिस कुष्ट उठाही। हर तिनका दर्शन ना करहो, जो दूजे पाए चित लाही। तुर करत आप लिख पाया, तिस नाल केहो चारा नाही। जन नानक नाम अराध तू, तिस अपड़ को ना सकाही। नावै की वड़ियाई वड़ी है, नित सवाई चढ़ै चढ़ाही। महला चौथा जे होंदै गुरु बह टिकिया, तिस जन की वड़ियाई वड़ी होई। तिस को जगत निमिया सब पैरी पया, जस वरत्या लोई। तिस को खंड ब्रह्मांड नमस्कार करहै, जिसकै मस्तक हाथ धरिया गुर पूरै सो पूरा होई। गुर की वड़ियाई नित चढ़ै सवाई, अपड़ को ना सकोई। जन नानक हर करतै आप बह टिकिया।

करे हर वस्त संभाले नाम निदान हर बन जीए हीरे परवाले विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड बेताले से उजड़ भरम पवाई है ज्यों झाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग मह होया नरक घोर दुख खूह है उथे पकड़ ओहो ढोया कूक पकार को ना सुने ओहो औखा होए होए रोया ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया ओहो तेली संदा बल्द कर नित भलके उठ प्रभ जोया हर वेखै सुने नित सब किश तिदू किश गुजा ना होया जैसा बीजे सो लुणे जेहा पुरब किने बोया जिस कृपा करे प्रभ अपनी तिस सतगुर के चरण धोया गुर सतगुर पिछे तर गया ज्यों लोहा काठ संगोया जन नानक नाम त्याए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा वडभागियां सुहागनी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम समाए पौड़ी एहो शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत गोहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेवक कड्डे खोत सब आत्म राम पछाणिया ता एक रविया इको ओत पोत एक देखिया एक मन्निया इको सुन

हृदय है जिन हर बसिया मन माहे हर दरगह ती मुखी उज्जले तिनको सब देखण जाहे जिन निरपव नाम त्याया तिनको भव कोई नाहे हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको धुर लिखिया आहे ते हर दरगह पै नाई है जिन हर बुठा मन माहे वे आप तरे सब कटंब सियो तिन पिछे सब जगत छडाहे जन नानक को हर मेल जन तिन वेख वेख हम जिवाहे महला चौथा सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए से जंत पई हरियावली।

जिन नाम अराध्या आप तरिया जिन्नी दिखा तिन्ना लय छाय हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया जा दिखा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर किरपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याय सी सो करे जे सतगुर भाव सी।

आप होए और केती चख चख जाए सी जन नानक नाम त्याए तू हर हलत पलत छोड़ाए सी महला चौथा गुर सिखा कै मन पांदी गुर सतगुर की वडियाई हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़े सुआई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई गुर सतगुर तान दी बाण हर तिन सब आन निवाई जिन्नी दिठा मेरा सतगुर पाओ कर तिन के सब पाप गवाई।

तेरे भाई पौड़ी हम आख सलाही सिफत सच सच सच्चे की वड़ियाई सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाई सच सच्चा रस जिन्नी चखिया से तृप्त रहे आघाई एहो हर रस से जान दे ज्यों गूंगे मठियाई खाई गुरपुरे हर प्रभ सेविया मन वजी वधाई सलोक महला चौथा जिन्ना अंदर अमरथल से जान सूलिया हर जान है से बिरहो हौ तिन बिटो साध घुम घोलिया हर मेलो सज्जन पुरख मेरा सिर तिन बिटो तल रोलिया जो सिख गुर कार कमाव है हौ गुलम तिना का गोलिया हर रंग चलूलै जो रते तिन भिन्नी हर रंग

त्यों संतो निर्मल होए गुरमुख गुण वे हादी है मल हों मैं कड़ै धोए सच मणंज है रंग स्यों सच सौदा होए तोटा मूल ना आवे लाहा हर भावै सोए नानक तिन सच मणंजिया जिन्ना धुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी सालाही सच सालाहना सच सच्चा पुरख निराली सच सेवी सच मन वस्से सच सच्चा हर रखवाली।

उठा। सतसंगत मह हर पुस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया। वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है, उपदेश कर है पर उपकारिया। हर नाम दृढ़ाव है, हर नाम सुनाव है, हर नामे जग निस्तारिया। गुर वेखण को सब कोई लोचै, नव खंड जगत नमस्कारिया। तुदे आपे आप रखिया सतगुर विच, गुरे आपे तुद सवारिया। तू आपे पूज है पूज कराव है, सतगुर को सिर जनहारिया। कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो, तिस काला मुह जम मारिया। तिस अगे पिछे ढोई नाही, गुर सिखी मन विचारिया। सतगुरु नो मिले से ही जन उबरे, जिन हिरदय नाम समारिया। जन नानक के गुरसिख पुत हो, हर जपे हो हर निस्तारिया। महला तीजा, हो मैं जगत भलाया, दुरमत बिखिया बेकार। सतगुर मिले ता नदर होए, मनमुख अंध अंधियार। नानक आपे मेल लय, जिसनो शब्द लाए प्यार। पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाहा है, सो करे जिस अंदर भिजै। जिन्नी एक मन एक अराध्या, तिनका कंध ना कबहू सिजै। तन तन पुरख साबास है, जिन सच रसना अमृत पिजै। सच सच्चा जिन मन भावदा, से मन सच्ची दरगाह लिजै। तन तन जन्म सचियारिया, मुख उज्जल सच करिजै। सलोक महला चौथा, साकत जाए निवह गुर आगै। मन खोटे कूड़ कूड़ आरी, जा गुर कह उठो मेरे भाई। बह जाहे कुसर बगलारी, गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै। चुन कड्डे लड्डू वारी, कोई अगे पिछे बह मुंह सुपाइन। ना रलनी खोटे आरी, ओना दा भख सो ओथै नाही। जाए कूड़ लहन भेडारी, जे साकत नर खवाई है लोची है। बिख कड्डै मुख उगलारी, हर साकत सेती संग ना करियो। ओए मारे सिरजन हारे, जिसका एहो खेल सोई कर वेखै। जन नानक नाम समारे। महला चौथा, सतगुर पुरख अगम है, जिस अंदर हर उर धारिया। सतगुरु नो अपड़ कोई ना सकई, जिस वल सिरजन हारिया। सतगुरु का खड़ग संजोव हर भगत है, जित काल कंटक मार वडारिया। सतगुरु का रखण हारा हर आप है, सतगुरु कै पिछे हर सब उभारिया। जो मंदा चितवै पूरे सतगुरु का, सो आप उपावन हारे मारिया। एह गल हुआ हर दरगाह सच्चे की, जन नानक अगम विचारिया। पौड़ी सच सुत्या जिन्नी अराध्या, जा उठे ता सच चवे। से विरले जुग मह जानी है, जो गुरमुख सच रवे। हौ बलिहारी तिनको, जे अन दिन सच लवे। जिन मन तन सच्चा भामदा, से सच्ची दरगाह गवे। जन नानक बोलै सच नाम, सच सच्चा सदा नवे। सलोक महला चौथा, क्या सवना क्या जागना, गुरमुख ते परवान। जिन्ना सास ग्रास ना विसरै, से पूरे पुरख प्रधान। करमी सतगुर पाई है, अन दिन लगै ध्यान। तिनकी संगत मिल रहा, दरगाह पाई मान। सौंदे वाहो वाहो उच्चरह, उठदे पी वाहो करेन। नानक ते मुख उजले, जे नित उठ संभालेन। महला चौथा, सतगुर सेविया अपना, पाईए नाम अपार। भौजल डुबदियां कढ़ लए,

माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला, गुरमुख जापै शब्द लिवलाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, जो तिस भावै सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी, तू करता सब किस जानदा, जो जिया अंदर वरतै, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणतै, सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनतै, तू घट घट एक वरतदा, सच साहिब चलतै, सतगुरु नू मिले सो हर मिले, नाही किसे परतै। श्लोक महला चौथा, एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है, गुरमुख लाई है चित, क्यों सास

नेत, मरण जीवन की चिंता गई, एहो जी अड़ा हर प्रभु वस, ज्यों पावै त्यों रख तू, जन नानक नाम बखश महला तीजा, मनमुख अहंकारी महल ना जाने, खिन आगे खिन पीछे, सदा बलाइय महल ना आवे, क्यों कर दरगाह सीजे।

सफल है। जित सतगुर का मन मन्ने, जहां सतगुर का मन मन्या, ता पाप कसमल पन्ने, अपदेश जे दिता सतगुरु, सो सुनिया सिखी कन्ने, जिन सतगुर का पाणा मन्या, तिन चढ़ी चवगण वन्ने, एह चाल नराली गुरमुखी, गुर दीखिया सुन मन भिन्ने। सलोक महला तीजा, जिन गुर गोपिया अपना, तिस ठौर ना ठाऊ, हलत पलत दोवें गए, दरगाह नाही थाऊ, ओह वेला हथ ना आवई, फिर सतगुर लगह पाए, सतगुर की गणत कुसी है, दुखे दुख विहाय, सतगुर

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मत हारी ऊड़क सत ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास उतै सच वर्तदा कूड़े आरा चित उदास ओए वल छल कर झट कढ दे फिर जाए बह कूड़े आरा पास विच सच्चे कूड़ ना गड्डई मन वेखो को निरजास कूड़े आरी जाए रले सच्यार सिख बैठे सतगुर पास सलोक महला पंजवा रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर संत सहाई नानका वरतै सब जाहर महला पंजवा मुंडो भुले मुंड ते कितै पाए न हाथ।

आपे पछताणी अजराइल फरेसता तिन पीड़े कहानी। सलोक महला पंजवा सेवक सच्चे शाह के से परवान दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान। महला पंजवा जो तुर लिखिया लेख प्रभ मेटना ना जाए राम नाम धन वखरो नानक सदा त्याए। पौड़ी पंजवा नारायण लया न ठूंगड़ा पैर किथे रखे करदा पाप अमित्या नित विसो चखे निंदा करदा पच मोआ विच देही पखे। सच्चे साहिब मारिया कौन किसनो रखे नानक तिस शरणागति जो पुरख अलखे। सलोक महला पंजवा नरक घोर बहु दुख घणे किरत घणा का थान तिन प्रभ मारे नानका होए होए मोए हराम। महला पंजवा अवखद सबे कीते अन।

संग जुट। सलोक महला चौथा। तपा न होवै अंदरों लोभी, नित माया नू फिरै जज मालिया। अगों दे सद्या सतै दी भिख्या लए नाही, पिछों दे पछताए कै। आण तपै पुत विच बहालिया, पंच लोग सब हसन लगे।

कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों भावे त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे सुध। गौड़ी की वार महला पंजवां राय कमाल दी मौज दी की वार की धुन उप

के मन तन नित भाव नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लाव ग्रह धन सब पवित्र हुए हर के गुण गावो हर नाम व्यापारी नानका वडभागी।

आन तनंतर राव रहया जी अंदर जाना साध संग मिल पाई है मन सच्चे पाणा नानक प्रभ शरणागति साध साध कुर्बाना। श्लोक महला पंजवा चेताई ता चेत साहिब सच्चा सो धणी

ना लभिया नानक से साबास जिन्नी गुरमिल एक पछाणिया पौड़ी जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा ओए सेवन समर्थ अपना बिनसै सब मंदा पतत उदारन पार ब्रह्म संत वेद कहंदा भगत वचल तेरा बिरद है जुग जुग वरतंदा नानक जाचै एक नाम मन तन पावंदा श्लोक महला पंजवा चिड़ी चौंकी पहों फुटी वगन बहुत तरंग अचरज रूप संतन रचे नानक नाम है रंग।

अठे पैर पौंदा फिरे खामन संधड़ै सूल दोजक पौंदा क्यों रहे जां चेतना होए रसूल पौड़ी तिसै सरे वो प्राणी हो जिसदै नाव पल्लै ऐसै रहो सहेलिया अगे नाल चलै कर बंद हो सच धर्म का गड थम अहलै

दुनिया चलै नानक पकड़े चरण हर किस दरगाह मल्लै। श्लोक महला पंजवा। जाचक मंगै दान दे प्यारिया देवन हार दा तार मैं नित चितारिया। नखोट न जाई मूल अतुल भंडारिया नानक शब्द अपार तिन सब किश सारिया। महला पंजवा। सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी। उथै अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम कै पंथ ना पाई है फिर नाही मरने। जिसनो आया प्रेम रस तिसे ही जरने बाणी उचर है साध जन हम्यो चल है चरने। पेख दर्शन नानक जीव्या मन अंदर धरने। श्लोक महला पंजवा। सतगुर पूरै सेवै दुखा का होए नास नानक नाम अराधे है कार्ज आवै रास। महला पंजवा। जित सिमरत संकट छुट है आनंद मंगल बिचराम नानक जपिय सदा हर निमक न बिसरो नाम। पौड़ी। जिनकी शोभा क्या गणी जिन्नी हर हर लगा साधा सरणी जो पवै तो छुट्टै बद्दा गुण गावै अबनासी है जोन गर्भ ना दद्दा। गुर भेटिया पार ब्रह्म हर पड़ बुझ समद्धा नानक पाया सो धनी हर अगम अगद्दा। श्लोक महला पंजवा। कामना करे ही अपना फिरह अवत्ता लोए नानक नाए वसारे सुख कनेहा हुए। महला पंजवा। बिखै कुड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाउ। पौड़ी। एह निशानी साध की जिस भेटत तरी जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरी है। भव सागर संसार बिख सो पार उतरी है हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरी है। नानक प्रीतम मिल रहे पार ब्रह्म नर हरी है। श्लोक महला पंजवा। नानक आए से परवान है जिन हर गुठा चित गाली अल पलालिया कम ना आवे है मित। महला पंजवा। पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूर्ण

जो जा चंडी हेकड़ो गाली ब्या विकार नानक धनी मिहूणिया महला पंजवा नीह जे विद्या मन पछाणु विरलो थियो जोड़न हारा संत नानक पादर पदरो पौड़ी सोई सेव हो जियड़े दाता बख्शिंद किल विख सब बनास होन सिमरत गोविंद हर मार्ग साधु दस्या जपिए गुरमंत माया स्वाद सब फिक्किया हर मन पावंद ध्याए नानक परमेश्वर है जिन दित्ती।

सच एक जिस तुस देवै आप जित खादै मन तृप्ति है नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग मैं से खट है जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस निश्चल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवा। पार ब्रह्म फरमाया मीह गुठा सहज सुपाए तन तन बहुत उपजिया रिथमी रजी तिप्त अगहाय सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाय पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाय परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याय। महला पंजवा। जीवन पद निर्वाण।

कारण रंग रूप रस बाद के करह परानिया जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक सरन द्वार जे तुद भावही पौड़ी जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से वड भागे नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे।

दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे दिठा मृत को तिल बेठी आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़ी है, सो सच कमावो नेड़े देखो पार ब्रह्म, एक नाम त्यावो।

सब निदान घर जिस दै हर करे सो होवै जप जप जीवह संत जन पापा मल धोवै चरण कमल हिरदय वसह संकट सब खोवै गुर पूरा जिस भेटीऐ मर जन्म ना रोवै प्रभ दर्श प्यास नानक घणी किरपा कर देवै सलोक डखणा महला पंजवां भोरी परम वंजाए प्रिय मोहब्बत हिक।

सो नाही पत अपत ताकी नहीं लाज तब जानोगे जब उगरे गोपाज कहो कबीर पत हर परवान सर्व त्याग भज केवल नाम। गौड़ी कबीर जी नगन फिरत जो पाईए जोग बन का मिर्ग मुक्त सब होग क्या नांगे क्या बांधे चाम जब नहीं तीन से आत्म राम रहाओ मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई मुक्ति भेद न गईया काई गेंद राख जो तरिये पाई खुसरे क्यों ना परम गत पाई कहो कबीर सुनो नर पाई राम नाम बिन किन गत पाई। गौड़ी कबीर जी

रत बहु रूप रचाही, तिनको दया सुपने पी नाही। चार चरण कह बहु आगर, साधु सुख पाव है कल सागर। कहो कबीर बहु काय करीजै, सर्बस छोड़ महारस पीजै।

जौ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। गौड़ी कबीर जी अंधकार सुख कबह ना सोई है, राजा रंक दो मिल रोई है। जौ पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ। जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कहो कां की माया।

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ कहां ही जान जान सब कह तहां ही रहाओ कहन कहावन नह पति आई है तो मन माने जाते हों मैं जई है जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग होए नहीं चरण निवास कहो कबीर एह कहिए काहे साध संगत बैकुंठ आहे गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाए।

कीजै जो आपन जीजै। मैं ना मरू मरबो संसारा, अब मोहे मिलो है जे आवनहारा रहाओ। या देही परमल महकंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। कुवता एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परै मतहारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवता ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी, अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी। साकत मर है संत सब जीव है।

ला पंजवा ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमोहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए।

गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यो जल छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप का हीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप किया कांसी मरन भया मगहर की बासी कांसी मगहर सम बिचारी पोसी।

सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंधा, सत राम झूठा सब धंधा, गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके, जमते उल्ट भये है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उल्ट भये है मीता, साकत उल्ट सुजन भये चीता, अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया, शांत भई जब गोविंद जानिया, रहाउ तन मह होती कोट अपाद, उल्ट भई सुख सह

गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लाव खोजत तन मह ठौर ना पाव लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाओ एक पाए देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पहाई मुक्त अनंत पुकार।

नहाऊ। तिनकै सद बलिहारै जाऊ। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन पावै रहाऊ। जिहे कट राम रहया भरपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी, वातु कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बीचारा रहाउ, सहज कलालन जो मिले आई, आनंद माते अन दिन जाई, चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तव अनुभव पाया, गौड़ी कबीर जी मन का सुपहो मनह व्यापी, मनह मार कमन सिद्ध थापी, कमन सो मन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाउ, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना हुई,

अंत समाया। कैसे जीवन हुए हमारा जब ना होए राम नाम अधारा रहाओ। कहो कबीर खोजो असमान राम समान ना देखो आन। गौड़ी कबीर जी जेहे सिर रच रच बांध तपाग सो सिर चुंच सवार है काग। किस तन तन को क्या गर भैया राम नाम का।

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हम हो ना मांगिया पावे बिछिया अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाओ इस सुख ते सिव ब्रह्म डराना सो सुख हम हो साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन में।

जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को राव रहे कबीरा, गौड़ी गुआर री अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भये लिव लागे रहाउ, साधक सिद्ध सगल मुनहारी, एक नाम कल्प तार तारी।

गोर ठपी, रे जी न लाज लाज तोहे नाही, हर तज कत काहू के जाही रहाओ, जाको ठाकुर ऊंचा होई, सो जन पर कर जात ना सोई, सो साहिब रहया भरपूर, सदा संग नाही हर दूर, कवला चरण सरन है जाके, कहो जन का नाही घर ताके, सब को कह जास की बाता, सो समरथ निज पत है दाता, कह कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवर ना होई।

आधार जा स्थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखो ताते अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई।

सूतक सूतक श्रवनी होई उठत बैठत सूतक लागे सूतक परै रसोई फासन की बिद सब को जाने छूतन की एक कोई कह कबीर राम हृदय विचारे सूतक तिन ना होई गौड़ी।

तिन तैसी झल देखी गौड़ी तह पावस सिंध धूप नहीं सहिया तह उत्पत परलो नाही जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै सुन समाद दो तह नाही सहज की अकथ कथा है निरारी तुल नहीं चढ़ै जाए ना मकाती हल्की लगे ना भारी रहाउ अर्ध उर्द दो तह नाही रात दिन सतह नाही जल नहीं पवन पावक फुन नाही सतगुर तहां समाही अगम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लहिए कहो कबीर बल जाओ गुर अपने सत संगत मिल रही है गौड़ी पाप पुन दोए बैल बसाही पवन पूंजी परगासियो तृष्णा गुण भरी घट पीतर इन बिद टांड बसाहयो ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार कियो बनजारा रहाओ काम क्रोध दोए भये जगाती मन तरंग बटवारा पांच तत्व

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहू घर आए मुकलाऊ आए रहाऊ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्ज सवारे ता सुहागन जानिए गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पल मीठा अवरना दूजा भाई रुंडित मुंडित एक है शब्दी ए कह है सिद्ध पाई हर बिन भरम भलानी अंधा जाप है जाओ आप छुटकावन ते बांधे।

पिंड तह नाही, रचनहार तह नाही, जोड़नहारू सदा अतीता, एह कहिए किस माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए बिनासी, का को ठाकुर का।

जहाव खांड ब्रह्मांड मह सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे हुए पसारी मन पवन दोए तुम्बा करी है जुग जुग सारद साजी थिर पई तंती टूटस नाही अनहद किंगरी बाजी सुन मन मगन भये है पूरे माया डोल न लागी कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी पौड़ी गाज नाभ गाज दास गाज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधिकाई गई बनावन माहो कर छोड़े जाए जलाहो रहाओ गजी ना मिनी है तोल ना तुलिय पांचन सेर अढ़ाई जो कर पांचन बेग ना पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस

नतर रही उरझाई छोड़ पसार इहां रहो बपुरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा हुए मोहोए जित घट नाम ना उपजे फूट मरे जन सोए सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ साध मिले सिद्ध पाई है।

आई गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है

माया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हूं लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम उसारी किन मह बिन सजाए अहंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाव जा तिस भावे ता हुक्म मनावे इस बेड़े को पार लंघावे गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी कहो कबीर भज सार गपानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नौवा जोन छाड़ जो जग मह आयो लागत पवन खसम बिसरायो जियरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन मह उर्द तप करता तौ जठर अगन मह रहता लख चौरासी जोन भ्रम आयो अब के छुटके ठौर ना ठायो कहो कबीर भज सार गपानी आवत दिसै जात ना जानी गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांछी।

गुण गाइय जाते पाइय परम निदान रहाउ। क्या जप क्या तप संयम क्या वर्त क्या स्नान जब लग जुगत ना जानी भाउ भगत भगवान। संपै देख ना हरखीय विपत देख ना रोए ज्यों संपै त्यों विपत है विद निरति आसो होए। कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार सेवक सो सेवा भले जिह घट बसै मरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार।

है रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी लोचन भरी ले।

साधु परम प्रगट हुए नाचो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रन ते डरपे सती के सांचे भांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है लीनो हाथ संदौरा रहाऊ काम।

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक

करै उधार, जानक वीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरभउ, तरन तारन राम राया रहाउ, जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही, अब हम तुम एक भये है, एक देखत मन पति आही, जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई, कह कबीर बुद्ध हर लई मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी, खट नेम कर कोठड़ी बांधी, बस्त अनूप बीच पाई, कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई, अब मन जागत रहो रे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो, चोर मुस्सै घर जाई रहाओ, पंच पहरुआ दर मह रहते, तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चेत हुए रहो, तव लै परगास उजारा, नौ कर देख जो कामन भूली, बस्त अनूप ना।

तास गुण गावे है, तास बस है मूरे प्राणा न रहाऊ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित, गगन मंडल में त्या नाना। विखै रोग पै बंधन भागे, मन निज कर सुख जा नाना। एक समत रत जान मान प्रभ, दूसर मन है ना आनाना। चंदन बास पय मन बासन, त्याग घटियो अभमान हाना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर, तास प्रभु है था नाना। तेहे बड भाग बसियो मन जाकै, कर्म प्रधान मथा नाना। काट सकत शिव सहज परगासियो, एक एक समानाना। कह कबीर गुर पेट महासुख, भ्रमत रहे मन मानाना।

बावन अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्ही माहे ये अखर खिर जाहिंगे ओए अखर इन मह नाहे जहां बोल तह अक्षर आवा जह अबोल तह मन ना रहावा बोल अबोल मद है सोई जस ओह है तस लखै ना कोई लह लहू तो क्या कहूं कहूं ता को उपकार भटक बीज।

किरण कमल मह पावा, सास बगास संपट नहीं आवा, हर जे तहां कुसम रस पावा, कह कहां कह का समझावा, खखा एह खोड़ मन आवा, खोड़े शाड़ ना दह दिस तावा, खसमह जान खिमा कर रह, तो हुए निखियो अखै।

गह गगन रहाई, कग्गा घट घट निमसै सोई, घट फूटे घट तबह न होई, ता घट माही घाट जो पावा, सो घट छाड़ अब घट कत तावा, नन्ना निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह, चचा रचत चित्र है भारी,

यह शत्रपत पासा शाक के ना रहो शाद के ना आसा रे मन मैं तो सिन सिन समझावा ताहे शाद कत आप बंधावा जज्जा जो

झज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो झजक नाही परवाना, कत चख चख और न समझावा, झगर किए झगरो ही पावा, नन्या निकट सो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए, जा कारण जग ढूंढ्यो, नेरो पायो ताहे, तटा बिकट घाट घट माही, खोल कपाट महल के ना जाही।

न डर हुआ डर उर होए भागै टड्डा ढिग ढूंढ कातियाना ढूंढत ही तह गए पराना चढ़ समेर ढूंढ जब आवा जेह गड़ गड़ो सो गड़ मह पावा।

पावा, बिंद है बिंद ना बिचरन पावा, बंदो होए बंदगी गह, बंद को होए बंद सुदल है, पब्बा भेद है भेद मलावा, अब पव पान परोसौ आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया भेद भूपत पहचानिया, मम्मा मूल गहया मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता बिल मावे, मगन पया ते सो सच पावे, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई।

जैया जो जान है तो दुर्मत हन कर बस काया गांव रण रूतो भाजे नहीं सूरो थारो नाव रारा रस निरस कर जानिया होए नरस सो रस पहचानिया ए रस छाडे ओह रस आवा ओह रस पिया ए रस नहीं भावा लल्ला ऐसे लिव मन लावे अनत न जाए परम सच पावे अर जो तहा प्रेम लिव लावे तो अलह लह लह चरण समावे ववा बार बार बिसन समहार बिसन

होए, एहो अर ओहो जब मिले तब मिलत ना जाने कोय। सत्सा सो नीका कर सुध हो, घट परचा की बात नरुद्ध हो। घट परचै जो उपजै पाओ, पूर रहया तह त्रे पवन राओ। खखा खोज परै जो कोई, जो खोजै सो बहुर ना होई। खोज बूझ जो करै बिचारा, तो भवजल तरत ना लावै बारा। सत्सा सो सह सेज सवारै, सोई सही संदेह निवारै। अल्प सुख छाड परम सुख पावा, तब एह त्री ओह कंत कहावा। हा हा होत हुए नहीं जाना, जब ही हुए तब है मन माना। है तो सही लख जो कोई, तब ओही ओह एहो ना होई। न्यो न्यो करत

गए केते, खिरत खपत अजहू नह चेते, अब जग जान जो मना रह, जह का बिछरा तह थिर लह, बावन अखर जोरे आन, सक्या ना अखर एक पछान, सत का शब्द कबीरा कह, पंडित होए सुअन पैर है, पंडित लोगहा को व्यवहार, ज्ञानवंत को तत विचार, जा कै जी जैसी बुद्ध होई।

अकुल निरंजन एक पाय तृतीया तीने सम कर लियावे आनंद मूल परम पद पावे साध संगत उपजै विश्वास बाहर भीतर सदा परगास चौथे है चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कबहु ना बहो।

एकादशी एक दिस तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहूं लोक का पियो अचरज भया जीव ते सियो। तेरस तेरह अगम बखान अर्द उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरहु ध्यान कतनी कथिया ब्रह्म ज्ञान। पुण्यो पूरा चंद आकाश पसरह।

रीत पंच चोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए नातर खरार सहराई राय बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल मह हर का बास गुर मिल दो एक सम धरे उर्द पंक लै सूदा करे बृहस्पत बिख्या दे बहाय तीन देव एक संग लाय तीन नदी तह त्रिकुटी माहि हैनस कसमल तो वह नाहि सुकृत सहारे सो एह व्रत चढ़े अन दिन आप आप स्यो लड़े सुरखी पांचो राखे सबे तो दूजी दृष्ट ना पैसे कवे थावर थिर कर राखे सोए जोत दी वटी घट मह जोए बाहर भीतर भया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जब लग घट मह दूजी आन तौ लो महल न लाभे जान रमत राम।

की एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारियले राम कहत जन कस ना तरे रहाउ तारी ले गन का बिन रूप कुबजा ब्याज अजामल तारियले करन बदक जन तेऊ मुक्त भये हौ बाल बाल जिन राम कहे दासी सुत जन बिदर सुदामा उगर सैन कौराज दिए जापहीन तापहीन कुलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेऊ तरे राग गौड़ी रवदास जी के पदे गौड़ी गुआर री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति।

प्रसाद कूप भरियो जैसे दादरा कस देश विदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कश आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी रहाओ मन भई।

मोरे मोसौ को ना कह समझाए जाते आवा गमन बिलाए रहाव बहु विद धर्म निरूपी है करता दिसै सब लोए कवन कर्म ते छूटी है जेह साधे सब सिद्ध होए कर्म अकर्म विचारी है शंका सुन वेद पुराण संसा सद हृदय बसै कौन हिरै अभमान बाहर उदक पखारी है घट भीतर बेबिद बेकार शुद्ध कवन पर होए वो सोच कुंचर बिद व्यवहार रब प्रगास रजनी जथागत जानत सब संसार पारस मानो तांबो छुए कनक होत नहीं बार परम परस गुर भेटी है पूर्व लिखत ले लाट हुन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट भगत जुगत मत सत करी भ्रम बंधन काट बेकार सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक बेचार अनक जतन निग्रह की।

पड़े रिखी सुर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माछ पयाले गावन तुदनो रत

वह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे है हर त्यावे है तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको।

जानोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला पहला चौपदी कर दूजा सुन वड्डा आखे सब कोई।

करे गुर प्रसाद वस्से मन आई दुख अनेरा विचों जाई साच प्यारा आप करे अवरी को साच ना दे जे किसे देव खाने नानक आगे पूछ ना ले आसा महला पहला काल मदीरे घट के घाट दौलत दुनिया।

किस दरगाह पावे मान। आसा महला पहला जेता शब्द सुत धुन तेती।

कही है, सर्ब निरंतर रव रहिया, नाल कटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सिष्ट गया, आग्या अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या बड़ा पहया, रतन उपाय तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया, आसा महला पहला, कर्म करतूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप नारेख अनाहद वाजै, शब्द निरंजन की।

याद जब लग हृदय न आवह जाद तौ प्रवाह के ही क्या कीजै जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाउ मन की मत मता गल मता जो किस बोलिए सब खतो खता क्या मुँह लै कीचै अरदास पाप पुन दोए साखी पास जैसा तू करह तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जे ही तू मत देहे ते ही को पावे तुद आपे पावे तिवें चलावे राग रतन परियां परवार तिस विच उपजै अमृत सार नानक करते का इहो धन माल जे को बूजै इहो विचार आसा महला पहला कर कृपा अपने घर आया।

हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाव गुरु द्वारे हमरा व्याहो जे हुआ जा सहु मिलिया ता जानिया तेहो लोका हमें शब्द रविया है आप गया मन मानिया अपना कार्ज आप सवारी पूर्ण कार्ज ना हुई जित कार्ज सत संतोख दया धर्म है गुरमुख बूझे कोई भणत नानक सबना का पिर एको सोई जिसनो नदर करे सा सुहागण होए आसा महला पहला ग्रहो बन समसर सहज सुपाई दुर्मत गत पई कीरत थाए सच पौड़ी साचो मुख नाव सतगुर सेव पाए निज थाव मन चूरे खत दर्शन जान सर्व ज्योत पूर्ण भगवान रहाव अधिक त्यास भेख बहु करे दुख बिख्या सुख तन पर हरे काम क्रोध अंतर तन हिरे दुबदा छोड़ नाम निस्तरे सिफत सलाहन।

हर जियो राख अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ। कर्म धर्म सच साचा नाओ, ता कै सद बलिहारे जाओ। जो हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निदान, हर वार जिन पाया धन नारी।

खेल गुरमुख निर्मल रह प्यारी ज्यो जल अंब ऊपर कमल नरारी बुरा भला कहो किसनो कही है दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लही है।

चिंत करे कह सुनह जो मानह नाऊ हों बलिहारे तां कह जाऊ नानक एक कह अरदास जियो पिंड सब तेरे पास जा तू देहे जपी तेरा नाऊ दरगाह बैसन होए थाऊ जा तुझ भावे तां दुरमत जाए ज्ञान रतन मन वसे आए नदर करे ता सतगुर मिले प्रणवत नानक पवजल तरे आसा महला पहला पंचपदी दुध बिन तीन पंख बिन पंखी जल बिन उत्पुज काम नाही क्या सुल्तान सलाम विहूना अंधी कोठी तेरा नाम नाही की विसर है दुख बहुता लागे दुख लागे तू विसर नाही रहाऊ अखी अंध जीव रस नाही कन्नी पवन ना वाजे चरनी चले पजूता आगे विण सेवा फल लागे अखर बिरख बाग भोए चोखी

सो प्रगट जाय, सच निशान है ठाक न पाय। पंडित पढ़ै बखान है वेद, अंतर वसत न जान है भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना हुए, साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हौ आखा आख बखानी, तू आपे जान है सर्ब वडाणी। नानक एको दर दीवान, गुरमुख साच तहां गुदरान। आसा महला पहला, काची गागर देह दोहेली। उपजै बिरसै दुख पाई, इहो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै। बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सर्वी रंगी रूपी तू है। इस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवै। फिर स्यों मिलन ना दे बुरी, सखी साजनी के हौ चरण सरेमो। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना अवर कोई, ज्यों तू राख है तिव ही रहना। दुख सुख देव है कर है सोई, आसा मनसा दू विनाशक। त्रिहो गुण आसम रास पई, तुरी अवस्था गुरमुख पाई है। संत सभा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हिरदय अलख अपेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाई सहज सेवा, आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई, रोवै पूत ना कलपै माई। एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जम पुर जाहे। गुर दीखिया ले जप तप कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे। नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यो रह समाए। आसा महला पहला, आप करे सच अलख अपार। हों पापी तू बख्शन हार, तेरा भाणा सब किछ होवै। मन हथ कीचै अंत वगोवै रहाउ, मन मुख की मत कूड़ व्यापी। बिन हर सिमरन पाप संतापी, दुर्मत त्याग लाहा किछ लेवहो। जो उपजै सो अलख अपेवहो, ऐसा हमरा सखा सहाई। गुर हर मिलिया भगत दिरडाई, सगली सौदी टोटा आवे। नानक राम नाम मन भावे, आसा महला पहला चौपदे। विद्या विचारी ता पर उपकारी, जा पंच रासी ता तीर्थवासी। घुंगरू वाजे जे मन लागे,

मेरा सहो जागे हौ निस भर सोवा क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। सहो जागे हौ निस भर सोवा रहाऊ आस प्यासी सीजै आवा आगे।

पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ कर है सलाम लखा उपर फरमाइश तेरी लख उठ राख है मान जा पत लेख ना पवे ता सब नराफल काम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंधो अंधा रहाओ लख खटिए है लख संजिए है खाज है लख आव है लख जाए जा पत लिख ना पवे ता जी किते फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़ है पुराण जा पत लिख ना पवे ता सबे को परवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार अहलस हृदय जी वसे नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को पकड़ पाए।

आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्म राव सच्चा नावण तां फीऐ जां एनस लागै भाव इक लोकी होर समचरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबहू न खूटस नाहीं आसा घर चौथा महला पहला।

घर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए पीर पे कांबर सालक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पाए साध सहज सुख रस कस तजी अले कापड़ छोड़े चमन लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासी थिर ना रह जैसे भवह उदासी मन मेरा दयाल सेती थिर ना रह लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाव फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू पंच सखी मिल रु

रहाउ। हर हर हर कंठले पहरे दामोदर दंतले, कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तरे, मधुसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पट ले, तीर्ज धरी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे, मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे, ज्ञान राओ जब सेज आवे ता नानक भोग करे, आसा महला पहला कीता हुए करे कराया, तिस क्या कहिए भाई जो किस करना सो कर रहया, कीते क्या चतराई तेरा हुक्म भला तुद पावे, नानक तां को मिले वडाई, साचे नाम समावे रहाव, किरत पया परवाना लिखिया बहुड़ हुक्म ना होई, जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई, जे को दरगहा बहुता बोले नाओ पवे बाजारी, सतरंज बाजी।

सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावै कर करनी कस पाई पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चुआई बाबा मन मतवारू नाम रस पीवै सहज रंग रच रहिया ऐनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया रहाउ पूरा साच प्याला सहजे तिसह पियाए जा कौ नदर करे अमृत का व्यापारी होवै क्या मद छूछ भाउ धरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवै मुक्त बैकुंठ करे किया सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म ना हारे कहो नानक सुन परथर जोगी खीवा अमृत धारे आसा महला पहला खुरासान खसमा ना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तैं की दर्द न आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारे ता मन रूस न होई रहाव सकता सिंह मारे पै बगै खसमै सा पुरसाई रतन बगार वगोए कुत्ती मोया सार ना काई आपे जोड़ बछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई जे को नाउ तराए वड्डा साध करे मन पाणे खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगै दाणी मर मर जीवै तां किस पाई।

कोई गुर के दर्शन सदा सुख होए। गुर के दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवे परवार साधार। नुगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही। गुर के शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगे ना पीर। जम काल किस नेड़ ना आवे, नानक गुरमुख साच समावे। आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गवाए। सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरपहु दाता सदा मन हुए। सच्ची बाणी पाए भाग कोई।

साचे शब्द समाहे सेवड भागी जिन नाम त्याया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह तिन बलिहार है जाऊं दर साचे साचे गुण गाव आपे देवे सहज सुपाए नानक कीमत कहन ना जाए आसा महला तीजा सतगुर विच वड्डी वड्याई श्री वछुने मेल मलाई आपे मेले मेल मलाई अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन बिद होए हर अपरंपर अगम अगोचर गुर कै शब्द मिले जन कोए रहाओ गुरमुख कीमत जाने कोए विरले कर्म प्राप्त होए ऊची बाणी ऊचा होए गुरमुख शब्द बखाने कोए विणनावे दुख दर्द शरीर सतगुर भेटे ता उतरै पीर बिन गुर भेटे दुख कमाए मनमुख बहुती मिले सजाए हर का नाम मीठा अतरस होए पीवत रह पियाए सोए गुर कृपा ते हर रस पाए नानक नाम रते गत पाए आसा महला तीजा मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर सेवत ही सुख शांत शरीर शब्द तरे जन सहज सुपाए किनकै हम सद लागह पाए जो मन राते हर रंग लाए तिनका जन्म मरण दुख लाथा ते हर दरगाह मिले सुपाए रहाओ शब्द चाखै साचा साध पाए हर का नाम मन वसाए हर प्रभ सदा रहे।

सुख पाई, संत संगत मेल हर गुण गाय, नामी नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की वाणी नाम वजाय, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मन मुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाए आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाई, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में है लाहा हर जप लै जाई, रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाई, बिरथा जन्म दूजै लो भाई, नाम मिहूनी दुख जलै सबाई, सतगुर पूरै बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इथों छुड़किया खौर ना पाई, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति जोत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा, नानक हो मैं मारी सदा उदासा, आसा महला तीजा, लाले अपनी जात गुआई।

सोग हर कदोय सम कर जाने गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ करनी कार तुरो फरमाई बिन शब्द को थाए ना पाई करनी कीर्त नाम वसाई आपे देवै ढिल ना पाई मन मुख भरम भुलै संसार बिन राशी कूड़ा करे व्यापार बिन राशी वखर पल्लै ना पाई मन मुख भुला जन्म गो

होए नानक नाम वडाई होए आसा महला तीजा मनमुख झूठो झूठ कमावे खसमे का महल कदे ना पावे दूजह लगी भरम पलावे ममता भादा आवे जावे दुहागनी का मन देख सिंगार पुत्र कलत धन माया चित लाए झूठ मोह पाखंड वकार रहाओ सदा सुहागन जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अन दिन हर रावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागन साची जिस साच प्यार अपना पिर राखे सदा उर तार नेड़े वेखे सदा हदूर।

नानक साच समावै सोए। आसा महला तीजा भगत रत्ता जन सहज सुपहाई। गुर कै भै साचै साच समाई।

अवर ना कोई। गुरसागर पूरा भंडार, उत्तम रतन जवाहर अपार, गुर प्रसादी देवनहार, नानक बख्शे बख्शनहार।

पछान, गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार, गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए, एहा भगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी भवजल तरे, गुर कै बचन भगत थाए पाए, हर जीव आप वसै मन आए, हर कृपा करे सतगुरु मलाए, निश्चल भगत हर सिओ चित लाए, भगत रते पिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए। आसा घर अठवां काफी महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर कै भाणे सतगुर मिले सच सोझी होई, गुर प्रसादी मन वसै हर बूझै सोई, मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई, गुर कृपा ते मन वसै तां सदा सुख होई रहाउ, इस जुग में निरपो हर नाम है पाईऐ गुर विचार, बिन नामै जम कै वस है मन मुख अंध गुआर, हर कै भाणै जन सेवा करै बूझै सच सोई, हर कै भाणै सलाहियै भाणै मन्नै सुख होई, हर कै भाणै जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई, नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई, आसा

सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गुआया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझी माहे, तुझ बिन

कोए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर दूजा महला चौथा, किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तड़ा किया कुर्म सके नाल जवाई, किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई, हमारा तड़ा हर रहया समाई, हम हर स्यों तड़ा किया मेरी हर टेक, मैं हर बिन पख तड़ा अवर न कोई, हम हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ, जिन स्यों तड़े करह से जाहे, झूठ तड़े कर पछोताहे, थिर न रह मन खोट कमाहे, हम हर स्यों तड़ा किया जिसका कोई समरथ नाहे, यह सब तड़े माया मोह पसारी, माया को लूजह गवारी, जन्म मरह जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी, काल युग मह तड़े पांच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत संग मलाए, हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे, प्राया सिदर अटकले अपना अहंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तड़ा धर्म सब सृष्ट जिने आवे, आसा महला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया।

गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं धर नहीं काई, नाम रविया सब सास ग्रासा रहाउ, नाम मैं सुरत सुनी मन पाई, जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सखाई, नाम हीन गए मूड नंगा, पच पच मुए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उथापे, नानक नाम देवै हर आपे, आसा महला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, हल लागे हर रस करसाई, हर हर नाम जप अनत तरंगा, जप जप नाम गुरमत सालाही, मारिया काल जम कंकर भुयंगा रहाउ, हर हर गुरमह भगत रखाई, गुर तुठा सिख देवै मेरे भाई, हौ मैं कर्म किस बिद नहीं जानै, ज्यो कुंचर नहाए खाक सिर छाणै, जे वड भाग होवै वड ऊचे, नानक नाम जपहै सच सूचे, आसा महला चौथा, हर हर नाम की मन भूख लगाई।

सुनी मन सरसा नाम लाहा लै गुरमत बिगसा नाम बिना कुष्टि मोह अंधा सब ने फल कर्म किए दुख धंधा हर हर हर जस जपै वड भागी नानक गुरमत नाम लिव लागी एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधिया जोत स्वरूप अनाहद वाजिया महा आनंद गुर शब्द विचार प्रिय सो राती धन सुहागण नार जन नानक बोले ब्रह्म विचार जो सुने कमावे सो उतरे पार जन्म ना मरे ना आवे ना जाई हर सेती ओहो रह समाई आसा महला पंजवां निज भगती सील।

वक वक परमावै घर की नायक घर वास ना देवै जतन करूं पुरजाई परेवै रहाउ तुरकी भेजी।

परदेश झाग सौदे कहो आया, वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्ले आनी, देख रतन इहु मन लपटानी, सहा व्यापारी द्वारे आए,

समाना, कर मस्तक धार राखियो कर अपना, क्या जान है एह लोग अजाना रहाओ, सुहाग हमारो अब हुन सोहयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोहयो, आंगन मेरा सोभा चंद, निसबासर प्रिय संग आनंद, वस्त्र हमारे रंग चलूल, सगल आभरण शोभा कंठ फूल, प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान, दुष्ट दूत की चूकी कान, साधु कुचियां सत

कहो नानक जोह पिरह सिंगारी थिर सोहागन संग पतारी आसा महला पंजवा दान दे कर पूजा करना लैत देत उनमू कर परना।

जानते मन निर्मल हर हर गुण गाय पय आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलो सहज सुपाए रहाओ धावत रहे एक एक बूझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे

सिर बिसरिया अपना कीता पावे निंदक रहाव। जे कोई उसका संगी होवे नाले ले सदावे अनहुंदा अजगर भार उठाई।

करना, मुआ होए तिस निश्चल रहना, जीवत मुए मुए से जीवे, हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाओ, काची मटकी बिनस बनासा, जिस छूटे त्रिकुटी किस निज घर वासा, ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला, तरन पड़े तिस लगे ना काला, प्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुरमिल भए निहाल, आसा महला पंजवा, पुत्री तेरी बिद कर थाटी, जान सत कर होएगी।

चौपदे एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रह कैसे मिलो प्यारी एक पल दिन समो को कब हो ना बिहावे।

सुख निदान अमृत सार सदे ही परपूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवा कर किरपा हर प्रगटी आया। मिल सतगुर धन पूरा पाया ऐसा हर धन संची है भाई। पाए न जल जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाओ। तोट न आवे नखुट न जाए खाए खर्च मन रहया अगाए। सो सच साह जिस घर हर धन संचाना इस धन ते सब जग वरसाना। इन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना जन नानक अंतवार ना।

सर पर पौसी रात रहन गई फिर हुए प्रभात माया मोहे सोए रहे अपागे गुर प्रसाद को विरला जागे कहो नानक गुण गाइए नीत मुख उजल हुए निर्मल चीत आसा महला पंजवा नौ निद तेरह।

पंजवा निकट जी कै सद ही संगा कुदरत वरत रूप अर रंगा करह ना चुरै ना मन रोवन हारा अवनासी।

पंजवा हर रस छोड़ होशै रस माता घर मह वसत बाहर उठ जाता सुनी ना जाई।

त्यों कर प्रतपाला आसा महला पंजवां जी प्राण धन हर को नाम ईहा ऊहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत भंडार

पूरी बणत बनाई, नानक भगत मिली वड्याई। आसा महला पंजवां, गुर कै शब्द बंधावो

रहाओ तृप्त अगावन साक्य नाय अठसठ मज्जन संत तुराय सब मैं जानो करता एक साध संगत मिल बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभमान नानक को गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास पई मत पूरी तांते बिनसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर।

बाद एक ऊत कत छोड़ ना जाए, नानक गीता हर रस माहे। आसा महला पंजवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटकै दुरमते अपनी धारी, होए नमाणी सेव कमावे है, ता प्रीतम होवे मन प्यारी, सुन सुंदर साधु बचन उधारी।

यही व्यवहारा भाग्यमान भगत हुए तुम्हारी जो यह मंत्र कमावे नानक सो पौ जल पार उतारी। आसा महला पंजवा धोपदे पई प्राप्त मानुख देहरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भवजल तरण कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाउ जप तप संयम धर्म ना कमाया।

आप सहाय गुण निदान नित गावै नानक सहसा दुख मटाई आसा महला पंजवां औखद खायो हर को नाउ सुख पाए दुख बिन सिया थाउ ताप गया बच

गुरपूरे आनंद पया सब मिटे वसूरे रहाओ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवा बांशत नाही सो बेला आई बिन हुक्मै क्यों

चरण संग मेली सुख सहज आनंद सोहेली साध संग गुण गाए अतोली हर सिमरत नानक पई अमोली। खासा महला पंजवा काम क्रोध माया मद मत सर ए खेलत सब जुए हारे सत संतोख दया धर्म सच एह अपने ग्रह भीतर वारी जन्म मरण चूके सब भारे मिलत संग भयो मन निर्मल।

0: कर कर डूबे खप खप मोए गवारा।
1: गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा।

जागै साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वडभागे कृपा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा घर छेवा महला पंजवा जो तुद पावै सो परवाना सुख सहज मन सोई करन कारण समरथ अपारा अवर नाही रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावह मसलत मता सियान भजन की जो तू करह करावह रहाउ अमृत नाम तुम्हारा प्यारी साध संग रस पाया तृप्त अगाए सी जन पूरे सुख निदान हर गाया।

जन्म की मल धोवै पराई अपना कीता पावै इहां सुख नहीं दरगाह ढोई जमपुर जाए पचावै निंदक अहला जन्म गवाया पहुँच ना साकै काहू बातै आगै ठौर ना।

गोविंद भजन की मत है होरा, बरमी मारी साप ना मरी, नाम ना सुनी डोरा रहाउ, माया की किरत छोड़ गवाई, भगती सार ना जाने, वेद शास्त्र

पाया। कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली। सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाले। आसा महला पंजवा उदम करत हो है मन निर्मल नाचे आप निवारी। पंच जना ले वसगत राख है मन में है इकंकारी। तेरा जन नृत करे गुण गावे रबाब पखावज ताल कुंगरू अनहद शब्द।

सुनावै कर संग साधु चरण पखारै संत धूर तन लावै मन तन अर्प धरे गुर आगै सत पदार्थ पावै जो जो सुने पेखै लाए श्रद्धा तां का जन्म मरण दुख भागै।

आया। रसक रसक बिगसानारी आसा महला पंजवा बंधन काट बसारे औगन अपना बिरद समारिया होए कृपाल मात पित न्याई बारक ज्यों प्रतपारिया गुरसिख राखे गुरु गोपाल काढ़ लिए महापव जलते अपनी नदर निहाल रहाओ जा कै सिमरन जमते छुटिया हलत पलत सुख पाइय सास ग्रास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाइय।

प्रभ अंतर जामी साध संग हर पाई खोल कवार दिखाले दर्शन पुनरप जन्म ना आई है मिलो प्रीतम स्वामी अपने सगले दुख हरों रे पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या तां कै संग तरों रे रहाओ महा उद्यान पावक सागर भये हरख सोग मह बसना सतगुर भेट भया मन निर्मल जप अमृत हर रसना तन धन थाप कियो सब अपना कोमल बंधन बांधिया गुर प्रसाद भये जन मुक्ते हर हर नाम आराध्या राख लिए प्रभ राखन हारे जो प्रभ अपने पाने जियो पिंड सब तुमरा दाते नानक सद कुर्बान।

बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी ऐसो समरथ वर्ण ना साको ताकि उपमा जात ना कहोरी काजर कोठ मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनियोरी महामंत्र गुर हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया।

पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुका ने हो रहा सखी सहेरी परम गया गुर फिर संग मेरी रहाव निकट आन प्रिय सेज धरी कान कड़न ते छूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया।

पाया अंतर बाहर एक दिखाया। आसा महला पंजवा पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संग रलिया कान कुंडलिया बस्तर उडलिया सेज सुखलिया मन गर्बलिया रहाव तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बिना ले धरन गडलिया रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया माया छलिया विकार बिखलिया शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया। आसा महला पंजवा एक बगीचा पेड़ घन करिया अमृत नाम तहां मह फलिया ऐसा करहु विचार ज्ञानी जाते पाई है पद निर्बानी आस पास बिकू

तेरै ओलै, भ्रम के परदे सतगुरु खोले रहाउ, हुक्म बूझ रंग रस माणी, सतगुर सेवा महानिर्वाणी, जिन तू जाता सो गिरस्त उदासी।

अत्यंत उदास अहंकार कर्म करत जी को जंजार प्रभ कृपा ते मन वासे आया नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संग हर की।

जा तू चित आवे सो नाम जपै जो जन तुद पावे रहाउ। तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत टह दुख डेरा। हुक्म बूझै सोई परवान साच शब्द जाका निशान। गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया भणत नानक मेरा मन सुख पाया। आसा महला पंजवां जहां पठाव हो तह तह जाई।

सूत परोई कट कट अंतर रव्या सोई ओपत परलोखिन में करता आप अलेपा निर्गुण रहता कर्ण कराम ने अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी। आसा महला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दलब देह जीती नहीं हारे किल बिख बनासे दुख दर्द दूर पय पनीत संतन की धूर रहाव प्रभ के संत उदाहरण जोग तिस भेटे।

रतन जन्म एहो सफल भया, कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवां, सतगुरे अपना सद सदा संहारे, गुर के चरण केस संग चारे, जागरे मन जागन हारे बिना

आपे पेड़ बिसथारी साख, अपनी खेती आपे राख, जत कत पेखों एकै ओही

कोट प्रभ तोरी आसा महला पंजवा हर हर अखर दुए एह माला जपत जपत पहे दीन दयाला करूं बेनती सतगुरे अपनी कर कृपा राख।

कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया। आसा महला पंजवां, जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख भरम।

रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मुका फिर पछताना, त्रिहु गुण मह वरत संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो ना

ना जानी, भोर भया बहोर पछतानी, प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी, प्रभ मिलबे की लालसा, तांते आलस कहां करोरी रहाओ, कर्म है अमृत आनन सारेउ, खिसर गयो भूम पर डारेउ, साध मोहे लादी अहंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे।

को पहुँच न सकह जन तेरे को, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसै बैरागी, नानक।

प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद भली बनी, जा कै ग्रह सब किछ है पूरन, सो भेटिया निरभय धनी रहाओ, नाम दृढ़ाया साध कृपाल, मिट गई भूख महा बिकराल, ठाकुर।

पंजवां ठाकर सिंह जाकी बन आई, भोजन पूर्ण रहे अगाई, कछु न थोरा हर भगतन को, खात खर्चत बिलचत देवन को रहाओ, जाका तनी अगम गुसाई।

उस बंधन ना हम बांधे, ना उस धंधा ना हम तांदे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सद केला, ना उस सोच ना हम

सब हुमा गर्भ मोह तज हूं रेन उनके संग देखो प्रभ नैन निमक निमक एही आराधो दिन सरहन ए सेवा साधो भये कृपाल गोपाल गोबिंद साध संग नानक बख्शिंद आसा महला पंजवा प्रभ की प्रीत सदा सुख होए प्रभ की प्रीत दुख लगे ना को।

सगल उदार है, प्रभ की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग भूले।

माया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर को दीनी, काच गगरिया अंब मझरिया, गर्भ

बाट घाट ग्रह बन बन जो है, मन तन लागे होए कै मीठी, गुर प्रसाद में खोटी डीठी, अगरक उसके वडे ठगाऊ, छोड़ह नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन भया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवा, आठ पहर निकट कर जाने।

चली ताका संग बांचह सुरदेव अमोघ दर्स सफल जा की सेव कर जोड़ नानक करे अरदास मोहे संतहां टहल दी जय गुणतास आसा महला पंजवां सगल सूख जप एक नाम सगल धर्म हर के गुण गाम महा पवित्र साधका संग जिस भेट त लागे प्रभ रंग गुर प्रसाद होए आनंद पावे जिस सिमरत मन होए परगासा ताकी गात मित

सब लिखते लेखा, भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे ता कै अनहद तूरा।

हर जसै अगानी जप जप जीवा सारग पाने करन करावन सरन परया गुर प्रसाद सहज घर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाउ लाल जिवे हर भरे भंडार तोट न आवै जप निरंकार अमृत शब्द पीवै जा।

ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई रहा। पाई ठगौली सब जग जोहया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया, वर्त नेम कर थाके पनह चरना, तट तीरथ भवे सब तरना, से उबरे जे

बाहां पकर हम राखा आसा महला पंजवा सर्ब दुख जब बिसरह स्वामी ईहा ऊहा कामना प्राणी संत तृपता से हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रव तुमरी रजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किस दिया तिस चितवत नाही।

गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वसया हर का नाम, नानक तिस ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवा, गावले हे तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जां की सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है, रहाओ जां का दान न खूटे नाही, पली भांत सब सहज समाही, जां की बख्श न मेटे कोई, मन वासाई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जां कै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गही निरभउ पद पाईऐ, सास सास सो गुण निद गाईऐ, दूर ना होई कतहू जाईऐ, नदर करे ता हर हर पाईऐ, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगै हर धन रास, आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुरपूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की शरणाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी

भेद ना जानो मूल साई जेहा मन तन हुए निहाल तुम संग भेटिया सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे

हर कीर्तन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निधान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निधान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवा जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रैन दिन सकर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब को

सगल रोग राखन हार अपार राखै अग्न माहे शीतल हर हर नाम सिमरत तपत जाए सुख सहज आनंद कणा नानक जन धूरा कार्य सगले सिद्ध भए

जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई। नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई। आसा महला पंजवा आवहो मीत इकत्तर हुए। रस कस सब पुंच है अमृत नाम हर हर जप है। मिल पापा मुंच है तत विचार हो संत जन हो। ताते बिघन ना लागे हीन भय सब तस्करा। गुरमुख जन जा

तो निद हर पावो सगली दासी ठाकुर सब कहती मेरा जिसे सिंगारे नानका तिस सुख बसेरा आसा मोहल्ला पंजवा संतां की होए दासरी।

हर नाम मजीठै रंग री त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ परता कह सुमानी है एहो शिंगार बनाए री दूजा भाव वसारी है एहो तंबोला खाए री गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बछाए री आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेट हर राए री तिस ही चज शिंगार सब साई रूप अपार री।

सर्व सुख पावों आज्ञा पावों के ना पावों। एक दतार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो हों मांगो आन ल जावो। सगल शत्रपत एको ठाकुर कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पे ना साको दर्शन खोज खजावो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको महल दुल पावो। अगम अगम अगाध बोध कीमत परे ना पावो। ताकि शरण सत पुरख की सतगुर पुरख त्यावो। पयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावो। कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना

मार्ग पंथ सुमारी नाम दृढ़ गुरमन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास हुए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्श पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवा महला पंजवा जिसनो तू अस्थर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समगरी सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ानी दिन दोए चार पुराहा पीत उपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की

मानै अगम अगम अगमई दास दास दास को करियो जन नानक हर सरनई आसा महला पंजवा रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला तोटे को बेग ताया सस्त बखर।

गंधण वहन सुन है उर जावे है, नाम लैत अलकाया, निंद चिंद को बहुत अमाहयो, बूजी उल्टाया, पारतान पारतान पारती निंदा, अखाद खाहे हरकाया, साच तर्म सिंह रुच नहीं आवे, सत सुनत शोहाया, दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, भगत टेक हर नाया, नानक आहे शरण प्रभ आयो, राख लाज अपनाया, आसा महला पंजवा, मिथ्या संग संग लपटाई, मोह माया कर बांधे, जह जानो सो चीत ना आवे, अहम बुद्ध भय आंदे, मन बैरागी क्यों ना अरादे, काच कोठरी माहे तू बसता, संग सगल बिखे की ब्यादे रहाओ, मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे, पलखिन सीजे अर जादे, जैसे मीठे साध लुभाए, झूठ धंद दुर्गम दे, काम क्रोध अर लोभ मोह, एह इंद्री रस लपटा दे, दीप वारी पुरख बधाटे, बहुर बहुर जन माते, जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन, तो गुरमेल सब सुख लादे, कहो नानक दिन रैन त्यावो, मार काढ़ी सगले अपादे, इउं जपियो भाई पुरख बधाते, भयो कृपाल दीन दुख भंजन, जन्म मरण दुख लाथे, रहाओ दूजा, आसा महला पंजवा, निमक काम स्वाद कारण, कोट दिन से दुख पावे है, करी मोह तरंग माण है, फिर बहुर बहुर पछतावे है, अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ, पलक दृष्ट देख भूलो, आक नीम को तू मर, जैसा संग बिसियर सिंह है रे, तैसो ही एहो परग्रहो, बैरी कारण पाप करता, बस्त रही आमाना, छोड़ जाहे तिन्ही स्यों संगी, साजन स्यों बैराना, सगल संसार एह बिद व्याप्यो, सो उबरेओ जिस गुर पूरा, कहो नानक पाव सागर तरेओ, पये पनीत शरीरा, आसा महला पंजवा दोपदे, लूक कमानो सोई तुम पेखेओ, मूड मुग्ध मुकरानी, आप कमाने कौले बांधे, फिर पाछे पछतानी, प्रभ मेरे सब विदे आगे जानी, भ्रम के मूसे तू राखत परदा, पाछे जी की मानी रहाओ, जित जित लाए तित तित लागे।

रहाउ। तिस सेवक कै हो बलिहारी, जो अपने प्रभ भावै तिसकी सोए सुनी मन हरिया। तिस नानक परसन आवै, आसा घर ग्यारवां महला पंजवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नटुआ भेख दिखावै बहु बिद। जैसा है ओह तै सारी, अनक जोन भ्रम्यो भ्रम भीतर। सुखै नाही परवे सारी, साजन संत हमारे मीता। बिन हर हर आनी तारी, साध संग मिल हर गुण।

तिन जान मिरदलिया साध संगत कै चली रे आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण तुन मुन जन खट बेते अवर ना

पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख न मन ते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग सगल सियानपा भज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे ना

महा पौजल लंगी है, सदा हर गुण गाव, जन्म मरण निवारी है, दुख ना जम पुर होए, नाम निदान सोई पाए, कृपा करे प्रभ सोए, एक टेक आधार एको, एक का मन जोर, नानक जपिए मिल साध संगत, हर बिन अवर ना होर, आसा महला पंजवां, जियो मन तन प्राण प्रभ के, दिए सब रस भोग, दीन बंदप जी दाता, सरन राखण जोग, मेरे मन त्याए हर हर नाम, हलत पलत सहाए संगे, एक स्यों लिवलाओ रहाओ, वेद शास्त्र जन

नानक का प्रभ तान आसा महला पंजवा डोल डोल महा दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिय नीत सास सास ते

किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यो त्यो रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवां अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप किरपाल किरपा प्रवतारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव मल मूत मूड जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे, रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी, ते पनीत संगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते, तिनके कुल उधारे, कोई ना जाने कोई ना माने, से परगट हर द्वारे, कमन उपमा देओ कमन वडाई, नानक खिन खिन वारे, आसा महला पंजवा, बावर सोए रहे, रहाव, मोह कटांब बिखैर आसमाते, मिथ्या गहन गहे, मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास, मन मुख सत कहे, अमृत नाम पदार्थ संगे, तिल मर्म ना लहे।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक।

संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवां घर पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवै पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावै लोभ बिखया बिखै लागे हर वित चित दुखाही।

दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लेखे ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया।

गोविंद नाय, साध संत मनाय, प्रिय पाय, गुण गाय, पंच नाद तूर बजाय, रहाओ कृपा पाए सहजाए दरसाए, अब रातिया गोविंद सिंह, संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए, गुर ज्ञान मन दृढ़ाए, रहसाए नहीं आए सहजाए, मन निदान पाए, सब

प्रभ त्याव भ्रम भीत जीत मटाव निद नाम नानक मोरै आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम।

तत पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूर्ण भाग आसा महला पंजवां हरख सोग बैराग आनंदी खेल रीद खायो रहाओ खिनहु भय निरभय खिनहु खिनहु उठ तायो खिनहु रस भोगन खिनहु खिनहु तज जायो खिनहु योग ताप बहु पूजा खिनहु परमायो खिनहु कृपा साधु संग नानक।

ना रहा अनन उपाव कर हां तौ निकसै सरन पैरी सखी थेर थेर चित थेर हां बन ग्रहो सम

अंदेसिया हां संत उपदेसिया मेरे मना जिस जन नाम सुख हां तिस निकट ना कदे दुख हां जो हर हर जस सुने हां सब को तिस मन्ने हां सफल सो आया हां नानक प्रभ पाया मेरे मना सावरी महला पंजवा मिल हर जस गाइए हां परम पद पाइए हां वा रस जो विदे हां तां को सगल सिदे हां अन दिन जागया हां नानक बड़ भागया मेरे मना रहाओ संत पग धोइए हां।

जीवन मुक्त मन नाम वसाय गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी

जग पंडत बिरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिर अहंकारी जग दुखिया सुखिया जन कोई।

को रोवे दुख कोई, सो रोवे जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सर।

भ्रांत सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरी जै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर मानै मन ते मन।

ससोग अमृत ज्ञान महारास भोग पंच समाई सुखी सब लोग सगली जोत तेरा सब कोई आपे जोड़ बछोड़े सोई आपे करता करे सो होई ताहे उसारे हुक्म सुमावे हुक्मों वरतै जो तिस पावै।

शब्द ना पछाणै, गुरमुख निर्मल नाम वखाणै। हर जियो आगै करी अरदास, साधु जन संगत होए निवास। किलविख दुख काटे हर नाम परगास, कर विचार आचार पराता। सतगुर बचनी एको जाता, नानक राम नाम मन राता। आसा महला पहला, मन मैगल साकत देवाना। बन खंड माया मोहे हैराना, इत उत जाहे काल के चापे। गुरमुख खोज लह घर आपे, बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमरहो राम नाम अत निर्मल, अवर त्याग हो हउमै कौरा। रहाओ इहो मन मुगद, कहो क्यों रहसी। बिन समझे जम का दुख सहसी, आपे बख्शे सतगुर मेलै। काल कंटक मारे सच पेलै, इहो मन कर्मा इहो मन धर्मा। इहो मन पंच तत ते जन्मा, साकत लोभी इहो मन मूड़ा। गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा, गुरमुख मन अस्थाने सोई। गुरमुख त्रे भवन सोजी होई, इहो मन जोगी भोगी तप तापै। गुरमुख चीनै हर प्रभ आपै, मन बैरागी होमै त्यागी। घट घट मन सा दुबदा लागी, राम रसायन गुरमुख चाखै। दर कर महली।

अपने वस किए हउमै ग्रास इकत थाए किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख इहो मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन भय निरंकारी इहो मन निर्मल दर घर सोई गुरमुख भगत भाओ धुन होई एहनस हर जस गुर प्रसाद घट घट सो कब याद जुगाद राम रसायन इहो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुरचर निवासा नानक हर जन के

तू आप भलावह नाम विसार, तू आपे रख है कृपा तार। रोग भरम भेद मन दूजा, गुरबिन भरम जप है जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देख है, बिन गुर शब्द है जन्म के लेख है। देख अचरज रहे बिस्माद, घट घट सुर नर सहज समाद। भरपुर तार रहे मन माही, तुम समसर अवर को नाही। जाकी भगत हेत मुख नाम, संत भगत की

दुख तिस लागे। जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग। नानक मुक्त भये हर रंग, आसा महला पहला एक तुकी। गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटै सच शब्द पछाने।

ताहा संचह धन जाए बिन हर भगत ना पवी थाए बंधन भेद बाद अहंकार बंधन बिन सह मोह विकार नानक राम नाम सरनाई सतगुर राके बंद ना पाई राग आसा महला पहला अष्टपदियां कर तीजा।

लालच दुख भारी साचो साहिब मन वसै हों मैं बिख मारी दुबदा छोड़ कवाटड़ी मूस हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका जन्म है के तारा की है

सच ना पाया, क्या भविए क्या ढूंढिए, गुर शब्द दिखाया, ममता मोह विसर्जिया, अपने घर आया रहाऊ, सच मिले सच्यार।

जानहू हुक्मी वजहो लिखाए आया जानिए लाहा पल्ले पाए हुक्म सियाणी है हुक्मी पैंदा जाए दरगाह पानी है।

सोह करे जिस आप कराए, नानक सिर दे छूटी है दरगाह पत पाए। हासा महला पहला रूड़ो ठाकुर माहरो रूड़ी गुरबाणी, वड्डे भाग सतगुर मिले पाईए पद निर्वाणी। मैं उल गया उल गी हम छोरू थारी, ज्यो त्यों राख त्यों रहा मुख नाम हमारे रहाओ। दर्शन की प्यासा कणी भाणे मन पाईए, मेरे ठाकुर हाथ वड्याईया भाणे पत पाईए। साचो दूर ना जानी है अंतर है सोई,

बाहर किश नाही गुर प्रसादी पाई है, अंतर कपट खुलाई सतगुर ते हर पाई है पाई। अंतर नाम निदान है पूरा सतगुर दिया दिखाई रहाओ, हर का गाहक होए सो ले पाए रतन विचारा। अंदर खोले दिव दिष्ट देखे मुक्त भंडारा, अंदर महल अनेक है जियो करे बसेरा। मन चिंदिया पल पाए से फिर हुए ना फेरा, पारखियां वत संभाल ले गुर सोजी होई। नाम पदार्थ मुल सा गुरमुख पावे कोई, बाहर भाले सो क्या लह वत करे अंदर पाई। भरमे भूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई, घर दर छोड़े अपना पर कर झूठा जाई। चोरे वांगू पकड़ी है बिन नावे चोटा खाई, जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई। अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई, आपे दान करे किसे आखी है आपे दे बुझाई। नानक नाम त्याए तू दर सच्चै सोभा पाई, आसा महला तीजा आपे आप पछाणिया साध मीठा पाई। हर रस चाखिया मुक्त पई जिन्ना साचो पाई, हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा। गुरमति सलाही है दिखिया माहे उदासा, रहाओ बिन शब्द आप ना जापई सब अंधी पाई। गुरमति घट चानना नामे अंत सखाई, नामे ही नाम वरत दे नामे वरतारा। अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा, नाम सुनिए नाम मनिए नामे वडियाई। नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई, नामे ही घट चानना नामे सोभा पाई। नामे ही सुख उपजे नामे सरनाई, बिन नावे कोई ना मनिए मनमुख पत गुआई। जमपुर बदे मारी है बिरथा जन्म गुआई, नामे की सब सेवा करे गुरमुख नाम बुझाई। नाम हो ही नाम मनी है नामे वडियाई, जिसनो देवे तिस मिले गुरमती नाम बुझाई। नानक सब

ठीक है बहु विद श्रिष्ट उपाय हुक्मी कार कराईंदा दूजा किस कही है भाई बुझना अबुझना तुद किया ए तेरी सिरकार एक ना बख्शे मेल लह एक दरगाह मार कडे कूड़ियार एक तुर पवित पावन है तुद ना मेलाए गुर सेवा ते सुख उपजे सच्चे शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते नाम हो आप खुआए ना उन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिर है उतवताए नदर करे जिस अपनी तिस नु भावनी लाए सत संतोख एह संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ ना पहुंची है कत कहने अंत ना पाए गुरते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए इहो मन देही सोध तू गुर शब्द वीच।

शब्द रहे आपरपूर रहाउ गुरमुख आप पछाणिया तिन्नी एक मन त्याया सदा रवह फिरे अपना सच्चा नाम सुख पाया ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पओ पाए मोख द्वार शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाई शब्द हमें मारिए सच्चे महल सुख पाए इस जुग में शोभा नाम की।

सच रह सच्चे सच समाहे। बिन शब्द सुनिए ना देखिए जग बोला अन्ना परमाए। बिन नावे दुख पाए सी नाम मिले तिसे रजाए। जिन बाणी स्यों चित लाया से जन निर्मल परवान। नानक नाम तिन्ना कदे ना विसरे से दर सच्चे जान। आसा महला तीजा शब्दों ही भगत जाप दे। जिनकी बाणी सच्ची होए विचों आप गया नाउ मन्या सच मलावा होए। हर हर नाम जन की पत होए सफल तिन्ना का जन्म है। तिन माने सब कोई रहाउ हऊ मैं मेरा जात है। अत क्रोध अभिमान शब्द मरे ता जात जाए। ज्योति ज्योत मिले भगवान पूरा सतगुर भेटिया सफल जन्म हमारा। नाम नवे निध पाया परे अखुट भंडारा। आवह इस राशि के वापारिये जिन्ना नाम प्यारा। गुरमुख होवे सो धन पाए तिन्ना अंतर शब्द विचारा। भगती सार ना जाननी मनमुख अहंकारी तुरों आप खुआयन। जुए बाजी हारी बिन प्यारे भगत ना होवे ना सुख होए शरीर। प्रेम पदार्थ पाईए गुर भगती मन धीर। जिसनु भगत कराए सो करे गुर शब्द विचार। हृदय को नाम वसे हम मैं दुबदा मार। भगतां की जात पात एको नाम।

भगत निराली अल्लाह दी जापै गुर विचार नानक नाम हिरदय वसै पै भगती नाम सवार। आसा मोहल्ला तीजा अनरस मह भुलाया बिन नामै दुख पाई सतगुरु पुरख ना भेट्यो जे सच्ची बूझ बुझाई। ए मन मेरे बावले हर रस चख साध पाई अनरस लागा तू फिरह बिरथा जन्म गवाई। रहाओ इस युग में गुरमुख निर्मली सच नाम रह लिवलाई। बिन कर्मा किश पाइए नाही क्या कर कहया जाई। आप पछाण है शब्द मर है मनहु तज विकार गुर सरनाई भज पए बख्शे बख्शन हार। बिन नामे सुख ना पाईए ना दुख विचों जाई। इहो जग माया मोहे व्यापिया दूजे भरम भुलाई। दुहागनी फिर की सार ना जानही क्या कर करह श्रींगार। पन दिन सदा जलदियां फिरह सेजै रवै ना पतार। सुहागनी महल पाया विचों आप गवाए गुर शब्दी शिंगारियां अपनी सह लिया मलाई। मरना मनहु विसारिया माया मोह गुबार मनमुख मर मर जम है पी मर है जमदर होए खुआर। आप मलायन से मिले गुर शब्द विचार नानक नाम सुमाने मुख उजली तित सच्चै दरबार। आसा महला पंजवा अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पंच मनाए पंच रसाए पंच वसाए पंच गुआए इन बिद नगर बुठा मेरे भाई दुत गया गुर ज्ञान दृढ़ाई। रहाव साच धर्म की कर दीनी वार हरे मुहकम।

सहज सुख के सब हाट, साहा व्यापारी एकै थाट, जे जिया दन को लय ना जगात, सतगुर कर दीनी तुर की छाप, वखर नाम लद खेप चलावो, लै लाहा गुरमुख घर आवो, सतगुर साहु सिख बन जारी, पूंजी नाम लेखा साच संवारे, सो वसै इत कर जिस गुर पूरा सेव, अब चल नगरी नानक देव। असावरी महला पंजवां घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन हर स्यों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत, रहाउ दर्शन की प्यास घणी चितवत अनक प्रकार, करो अनुग्रह पार ब्रह्म हर कृपा धार मरार, मन परदेसी आया मिलियो साध कै संग, जिस वखर कौ चाहता सो पायो नामह रंग, जेते माया रंग रस बिनस जाहि खिन माहि, भगत रते तेरे नाम स्यों सुख पुंचह सब ठाए, सब जग चल तो पेखी है निहचलार को नाम, कर मित्राई साध स्यों निहचल पावह ठाव, मीत साजन सुत।

साथ चरण कमल बोहित पै लग सागर तरयो ते पेत्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यो नेह साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद पावे सो भला तेरे पाणे कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद।

पार ब्रह्म प्रभ सिमरिया प्यारी दर्शन कौ बल जाओ जिस सिमरत दुख बिसर है प्यारी सो क्यों तजना जाय ए तन वेची संत पह प्यारी प्रीतम दे मलाए सुख सिंगार बिख्या के फीके तज छोड़े मेरी माय काम क्रोध लोभ तज गए प्यारी सतगुर चरनी पाई जो जन राते राम स्यो प्यारी अनत ना काहू जाई हर रस जिन्नी चाखिया प्यारी तृप्त रही आगाई अंचल गहया साध का नानक पैसा गिर पार पराई जन्म मरण दुख कटिया प्यारी

सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारी दूजी नाहीं जाई। जो तू कराम है सो करी प्यारे अवर किस करन ना जाई। दिन रैन सब सुहावने प्यारी जित जपिए हर नाम साई कार कमावनी प्यारी तुर मस्तक लेख लखाई। एको आप वर्तदा प्यारी घट घट रहिया समाई। संसार कूप ते उधर लह प्यारे नानक।

सत्य सोए श्रेष्ठ जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिन का लागा आया तिनका सफल भया।

जलिया जमराज के ही रूह आए माया कै संगल बंध लया खखे खुंदकार साहा आलम कर खरीद जिन खर्च दिया बंधन जा कै सब जग बांधिया अवरी का नहीं हुक्म पया गगे गोए गाए जिन छोड़ी गली गोविंद गर्भ पया कड़ भांडे जिन आवी साजी चाड़न वाहे तई किया कगे काल सेवक जे काल है शब्द गुरु कै लाग रह बुरा भला जे सम कर जाने इन वेद साहिब रमत रह चचै चार वेद जिन साजी चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी भोगी पढ़िया पंडित आप थिया सच्चै छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम अपाए फुलाइन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया जज्जै जान मंगत जन जाचै लख चौरासी भीख पविया एको लेवै एको देवै अवर न दूजा मैं सुनिया छज्जै चूर मरहो क्या प्राणी जो किस देना सो दे रहिया दे दे वेखै हुक्म चलाए

सब थाई एक वसिया मन माही तत्तै तंच करहु क्या प्राणी घड़ी के मोहत के उठ चलना जूए जन्म ना हारो अपना भाज पढ़ो तुम हर सरना ठठै ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा से जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया डड्डै डंप करहु क्या प्राणी जो किछ हुआ सो सब चलना तिसै सरी वहो तां सुख पावहु सर्व निरंतर राव रहया तड्डै ताहे उसारे आपे ज्यों तिस पावै तिवें करे कर कर वेखै हुक्म चिल्लाए तिस निस्तारी जां को नदर करी नाणै रवत रहै घट अंतर हर गुण गावै सोई आपे आप मलाए करता पुनरप जन्म ना हुई तत्तै तारू पवजन हुआ ताका अंत ना पाया ना तर ना तुल्हा हम बूडस तार ले तार नराया तत्तै थान थनंतर सोई जाका किया सब हुआ क्या परम क्या माया कही है जो तिस पावे सोई भला दद्दै दोष ना देऊ किसै दोष करमा आपणिया जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजै अवर जना तद्दै धार कला जिन छोड़ी हर चीजी जिन रंग किया तिसदा दिया सबनी लिया करमी करमी हुक्म पया नन्नै नाहा भोग नित भोगै ना दीठा ना सम्मलिया गली हो सुहागण पैणे कंत ना कबहू मैं मिलिया पप्पै पातशाह परमेश्वर वेखण कौ परपंच किया देखै बूझै सब किछ जाणै अंतर बाहर रव रहया फप्पै फाही सब जग फासा जम कै संगल बंद लया गुर प्रसादी से नर उबरे जे हर शरणागत भज पया बब्बै बाजी खेलन लागा चौपड़ कीते चार जुगा जी जंत सब सारी कीते पासा ढालने आप लगा पब्बै पाल है से फल पाव है गुर प्रसादी जिन को पौ पया मनमुख फिर है ना चेत है मूड़े लाख चौरासी फेर पया मम्मै मोह मरण मधुसूदन मरण पया तब चेतव्या काया पीतर अवरो पड़िया मम्मा अखर विसरिया यही जन्म ना होवी कद ही जे कर सच पछाण गुरमुख आखै गुरमुख बूजै गुरमुख एको जाणै रारे राव रहया सब अंतर जेते किए जनता जंत अपाई तंदै सब लाए कर्म हुआ तिन नाम लया लल्लै लाए तंदै जिन छोड़ी मीठा माया मोह किया खाना पीना सम कर सहना पाणे तां कै हुक्म पया ववै वास देओ परमेश्वर वेखण कहो जिन वेस किया वेखै चाखै सब किछ जाणै अंतर बाहर रव रहया राड़ै राड़ करहै क्या प्राणी तिसह त्यावो जे अमर होवा तिसह त्यावो सच समावो ओस विटोह कुर्बान किया हाहै होर न कोई दाता जी उपाई जिन रिजक दिया हर नाम त्यावो हर

आदि पुरुष अपरम्परु तारे नाम अगमय गोचर अपरय पारा पार ब्रह्म परदानो आदि जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुकट क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाने अहनस नाम ते आई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हूं मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आद पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण पर हर करनी सारी दर सच्चे सत्यारु आवन जावन ठाक रहाए गुरमुख तत विचारु साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन पर गासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन राव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मेलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बैरागी चूकै मोह प्यासा नानक हूं मैं मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा महला पहला संत घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू सबनी थाई जितै हो जाई साचा सिरजन हार जियो सबना का दाता कर्म विधाता दुख बसारन हार जियो दुख बसारन हार स्वामी कीता जा का होवै कोट कुटंतर पापा केरे एक घड़ी मह खोवै हंस से हंसा बग से बग्गा घट घट करे विचार जियो तू सबनी ताई जितै हो जाई साचा सिरजन हार जियो जिन एक मन प्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो तिन जम नेड़ ना आवै गुर शब्द कमावै कबहू ना आवै हार जियो ते कबहू ना हार है हर हर गुण सार है तिन जम नेड़ ना आवै जमन मरन तिना का चूका जो हर लागे पावै गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया तिसै विटोह कुर्बान जियो ताकी सेव करी जै लाहा लीजै हर दरगाह पाईऐ मान जियो हर दरगाह मान सोई जन पावै जो नर एक पछाणै ओह नव निध पावै गुरमत हर त्यावै नित हर गुण आख बखाणै अहनस नाम तिसै का लीजै हर उत्तम पुरख प्रधान जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया हों तिसै विटोह कुर्बान जियो नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहि जियो इन फल तोट ना आवै जहां तिस पावै जे जुग केते जाहि जियो जे जुग केते जाहि स्वामी तिन फल टूट ना आवै तिन जरा ना मरना नरक ना परना जो हर नाम त्यावै हर हर करहै से सूकह नाही नानक पीड़ ना खाहे जियो नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवै।

गुर का शब्द संभाले साथ तेरे सो सहु सदा है। एक खिन हर नाम संभाले जन्म जन्म के तेरे पाप कटे अंत परम पद पावे। साचे नाल तेरा गंढ लागे गुरमुख सदा संभाले। यूं कह नानक जह मन तू धामदा तह हर तेरे सदा नाली। सतगुर मिले तावत थमिया निज कर बसिया।

सब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भारती आवे है लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुरे आगे जिस प्राप्त सो पाए रत्ना रत्न पदारथ

लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोल करत ने अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद वरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक

निस्तारी, रामो राम नाम जपया, दुख किल विखनास गवाया राम, गुर परचह त्याया,

सिद्ध कार्य सब सोहाए राम, रोमे रोम रोम रोमे, मैं गुरमुख राम त्याए राम, राम नाम त्याए।

नाम वसै किन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम ते आया राम नाम गुण गाई। दुर्मत कुबुद्ध गई सुध होई राम नाम मन लाई। सफल जन्म शरीर सब होआ जित राम नाम परगासिया। नानक हर पज सदा दिन राती गुरमुख निज घर वासिया। जिन शरदा राम नाम लगी तिन दूजे चेतना लाया राम। जे धरती सब कंचन कर दीजे बिन नाम है अवर ना पाया राम। राम नाम मन पाया परम सुख पाया।

जिन मन तने अर्प चढ़ाया राम, मन तने अर्पया बहुत मन सरदया, गुर सेवक पाए मलाए।

हर गुण गाया, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन परधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग, वडभागी हर रस पाया, से धन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगै पग साधु, मन चूका सोग वजोग जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन परदाना।

पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गाव है परम सुख पाव है, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदार्थ हर हर किरतार्थ, शोभा गुरमुख होई अंतर बाहर हर प्रभे को। दूजा अवर ना कोई, हर हर लिव लाई हर नाम सिखाई, हर दरगाह पावे मान जियो। सत युग सब संतोख सरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। एता युग आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया, मन हृदय क्रोध जलाए दियो। मन हृदय क्रोध महा बिसलोद, निरपता वह लड़ दुख पाया। अंतर ममता रोग लगाना, हों मैं अहंकार वधाया। हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर, देख गुरमत हर नाम लह जाए जियो। एता जोग आया अंतर जोर पाया, जत संयम

है जग पुन आरंभ है। अत किरिया कर्म कमाए दियो, किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टिकै टकाए दियो। महाजुद जोद बहुकीने, विच हों मैं पचै पचाए दियो। दीन दयाल गुर साध मलाया, मिल सत गुर मल लह जाए दियो। जुग द्वापर आया परम परमाया, हर गोपी कान उपाए दियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए दियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर शांत पाए दियो। हर कीरत रोते आई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया। कल युग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। जन नानक गुर पूरा पाया, मन हृदय नाम लखाए जियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए जियो। आसा महला चौथा, हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया। तुर मस्तक भाग प्राण जियो, तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग। हर नामे हर गुण गाया, मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी। हर नामे हर सुहाया, ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया। मिल सतगुर मनुआ मान जियो, हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, तिन हम चरण सरेव हैं खिन खिन पग धोवे हैं। जिन हर मीठ लगान जियो, हर मीठा लाया परम सुख पाया। मुख भागा रती चारी, गुरमत हर गाया हर हार उर पाया। हर नाम कंठ धारी, सब एक दृष्ट समत कर देखै। सब आत्म राम पछाण जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, सत संगत मन पाई हर रसन रसाई। विच संगत हर रस होए जियो, हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया। बीजा अवर ना कोए जियो, अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

संगत मन पाई हर रस नरसाई विच संगत हर रस होए जियो हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो कड ले वो शब्द सुपाए जियो मोह चीकड़ पाथे निगरत हम जाते।

मुख मस्तक पाग सुभागा, जन नानक हर कृपा तहारी, मन हर हर मीठा लाए जियो, हर दया प्रभ तारहु, पाखण हम तारहु, कड लेव हो शब्द सुपाए जियो, आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ, गुर करे पसाओ, जीवन मुकत सुख होई, जीवन मरन हर नाम सुहेले, मन हर हर हृदय सोई, मन हर हर वसिया, गुरमत हर रसिया, हर हर रस गटाक पियाओ जियो, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जग मरन ना पाया, नित आप लुकाया, मत जम पकरे ले जाए जियो, हर अंतर बाहर हर प्रभ एको, एहो जी अड़ा रखिया ना जाए जियो, क्यों जियो रखी जै, हर वस्त लड़ी जै, जिसकी वसत सो ले जाए जियो, मन मुख करन पलाव कर परमे, सब औखद दारू लाए जियो, जिसकी वसत प्रभ लए स्वामी, जन उभरे शब्द कमाए जियो, जग मरन ना पाया नित आप लकाया, मत जम पकरे ले जाए जियो, तुर मरन लखाया गुरमुख सोहाया, जन उभरे हर हर ध्यान जियो, हर सोभा पाई हर नाम वडियाई, हर दरगाह पैंदे जान जियो, हर दरगाह पैंदे

एको होए, हर जन प्रभ एक समान जियो, तुर मरन लखाया गुरमुख सोहाया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो, जग उपजै बिनसै बिनस बनासै, लग गुरमुख अस थिर होए जियो, गुरमंत्र दृढ़ाए हर रसक रसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो, हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया, फिर बहुड़ मरना होई, हर हर नाम अमर पद पाया, हर नाम समावै सोई, जन नानक नाम आधार टेक है, बिन नाम अवर ना कोए जियो, जग उपजै बिन सै बिन सबनासै, लग गुरमुख अस थिर होए जियो, आसा महला चौथा संत, वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर, आदि निरंजन निरंकार जियो, तां की गत कही ना जाई, अमित वडियाई, मेरा गोविंद अलख अपार जियो, गोविंद अलख अपार।

अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो, तू आद पुरख अपरंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर, सब में रहया समाए जियो, काटे अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर, ताका अंत ना पाया, इस रूप नरेख अदिष्ट अगोचर, गुरमुख अलख लखाया, सदा आनंद रहै दिन राती, सहजे नाम समाए जियो, तू आद पुरख अपरंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो, तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी, हर हर गुणी निदान जियो, हर हर प्रभ एको अवर ना कोई, तू आपे पुरख सुजान जियो, पुरख सुजान तू प्रधान, तुद जेवड़े अवर ना कोई, तेरा शब्द सब तू है वरत है, तू आपे करह सो होई, हर सब मह रव्या एको सोई, गुरमुख लखिया हर नाम जियो, तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी, हर हर गुणी निदान जियो।

सब तेरे शब्द समाए दियो, सब शब्द समावे जां तुद पावे, तेरे शब्द वड्याई गुरमुख बुद्ध पाईए आप गवाईए, शब्दे रहया समाई तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाईए।

तेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पेरा मुकी सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है।

हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजी हों मांगू सरन हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वच्छल हर बिरद है।

रास पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मेल हर मन मने हम मूर्ख कार लाइया नानक हर कमे गुर अमृत पिनी दे होरी अमृत बुर के राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक शके गुर तुठ हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इक्के आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजी गुर सतगुर सच्चा साहू है सिख दे हर रासी तन तन बन जारा बणज है गुर साहू सबासी जन नानक गुर तिन्नी पाया जिन तुर लिखत ललाट लखासी सच साहू हमारा तू धनी सब जगत बन जारा राम राजी सब पांडे तुदै साजिया विच वसत हर थारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा।

नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है, हर भगत हर लीजै। आसा महला चौथा, जिने अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सुगड़ सियाने राम राजी, जे बाहर हो।

मेरा सतगुरु सोथान सुहावा राम राजे गुर सिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुरसिखा की काल पाए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन

गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछै होर खाए कनेरी। जन नानक हर कुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर कुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी। कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगै गुर सिखा मन मिठा। हर दरगाह गुर सिख पैलाई है, जिन्ना मेरा सतगुर तुठा। जन नानक हर हर होया, हर हर मन उठा। आसा महला चौथा, जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु।

हरे मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे नित आस करे नित जोवन जावे मेरे प्यारे जम सास हिरे भाग मणि सुहागण मेरे प्यारे नानक हर पुर धारे फिर रत्याड़े मैंडे लोइन मेरे प्यारे चातरक बूंद जिवें मन सी

सब किस मैं सब किस पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अच्छा।

हर रंग माणी हर संता हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाते दूक संतापै गुर चरणी लागे प्रम पौ भागे आप

हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम, वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम, सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रभ जाता, घट घट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता, गुरपुरा पाया नाम ते आया जूए जन्म न हारे, बिनवंत नानक शरण तेरी राख कृपा धारे, बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम, तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम, हर धूड़ी नाइय मैल गवाइय जन्म मरण दुख लाथे, अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे, मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा, बिनवंत नानक गुर सरण तरिय अपने प्रभ पावा, आसा संत महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर चरण कमल मन बेदया किशियान न मीठा राम राजे, मिल संत संगत आराध्या हर घट कटे दीठा राम राजे, हर घट कटे दीठा अमृतो बूठा जन्म मरण दुख नाठे, गुण निद गाया सब दुख मटाया हूं मैं बिनसी गांठे, प्रियो सहज सुपाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा, हर नानक बेदे चरण कमल किश आन ना मीठा, ज्यों राती जल माछुली त्यों राम रस माते राम राजे, गुरपुरे अपदेसिया जीवन गत पाते राम राजे, जीवन गत स्वामी अंतर जामी

जल संगराती माछली नानक हर माते चातरक जाचै बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे मालक जीना।

हर सास ग्रासमा बिसरै कबहू गुर शब्दी रंग मानिए प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख डारा चातरक जाचे बूंद जियो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मानोरथ पूरा राम राजे ताठी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे पूर्ण गुर पाए पुरब लखाए सब निद दीन दयाला आद माद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला सुख सहज आनंद कनेरे

पंथ भणी तह साध संग ना डरपी कर कीरत गोविंद गुणी सगल परास्त दुख हरे कहो नानक संत गोविंद हर के मन हर स्यो नेहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे जैसी मछली नीर टिक खिन पी ना तीरे मन ऐसा नेहो करे हो जैसी चात्रक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे मेह हर प्रीत करी जय इहो मन दीजै हथ लाइय चित।

ए साध जब हर पाया मन माही संत जाको खोजह असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट अराध ज्ञानी जाप जपे जप ताप संयम क्रिया पूजा अनक सोधन बंदना कर गवन बसदा तीर्थ है मज्जन मिलन को निरंजना मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझ अराधते दयाल लाल गोबिंद नानक मिल साध संगत होए गते कोट बिसन अवतार संकर जटा तार चाह है तुझ दयार मन तन रुच अपार अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रभ धनी सुर सिद्ध गण गंधर्व त्याव है जख किनर गुण भनी कोट इंदर अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार कोट देवी जाको सेव है लक्ष्मी अनक पांत गुप्त प्रगट जाको राध है पौन पानी दिन सरात नखियतर ससियर सूर त्याव है वसुद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत प्राण चतर बेद खट शास्त्र जा को जपात पतत पावन भगत वचल नानक मिली है संग सात जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी अवगत अगंत अथाह ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्ब जाचक एक दाता नह दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी एहो दान मान नानक पाए सीस साधा धर चरनी आसा महला पंजवा सलोक उदम करहो वडभागी हो सिमरो हर हर राय नानक जिस सिमरत सब सुख होवे है दुख दर्द भ्रम जाए संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है भेटत साधु संग जमपुर नह जाई है दुख दर्द ना पौ ब्यापे नाम सिमरत सद सुखी सास सास अराध हर हर त्याए सो प्रभ मन मुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाई है नानक पयंपै चरण जंपै नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है पावन पतत पनीत नाम निरंजना परम अधेर बनास ज्ञान गुर अंजना गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल पल मही अल पूरिया एक निमख जा कैर दै वसिया मिटे तिसै वसूरिया अगाध बोध समरथ स्वामी सर्ब का पौ भंजना नानक पयंपै चरण जंपै पावन पतत पुनीत नाम निरंजना ऊट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतत उधरन हर हरे सागर संसार पाव उतार नाम सिमरत बहुतरी आद अंत बेअंत खोजह सुनी उधरन संत संग बिदे नानक पयंपै चरण जंपै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे भगत वचल हर

आई सहज सुभाई भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख वसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जम पै भगत।

पास सेवा लागी है। जाके मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया। साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया।

कर जोड़। हर हर नाम देहो, हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया, कतहु ना तामो शरण पावो, करना मैं प्रभ कर मया, समर्थ अगत अपार निर्मल।

कीच सठ कठोर को लहीन व्यापत मोह कीच मल भरम कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता बनोद आनंद माया अज्ञान ताल पटावे खिसै जोबन बदै जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक।

संग मीठे भोग सोहन भ्रमत भार अगंत आयु बहु परदेसह धायु अब ओट धारी प्रभ मरारी सर्व सुख हर नायु राखन हारे प्रभ प्यारे मुझते कछु ना हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारीख उधारे भगत है संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवन सुन श्रवन बानी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ बधाते राम के गुण गावे बसद कागद बनराज कलमा।

सरन आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान ता की सरन गही निरपव भये प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंध पजानिया गह कंठ लाया गुरमलाया जस बिमल संत बखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप पये राम नाम उरहार बिख के दिवस गए गत परम मोहो बेकार बिनसे जोन आवन सब रही अगन सागर पये सीतल साधे अंचल गह रही गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याए पूरन साध संग पाई परम गति जह देखो तह संग एको रव रहया घट घट वासी आप विरलै कि

लहया जल थल महियल पूर पूरन कीट हस्त सुमानिया आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निद जन कहया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कल मल पाप तरे दुख भूख दरिद्र नाठे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैन आनंद अन दिन सिमरंत नानक हर हरे।

गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत संत। इन्नी रहनड़ी है चाम कन तारी, जाग है संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जाग है, नाम सिमर है अन दिनो, चरण कमल ध्यान हिरदय, प्रभ बिसर नाही एक खिनो। ताज मान मोह बिकार मन का, कलमला दुख जारी, बिनवंत नानक सदा जाग है, हर दास संत प्यारी। मेरी सेजड़ी है आडंबर बनिया, मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया, प्रभ मिले स्वामी सुखगामी, चाव मंगल रस परे, अंग संग लागे दुख भागे, प्राण मन तन सब हरे। मन इच पाई प्रभ त्याई, संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री तार, सगल आनंद रस बनिया। मिल सखियां कुछ है कहो कंत नी छाणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी, गुण गूढ़ गुप्त अपार करते, निगम अंत ना पावहे, भगत पाए त्याए स्वामी, सदा हर गुण गावहे। सगल गुण सुगयान पूरन, अपने प्रभ पाणी, बिनवंत नानक रंग राती, प्रेम सहज समाणी। सुख सोहिलड़े हर गावन लागे, साजन सरसियड़े दुख दुश्मन भागे, सुख सहज सरसे हर नाम रहस्ते, प्रभ आप कृपा धारिया, हर चरण लागे सदा जागे, मिले प्रभ बनवारिया। शुभ दिवस आए सहज पाए, सगल निद प्रभ पागे, बिनवंत नानक सरण स्वामी, सदा हर जन तागे। हासा महला पंजवा, उठ मंज बटाउड़िया, तैं क्या चिर लाया मुहलत पुन्नड़िया, कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया, तो माया करहें पाप अमित्या, तन पसम टेरी जमै हेरी, काल बपड़ै जितया, माल जोबन छोड़ वैसी, रहे ओ पैनन खाया, नानक कमाणा संग जुलिया, नह जाए किरत कमाया। हाथ हो मिर्ग जिवै पेख रहन चंद्रायन, सुख हो दुख भये नित पाप कमायन, पापा कमाणे छड्डह नाही, लै चले कत गलावया, हर चंदौरी देख मूठा, कूड़ सेजा रावया, लब लोभ अहंकार माता, गर्भ भया समायन। नानक मृग अज्ञान बिनसे, नह मिटै आवन जायन, मिठै मख मुआ क्यों लए उडारी, हस्ती गर्त पया क्यों तरियै तारी, तरण देहला पया खिन मह, खसम चित ना आयु, दुखा सजाई गणत नाही, किया अपना पायु, गुजा कमाणा प्रगट होवा, ईत उतह खुआरी, नानक सतगुर बाज मूठा, मन मुखो अहंकारी। हर के दास जीवे लग प्रभ की चरनी, कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर सरनी, बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना, आप नाम जपाया, साध संगत आप हुआ, आप जगत तराया।

धीरज सहज सुखिए साध संगत हर भजे कर अनग्रहो राख लीने मोह ममता सब तजे गह कंठ लाए गुरमलाए गोविंद जपत अगायण विनवंत नानक सिमर स्वामी सगले आस पुजायण निध सिद चरण गहे ता केहा काड़ा सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा गह पुजा लीने नाम दीने करतार मस्तक राखिया संसार सागर नह व्यापै हमें हर रस चाखिया साज संगे नाम रंगे

माथे जिस पास लुकाए दड़ो सो वेखी साथे संग देखे करनहारा काए पाप कमाइए सो कृत की जय नाम लीजे नरक मूल ना जाइए आठ पहर हर नाम सिमरहो चले तेरे साथी भज साध संगत सदा नानक मिट हैं दुख कमाते वलवंच कर उदर पर हैं मूर्ख गावारा सब किश दे रहया हर देवन हारा दातार सदा दयाल स्वामी काए मनु विसारी है मिल साध संगे भजन संगे कुल समूहा तारी है सिद्ध साधक देव मुन जन भगत नाम आधारा बिनवंत नानक सदा भजिए प्रभ एक करने हारा खोट ना की चई प्रभ परखण हारा।

ताज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरण आई आया। जल थल महियल रविया स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा। एक हर चंदौरड़ी अस्थर किश नाही माया रंग जेते से संग ना जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन सरहण संभाली है हर एक बिन काशे अवर नाही। पाओ दुतिया जाली है मीत जोबन माल सर्बस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक।

कमला भ्रम पीत कमला भ्रम पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवध अकारथ जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञान हीनी तुझ बिना मोहे कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रिय नाथ नरहर करो गा।

मिल बैरागी, खिन रहन प्रिग तन तिस बिना, पलका न लागे प्रिय प्रेम पागे, चितवंत अन दिन प्रभ मन।

नानक मगन होत अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास हे घन बूंद विचित्र मन आस हे अल पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजा ले वो नाम देव हो दृष्ट धारत मिटत पाप नानक जम पै पतत पावन हर दर्श पे

करत न लागी वार। महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़ है हजार। एते चानन होंदियां गुरबेन कोर अंधार। महला पहला नानक गुरु ना चेतनी माने

रते से जन गए हार गए से ठगण वालिया लिख नावे धर्म बहालिया। श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग।

बहुते जन्म परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो हूं लोक सबाया। सतगुर मिलया सच पाया जिनी विचो आप गवाया। जिन सचो सच बुझाया सलोक महला पहला। कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल। गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार। सगली धरती माल धन वर्तन सर्ब जंजाल। नानक मुस्तै ज्ञान विहूनी खाए गया जमकाल। महला पहला वायन केले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर। उड़ उड़ रावा झाट पाए।

कोलू चरखा चक्की चक, थल वारो ले बहुत अनंत, लाटू मादानिया अनगाह, पंखी पौंदिया लैन ना साह, सूए चाड़ पवाई है जंत, नानक पौंदिया गणत ना अंत, बंधन बंद पवाए सोए, पै किरत नचै सब कोए, नच नच हसह चलह से रोए, उड ना जाही सिद्ध ना होहे।

ਆਈਐ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰਈਅਤ।

तीर्थ नावह अर्चा पूजा अगर वास बहकार। जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार। सूखम मूर्त नाम निरंजन।

तह उपजे कित संजम एह जाय हम एहो हुक्म है पय किरत फराहे हम दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए नानक कह सुनो जनहो इत संयम दुख जाहे पौड़ी सेव कीती संतोखे जिनी सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला

किया चिंता पे करनीताह सो करता चिंता करे जिन यो पाया जग तिस जो हारी स्वास्थ तिस दे बाण अपहग।

जिन सचो सच वरताया, जिस तू देहे तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिलिया सच पाया, जिन कै हिरदै सच वसाया,

कूड़ कप्पड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खाप होए खार कूड़ कूड़ ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माथियों

मल उतर तन करे हच्छा तोय सच ता पर जानिए जा सच धरे प्यार नाउ सुन मन रहसिए ता पाए मोख द्वार।

सतगुरु नो पुछ कै बह रह करे निवास, सच सबना होए दारू पाप कड्डे तोए, नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी, दान महिंदा तली खाट जे मिले ता मस्तक लाइए, कूड़ा लालच छड्डीए होए इक मन अलख ते आईए,

पाई है, मत थोड़ी सेव गवाई है। सलोक महला पहला, सच काल कूड़ वरत्या, कल काल खबेताल। बियो बीज पत लै गए, अब क्यों उगवै दाल। जे एक होए ता उगवै, रुती हूं रुत होए। नानक पाहे बाहरा, होरे रंग ना सोए। भै विच खुंभ चढ़ाई है, शर्म पाह तन होए। नानक भग

पाहे परे मरदार। ज्ञानी नचह वाजे वावह रूप करह सिंगार। ऊचे कूकह वादा गावह जोदा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत

की लेख पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जिन्ना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया।

न होई। बलिहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत न जाई लखिया रहाऊ। जात मह जोत, जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो, जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता, जो किछ करना सो कर रहया। महला दूजा, जोग शब्दं ज्ञान शब्दं, वेद शब्दं ब्राह्मण है। खत्री शब्दं सूर शब्दं, सूदर शब्दं प्राकृत है। सर्व शब्दं एक शब्दं, जे को जाने पे ओ, नानकता का दास है। सोई निरंजन देव। महला दूजा, एक

गुनाहगार ता उमी साधना मारी है जेहा खाले कालना तेवे हो ना उपचारी है ऐसी कला ना खेडी है जित दरगाह गया हारी है पढ़िया अते उमिया विचार अगे विचारी है मुहे चले सो अगे मारी है। सलोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाओ जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझ ताए सत जुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवाहु त्रेत रथ जतै का जोर अगे रथवाह द्वापर रथ तपै का सत अगे रथवाह कल युग।

खंतर पाहे, जुज मह जोर छली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम भया, पार जात गोपी लै आया, बिंद्रा बन मह रंग किया, कल मह वेद अथर बन हुआ, नाव खदाई अल्लुह भया।

वारिया, जित मिलिया खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया ने।

ही सुनवाया क्या किए जारिदक सुधे जाहे महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादम सिल पूजस बगल समाधम मुख झूठ बेपूखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गलमाला तिलक लिलाटं द्वे तूती बस्तर कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चौ कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुरु।

मुख सूत जत गंडी सत वट एहो जने जी का है ता पांडे कत ना एहो तुटे ना मल लगे ना एहो जले ना जाए धन सो मान स्नान का जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया ओह मोवा ओह झड़ पया वे तगा गया महला पहला लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिन सजी नाल तग कपाहो कतिया बामन वटे आए ओहे बकरा रिन खाया सबको आख पाए होए पुराना सुटिया पी फिर पाइए होर नानक तग ना तुटई जे तग होए जोर महला पहला नाए मन्ने पति उपजे साला ही सच सूत दरगाह अंदर पाइए तग ना तूट सपूत महला पहला तग ना इंदरी तग ना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी वे तगा आपे बत्त वट तागे अवरा कत्त लै पहाड़ करे वे आहो

आई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने हुए प्रवान ता खसमै का महल पाए सी खसमै भावे सो करे मनहु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगाह पैंदा जाए सी। श्लोक महला पहला। गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरण ना जाई धोती टिक्का तै जप माली धान मलेच्छा खाई अंतर पूजा पढ़ै कतेबा संजम तुरका भाई।

काग तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद उना ते आवह ओई साद कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ धोती खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवह परवान मलेश तान ले पूजह पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे न जाना देके चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़ियार मत पिट वे मत पिट एह अन्न असाडा फिट तन फिट फेर करेन मन जूठ चुली परेन कहो नानक सच त्याई है सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी।

वडोहो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर तंदे लाएंदा नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहू कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोहे कर मोहे पितरी दे अग्गै वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुस्फी एहे करे नानक अग्गै सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।

नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पा सारिया चीज करन मन भाव दे हर बुझन नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरन वसारिया।

आज ना कोई पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवैर सोई नानक सूतक एव ना उतर है ज्ञान उतारे तोय महला पहला मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना पर त्रिय पर धन रूप कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे महला पहला सभो सूतक भरम है।

नानक आशिक कांडिये सद ही रह समाय, चंगा चंगा कर मन्ने मंदे मंदा होए, आशिक इहो ना आखिए जे लेखे वरतै सोए। महला दूजा, सलाम जवाब दोए।

नाल आने दूसती कदे न आवै रास जिहा जाने ते हो वरतै वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्त समावै दूजी होवै पास साहिब सेती हुक्म ना चलै कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ो होवै नानक सिफत विगास महला दूजा नाल आने दोस्ती।

जियो गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लाभ हो।

माया पास बंद नहीं पारे, अर मन सुन ना लूके, आपा पद निर्वाण ना चीनिया, इन बिद अपियो ना चूके, कही ना उपजै उपजी जाने, भाव अभाव बिहूणा, उदय अस्त की मन बुद्ध नासी, तौ सदा सहज लिव लीना, ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है, उदक कुंभ बिगराना, कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा, तौ मन सुन समाना, आसा गज साडे तै तै धूतियां, तेरे पाइन तग गली जिन्ना जप मालिया, लोटे हाथ निबग वे हर के संतना आखी है, बानारस के ठग ऐसे संतना मोह को भाव है, डाला स्यो पेडा गटकाव है रहाव, बासन मांज चिराव है ऊपर, काठी धोए तो जलाव है, बसदा खोद करह दोए चूले, सारे मान सखाव है, वे पापी सदा फिर है अपराधी, मुखों अपरस कहाव है, सदा सदा फिर है अभमानी, सगल कुटंब डुबाव है, जित को लाया तित ही लागा, तैसे कर्म कमावे, कहो कबीर जिस सतगुर भेटै, पुनरप जन्म न आवे, आसा

गया ना बाजी हारी मुई मेरी माई हों खरा सुखाला पहरों नहीं दगली लगे ना पाला रहाऊ बाल किस बापै जिन्हों जाया।

आव आगम निर्गम जो तिक जान है बहु बहु व्याकरण तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तहु मरना राज भोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तहु मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहू ना उबरना कहो कबीर इो राम जंपो मेट जन्म मरना आसा फीलर बाबी बल्द पखावज कौआ ताल बजावे

रहाव, बैठ सिंह घर पान लगावे, कीस गलौरे लियावे, घर घर मुसरी मंगल गावे, कछुआ शंख बजावे, वंश को पूत ब्याहन चलिया, सोइने मंडप छाए, रूप कन्या सुंदर बेदी, ससै सिंह गुण गाए।

आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिध पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाऊ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पंच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया पहरी काया कर तुई दृष्टि।

पड़त गुनत ऐसे सब मारे, किन्हूं खबर ना जानी रहाओ। सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदौगा पाई। जौरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। हरद शरीर ही नार ना छोड़े, तां ते हिंदू ही रही है। शाद कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है पारी। कबीर पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी। आसा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तोहे करी ना राखे कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। कां की मात पिता कहो कां को, कमन पुरख की जोई। ठट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहरी बैठी माता रोए, खटिया ले गए पाई। लट छिटकाए तिरिया रोए, हंस के ला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, तै सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई। दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके। सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। हर का बलोव ना बलोव हो मेरे भाई, सहज बलोव हो जैसे तत ना जाई रहाओ। तन कर मटकी मन माहे बलोई, इस मटकी मह शब्द संजोई।

कैन कहावन समझ परी तो बिसरे ओ गावन कहत कबीर पंच जो चूरे तिन ते नाहे परम पद दूरे आसा सोते अपर

खंडस अवगन मेरा रहाउ। जे अत क्रोप करे कर ताया, तां पी चीत ना राखस माया। चिंत पवन मन

समझावूं आसा श्री कबीर जीओ के पंच पदे नौ दो तुके पंज एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाती तोरे मालनी पाती पाती जीओ जिस पाहन को पा

सुनडारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाव जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालिन भूली जग पुलाना हम

पन बीते 20 वर्ष कश तप ना कियो, 30 वर्ष कश देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख भुजंग बलियो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत तह ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिवलावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संत हो, अन तन कछुए लै ना गयो, आई तलब गोपाल।

फीके आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त सरीके माटी एक पेख तर नाना ता मैं ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक स्यों मन माना आसा गगन नगर एक

चरण रहे कर कर परे हैं, मुखो नानक सह बाता थाके पंच दूत सब तस्कर, आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर उर थाका, तेज सूत धर रमते मृतक भय दसै बंद छूटे, मित्र भाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावै, जीवत बंधन तोरे आसा इक तुके चार, सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा बिशन महादेव छलिया, मार मार सर्पनी निर्मल जल पैठी, जिन त्रे भवन दसियले गुर प्रसाद दीठी, रहाओ सर्पनी सर्पनी क्या कहो भाई, जिन साच पछाने

चराए, कहें बिसियर को दूध पियाए। सात संगत मिल बबेक बुद्ध हुई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत सुवान सब करे कराया, जो तुरली

समुंद सिखाई तेह रावण कर खबर ना पाई क्या मांगू किस थिर ना रहाई देखत नैन चल्यो जग जाई रहाउ एक लख पूत सवा लख नाती तेह रावण कर दिया ना बाती चंद सूरज जाके तपत रसोई बैसंतर जाके कपड़े धोई गुरम

पहला पूत पशहरी माई गुरला गो चेले की पाई एक अचंभो सुनो तुम पाई देखत सिंह चरावत गाई रहाओ जल की मछली तरवर ब्याई देखत कुतरा ले गई बलाई तले रे बैसा ऊपर सूला तिसके पेड़ लगे फल फूला कोरे चार पैस चरावन जाई बाहर बैल गोन कर आई कहत कबीर जो इस पद बूझे राम रमत तिस सब किश सूझे बाईस चौपदे तथा पंच पदे आसा श्री कबीर जीओ के तिप दे अठ दो तुके सत एक तुका एक एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद बिंद तेजन पिंड किया अगन कुंड रहाया दस मास माता उदर राखिया बहुर लागी माया प्राणी काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया पूरब जन्म कर्म भूम बीज नाही बोया रहाओ बारक ते बिरद भया होना सो होया जां जम आए चोट पकरे तब है काहे रोया जीम न की आस करह जम ने

आओ नाब कमल मह बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो आसवड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरों रे सखी सहेली।

राई माया सद मतवारी बड़े भाई कह जब संग होती तब हो नाह प्यारी कहत कबीर पंच को झगरा झगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जग बांदिया मैं राम रमत सुख पाया।

गायत्री गोविंद हृदय हमारे मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण हृदय बस है गोविंदा जम द्वार जब पूछस बबरे तब

अवतार चिरायु हो, कैसे खसम हमारे, तू बामन मैं कांसिक जुलहा, बुझो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे भूपत राजे, हर सौ मोहर त्याना, आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन सुमानं, साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निदानं, बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाओ, नैन देख पतंग उर्जे, पासना देख आग, काल पासना मुग्ध चेतै, कनक कामन लाग, कर विचार विकार परहर, तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा, दुतिया नाही कोय, आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे, अब खुन रूप न होई, तागा तंत साज सब थाका, राम नाम बस होई, अब मोहे नाचनो ना आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाओ, काम क्रोध माया ले जारी, तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना भया है पुराना, गया परम सब छूटी।

मह तेरा सोच विचार ना देखै खबर ना करै दीन के बौरे ता ते जन्म अलेखै रहाउ साचक ते बखानै अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे जो दिल में

जीव के दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद हीरे हीरा वेद पवन मन सहजे रहे आसमाई सगल जोत इन हीरे बेदी सतगुर बचनी मैं पाई हर की कथा अनाहद बानी हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ कह कबीर हीरा अस देखियो जग मह रहा समाई गुप्त हीरा प्रगट भयो जब गुर गम दिया दिखाई हासा पहली क्रूप कुजात कुलखनी सोहरे पेये बुरी अब की स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी भली सरी मुई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग टरियो लोहरी संग पई अब मेरे जेठी और तरियो आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले राख्यो राम जनिया नाओ इन मुंडियन मेरा घर तुंदरावा बिटवह राम रमऊआला।

रहु रहुरी बहुरिया घूंघट जिन काढे अंत की बार लहगी ना आढ़ रहाउ घूंघट काट गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे घूंघट काढे की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई घूंघट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए।

जाना सब जग अनत नायो ताना रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना तरन आकाश की कर गह बनाई चंद सूरज दोए साथ चलाई पाई जोर बात एक कीनी तह तांती मन माना जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम।

जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछु ना होवे, ना ही राम अयाना, पूजो राम।

ऐसे ओए नर फिर जोनी आवह मनु कठोर मरे बनारस नरक ना बांचिया जाई हर का संत मरे हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई दिन सना रैन वेद नहीं सास।

मन सत सहंस जैसी ऊत पूत प्रभ सोई रहाउ। जल तरंग हर फेन बुध बदा जल ते भिन्न न होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई। मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देओ हर की रचना।

कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं। 42 लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं। जतर जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ। आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं। पहले बास लई है पवर है बीठल पहला काय करूं। आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं। पहले दूध बटारे ओ बछरे बीठल पहला काय करूं।

महिमा प्रणव पूर रहे हो तुम सर्व मही आसा मन मेरो गाज जिहबा मेरी काती माप माप काटो जम की फासी कहां करूं जाती कहां करूं पाती।

अपना खसम त्यावो सोइने की सुई रुपे का तागा नामे का चित हर स्यों लागा आसा साप कुंच छोड़े भिख नहीं छाड़े उदक माहे जैसे बाग ध्यान मांडे काहे को कीजे ध्यान जपन्ना जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ सिंगच भोजन जो नर जा।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर, एक दुख बनास पंच दुख असाध जाम है, ताकी केतक आस माधो अविद्या हित कीन, दुबेक दीप मलीन रहाओ, त्रिगद जोन अचेत संभव, पुन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ, तिही संगत पोच जी जंत जहां जहां लग, कर्म के बस जाए काल पास अबद लागे, कशना चले उपाय रविदास दास उदास तज ब्रह्म, तपन तप गुर ज्ञान भगत जन पै हरन, परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव, संत की संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ, संत आचरण संत चो मार्ग, संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंतावन, जनी लखाव हो संत पापी सन, रविदास भणै।

अंध सुगंध निवासा माधो सतसंगत शरण तुम्हारी, हम योगन तुम उपकारी रहाओ, तुम मखतूल सुपेद सुपियल, हम बपरे जस कीरा, सतसंगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रा मैया तन रहाओ संपत बिपत पटल माया तन ता मह मगन होत ना तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधे ओ तेरो जन कह रविदास छूटे बो कवन गुन आसा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम देव दूध पे आया तौ जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता माटी को पुत्रा कैसे नचत है देखे देखे सुने बोले दौर्यो फिरत है रहाओ जब कछ पावे तब गर्भ करत है माया गई तब रोवन लगत है मन बच क्रम रास कसै लुभाना बिन

गुरु प्रसाद भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलानी तन मन धन नहीं धीरे लालच बिख काम लुभद राता मन बिसरे प्रभ हीरे रहाउ बिख फल मीठ लगे मन बौरे चार विचार ना जानिया गुण ते प्रीत बड़ी अनपांति जन्म मरण फिर तानिया जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे बिख फल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुरह धन दिया ध्यान मान मन एक मय प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त अगाने मुक्त भये जोत समाए समानी जाकै अशली प्रभ पहचानिया धन धन पाया धरनी तर मिल जन संत समानिया महला पंजवां गोविंद गोविंद।

हीरा रवदास टवंता टोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई बुत कारिया ओह कर कर सुनिया हिरदै वसिया पार ब्रह्म भगतां मह गणिया एह बिद सुन कै जट रो उठ भगती लागा मिले परतख गुसाइया तन्ना वड भागा रे चेत चेतस की ना दयाल दमोदर बिबह ना जानस कोई जे तावह ब्रह्मांड खंड को करता करै सो होई रहाउ जननी केरे उदर उदक मह पिंड किया दस द्वारा दे आहार अगन मह राखै ऐसा खसम हमारा।

खुदाई तू बख्शंदगी सेख फरी द खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गोर करे आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़िया मनहुम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाइए घुम ना आइए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए

पीरिया, कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया, सेख हयाती जागना कोई थिर रहया, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया, कत्तक कूंजा चेत डौ सावन बिजुलिया, से आले सोहंदिया फिर गल बाहड़िया, चले चलन हार बचारा ले मनो, गा देंदिया शे माह तुड़ंदिया हिक खिनो, जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए, जालन गोरा नाल उलामे जी सहे।

प्राण आधार जा की भगत करह जन पूरे मुन जन सेवह गुर विचार रहाव राव सस दीपक जा के त्रे भवन एका जोत मरार गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मनमुख रहन अंधार सिद्ध समाध करह नित झगड़ा दोह लोचन क्या हेर अंतर ज्योत शब्द धुन जागै।

आओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा भाई, हर की मैं भूख लागै, हर नाम मेरा मन तृप्त है।

आए जिस नर की दुबदा ना जाए धर्म राए तिस देश जाए कर्म होवे सोई जन पाए गुरमुख बूझे कोई नानक विचो हउमै मारे ता हर भेटै सोई गुजरी महला तीजा तिस जन शांत सदा मत निश्चल जिसका अभमान गवाए सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझै हर चरणी चित लाए हर चेत अचेत मना जो इच्छा है सो फल होई गुर प्रसादी हर रस पाव है पीवत रह सदा सुख होई रहाओ सतगुर भेटे ता पार सो होवै।

जो आप ना पछाने सच ना धरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु ना जाए नानक जो तिस पावे सो करे ज्यों तिस की रजाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे घर पहला हर के जन सतगुर सतपुरख।

एव मोकौ राम नाम परजास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाऊ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्तासह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आई त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम परगास गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह है जप गोविंद गोविंद त्याई है सब को दान दे प्रभ को है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाऊ सुख सागर।

भाग को अमृत रस पाइए, तृप्त विष्टा खाए मुख गो है। अमृत सर सतगुर सतवादी, जितना तै कौआ हंस हो है। नानक धन तन वड्डे वड भागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तू है। गुजरी महला चौथा, हर जानी उत्तम उत्तम बाणी। मुख बोलह पारे उपकारी, जो जन सुने सरदा भगत सेती।

हर सेती प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाई मानस जन्म पुन कर पाया बिन नावे त्रिग त्रिग बिरथा जाई नाम बिना रस कस दुख खावे मुख फीका थुक थूक मुख पाई जो जन हर प्रभ हर हर सरना तिन दरगाह हर

ता गुरमुख सखी सहेली मेरी मोको देवो दान हर प्राण जिवाया हम हो वह लाले गोले गुरसिखा के जिन्ना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया मेरा मन तन बिरहो गुरसिख पग लाया मेरे प्राण सखा गुर के सिख भाई मोको करहो उपदेश हर मिले मिलाया रहाओ जा हर प्रभ भावै ता गुरमुख मेले जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया वड भागी गुर के सिख प्यारी हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया सत संगत गुर की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुर संगत संग ना पाया से भागहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रभ धारी हरे आपे गुरमुख मिले मलाया।

उठा जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभु पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया हुआ वड भागी हर नाम।

मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाव। तीर्ज धर्म गुरमत हर पाया, नित हर नामे हर सिउ चित लावे। अमृत बचन सतगुर की बाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। निर्मल नाम जित मैल न लागे, गुरमत नाम जपै लिव लावे। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, से भागहीन मोहे मर जावे। आनंद मूल जग जीवन दाता, सब जन को आनंद करहो हर ध्यावे। तू दाता जी सब तेरे, जन नानक गुरमुख बख्श मलावे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुजरी महला चौथा घर तीजा। माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना कहो संबंध हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस है। शरीर रहाओ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई, विचे ग्रिस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बने आई, तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई। जित कारे कम हम हर लाई, सो हम करहे जो आप कराई। जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई, ते जन नानक राम नाम लिव लाई। गुजरी महला पंजवां चौपदे घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवह उदम, जा आहार हर जियो परया। सैल पत्थर मह जनते उपाय, ता कारजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई ना किसकी तरिया। सिर सिर

शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया गुजरी महला पंजवा चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरिया चार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल न उतरे हुमे बिन गुरबाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा तारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोदे

जाति काम क्रोध माया बिख ममता ए व्याध ते हाटी हर जस साध संग मिल गायु गुर प्रसाद पयु मन निर्मल सर्व सुखा सुख पायु रहाउ जो किछ कियो सोए भल मानै ऐसी भगत कमानी मित्र सत्तर सब एक समानी जोग जुगत निशानी पूरन पूर रहो सर्ब थाई आन न कतहु जाता घट घट अंतर सर्ब निरंतर।

सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काट।

पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख बिन से सुख किया निवासा तृष्णा जलन बुझाई नाम निदान सतगुरु दृढ़ाया।

साध संगत मिल छूटे रहाउ आठ पैर हर के गुण गावे भगत प्रेम रस माता हरख सोग दोह माहे नराला करने हार पछाता जिसका साथ नहीं रख लिया सगल जुगत बने आई कहो नानक प्रभ पुरख दयाला कीमत कहन ना जाई गुजरी महला पंजवा दो पदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पवित्र लिए करे अपने सगल करत नमचकारु वर्ण जात को पूछे नाही बांछ चरण रवारु ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारु सगल श्रेष्ठ को तनी की जय जन को अंग नरारु रहाउ साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारु नाम देओ त्रिलोचन कबीर दासरु मुक्त पयो चमियारु गुजरी महला पंजवा है नाही को बूजन हारु जान कमन पता शिव ब्रंच अर सगल मोन जन गह नास काहे गता प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर विद बु

पंजवा मुन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपनही तीन देव अर कोड़ तीसा तिनकी हैरत कश न रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साध ते भागी होए चेरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

तह परम अंधेरा नाही, ठाकुर जा सिमरा तू ताही, कर कृपा सर्व प्रत पालक, प्रभ को सदा सलाही, रहाउ सास सास तेरा नाम सुमारो, तुम ही को प्रभ आही, नानक टेक पई करते की, और आस बढ़ानी लाही। गुजरी महला पंजवां, कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गाँव निसे अर पूर।

पंजवा आप जस मिट हुए जग कीरत दरगाह बैसन पाईए जम की त्रास नास हुए खिन मह सुख आनंद से ती घर जाइए जाते काल न बिरथी जाइए आठ पहर सिमरहु प्रभ अपना मन तन सदा त्याइए रहाउ मोहे सरन दीन दुख भंजन तू देहे सोई प्रभ पाईए चरण कमल नानक रंग राती हर दास है पैज रखाईए गुजरी महला पंजवां विश्वंबर दीन को दाता भगत।

मिथ्या पज सदा भगवंत रहाउ नाम एक आधार भगता ईत आगै टेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करन कारण समर्थ श्री धर सरन ता की गही मुकत जुग तरवाल साधु नानक हर निद लही गुजरी महला पंजवा घर चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद छाड़ सगल सियाणपा साध सरणी आओ पार ब्रह्म परमेश्वरु प्रभु के गुण गाओ रे चित चरण कमल आराध सर्ब सुख कल्याण पावह मिटे सगल उपाद रहाउ मात पिता सुत मीत भाई तिस बिना नहीं कोई ईत ऊत जी नाल संगी सर्ब रविया सोए कोट जतन अपाव मिथ्या कशना आवै काम सरण साधु निर्मला गा

साध संग उधार इहु मन आठ पहर आराद काम क्रोध अहंकार बिनसै मिटै सगल उपाद अटल अशेद अपेद स्वामी शरणता की आओ चरण कमल अराध हृदय एक स्यो लिव लाओ पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बक्षली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया।

महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महादीर्घ रोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करन कारण जोग मन तन बांछिए जन तूर कोट जन्म के लह पातिक गोविंद लोचा पूर रहाओ आद अंते माध्य आसा कुकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमणं।

भगत गोपाल सिमरन मिटत जूनी भवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख नवारी मिले हर जन संत सर्ब बिद प्रमते पकार है कतह नाही छोट हर चरण सरन अपार प्रभ के दृढ़ गही नानक ओट गुजरी महला पंजवां घर चौथा दोपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राज श्री तर सफल मूरत करन कारण योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बेयोग मन चरनार बिंद उपास कल कलेश मटंत सिमरन काट जमदूत फास रहाउ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना अपाउ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआउ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरण को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेश मिटे भै भरमा निर्मल गुण प्रभ गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाउ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाउ रहाउ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास भये साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उधरै बिनसी सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ शरण परे ओ नानक प्रभ तुमरी दे राखियो हर हाथ गुजरी अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसी अले बरजत चोरी धावे त्रिह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे केत हो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाउ उर्द मूल जिस साख तलाहा चार भेद जित लागी

डाला सर्वज्योत निरंजन शंभू छोटो बहुत जंजाला सुन सिखवंते नानक बिनवै छोडो माया जाला मन विचार एक लिव लागी हुनरप जन्म ना काला सो गुरु सो सिख कतियले

काम क्रोध अहंकार तदियले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ध्यान सब दात कथियले

जह अंतर शब्द विचार। अब तब अवर ना मांगो हर पै, नाम निरंजन दीजै प्यार। नानक चातरक अमृत जल मांगै।

चिन्ना मद्दम हर सरनागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग विसर्जत रोग पाई रे गुर कृपा से भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस पावे सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेख करी ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करे प्रभ बख्शना मेटै

आई तू वड पुरख अगम सरोवर हम पंखी तुझ माही नानक नाम निरंजन दीजै जुग जुग शब्द सलाही। गुजरी महला पहला घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरनी संसार सागर तार तारन राम नाम कर करनी रहाओ ए मन मिर्त शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधान हर नाम मन रमन चल चित वित ब्रह्मा भ्रमं जग मोह मग्न हितं हिर नाम भगत दृढ़ मती गुरवाक शब्द रतन परमात भरम ना चूकई जग जन्म ब्याद खपं अस्थान हर निह केवलं सतमती नाम तपं एहो जग मोहित व्यापतं दुख अधिक जन्म मरनं भज सरन सतगुर उबर है हर नाम रिद रमन गुरमत निश्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साचे अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर पव जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन एहो शरीर तौ सरणी लभ लोभ लहर निवारण हर नाम रास मन मन मार तुही निरंजना कहो नानका सरनं। गुजरी महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरत करी एहो मन चाई गुर प्रसादी आप गवाई चित थिर राखै सो मुक्त होवै जो इच्छी सोई फल पाई नाच रे मन गुर कै आगै गुर कै भाणै नाच है ता सुख पाव है अंते जम पौ भागै रहाउ आप नचाए सो भगत कहिए अपना प्यार आप लाए आपे गावै आप सुनावै इस

मनमुख भगत ना होई सुर नर विरत पक करमी नाचे मुन जन ज्ञान बीचारी सिद्ध साधक लिव लागी नाचे जिन गुरमुख बुद्ध बीचारी खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे जिन लागी हर लिव तुमारी जी जंत सबे ही नाचे नाच है खानी चारी जो तुद भाव है से ही नाच है जिन गुरमुख शब्द लिव लाए से भगत से तत् ज्ञानी जिन कौ हुक्म मनाए एहा भगत सच्चे स्यों लिव लागै।

ये गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे हैं। जिनको नदर तुम्हारी गुजरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन जियरा रह ना सके। ज्यों बालक खीर आधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाई है। अपने सतगुर कै बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाई। जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनकस नंदन नारद मुन सेव है। अन दिन जपत रह बनवारी शरणागत प्रहलाद जन आई। तिनकी पैज सुवारी

पसारी भगत जना की उत्तम बाणी गाव है अकथ कथा नित न्यारी सफल जन्म भया तिन केरा आप तरे कुल तारी मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे जिने अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा ना पावे ओए डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल धोवे ओह मल पख माया धारी संत जना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी एहो परपंच खेल किया सब करतै हर करतै सब कल धारी हर एको सूत वरतै जोगे अंतर सूत खिंचै एकंकारी रसन रसन रस गावह हर गुण रसना हर रस धारी नानक हर बिन

भय त्रास नाश कृपाल गुण निद सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुरु गोविंद चरण सरण दयाल केशव तार जग भव सिंध रहाउ काम क्रोध हरन मद मोह दहन मरार मन मकरंद जन्म मरन निवार करनी तर पत राख परमानंद जलत अनेक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत छेद अहम बुध करना में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त

बेकार रख धर्म भरम बदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड़ भंडार हर निद होत जिन्ना ना चीर खल मुग्ध मूड कटाक श्री धर पये गुण मत धीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन धार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परम हंस है रीत बेत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उदार।

पौड़ी अपना आप अपायन तदहो होर ना कोई मता मसूर ते आप करी जो करे सो होई तदहो आकाश ना पताल है ना त्रै लोई तदहो आपे आप निरंकार है ना उपत होई ज्यों तिस भावै तिवें।

नानक हुक्म बुझ परवान होए तां फल पावै सच कतनी बदनी करता फिरै हुक्मै मूल ना बुझई अंधा कच निकच पौड़ी संजोग वजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मलाया ज्योति हूं सब चानना सतगुर शब्द सुनाया।

आए गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए नानक से उबरे जे सच रहे लिवलाए पौड़ी ताड़ी करे पुकार प्रभु सुनाए सी अंदर तीरक होए पूरा पाए सी जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी जा होवै खसम दयाल ता महल घर पाए सी सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी सलोक महला तीजा सबना का सहो एक है सदी रहे हजूर नानक हुक्म ना मन्ने ता घर ही अंदर दूर हुक्म पी तिना मनाए सी जिनको नदर करे हुक्म मन सुख पाया प्रेम सुहागण होए महला तीजा रैन सबाई जल मोई कंत ना लायो भावो नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता उपाय कितै ना पाईऐ हर कर्म बधाता गुर शब्दी हर मन वसै हर सहजे जाता अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर नाता वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता।

नानक हुकम ना जातू खसम का, जे रहा सच सुमाए महला तीजा। एको निश्चल नाम धन होर धन आवे जाए, इस धन को तस्कर जोहे ना सकई ना उ चक्का ले जाए। एहो हर धन जीए सेती रव रहिया, जीए नाले जाए। पूरे गुरते पाई है मनमुख पल्ले ना पाए, धन वपारी नानका जिन्ना नाम धन खटिया आई। पौड़ी मेरा साहिब अत वड्डा सच गहर गंभीरा, सब जग तिसकै वस है सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाई है निश्चल धन धीरा, किरपा ते हर मन वसै भेटै गुरसूरा। गुणवंती सलाहिया सदा थिर निश्चल हर पूरा। श्लोक महला तीजा, त्रिग तिन्ना दा जीविया, जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुख हों मैं पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोहे व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत कोई सुख ना पावे, अंत गए पछुताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए,

पौड़ी बिन बूझे वड्डा फेर पया फिर आवै जाई सतगुर की सेवा ना कीतिया अंत गया पछताई अपनी कृपा करे गुर पाई है विचों आप गवाई कृष्णा भुख विचों उतरे सुख वसै मन आई सदा सदा सलाही है हिरदै लिवलाई सलोक महला तीजा जे सतगुर सेवे अपना तिसनो पूजे सब कोए सबना उपावा सिर उपाऊ है हर नाम प्राप्त होए अंतर शीतल शांत वसै जप हिरदै सदा सुख होए अमृत खाना अमृत पहनना नानक नाम वडाई होए महला तीजा ए मन गुर की सिख सुन हर पावह गुणी निदान हर सुख दाता मन वसै हऊ मैं जाए गुमान नानक नदरी पाईऐ तायन दिन लागै ध्यान पौड़ी सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जिता तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता अनदिन हर के गुण रवै गुण प्रगट किता सबना दाता एक है इको हर मिता सलोक महला तीजा ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है जे अन दिन हर लिवलाए

को विरला ब्रह्म ज्ञानी जे हम मैं मेत समाए नानक किसनो मिलिया सदा सुख पाई है जे अन दिन हर नाम त्याए महला तीजा अंतर कपट मनमुख अज्ञानी रसना झूठ बोलाए कपट कीता हर पुरख ना पीजै नित वेखै सुनै सुभाए दूजै पाए जाए जग प्रबोधै।

गुरमुखी उबरे जे आप मेले करतार पौड़ी भगत सच्चा दर सोहदे सच्चा शब्द रहाए हर की प्रीत तिन उपजी हर प्रेम कसाए हर रंग रह सदा रंग राते रसना हर रस पियाए।

क्रोध अहंकारा यह जम की सिरकार है। इना उपर जम का डंड करारा मनमुख जम मग पाइन।

रस भोगी आप अतीत अलिप्त है निर्योग हर जोगी जो तिस भावै सो करे हर करे सो होगी हर गुरमुख नाम त्याई है लह जाहे वजोगी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह आप अखाएंदा गुर शब्दी सच सोए वाह वाह सिफत सलाहा है।

कर्म प्राप्त होए महला तीजा। वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई, पूरा शब्द प्रभ मिलिया आई। वडभागियां वाह वाह मुंह कढ़ाई, वाह वाह करह से जन सोहने, तिन कौ परजा पूजन आई। वाह वाह कर्म प्राप्त होवे, नानक दर सच्चै शोभा पाई। पौड़ी बजर कपाट काया गढ़ पीतर, कूड़ कुसत अभमानी, भरम भूले नदर ना आवनी। मन मुखियां दे अज्ञानी, उपाय कितै ना लभनी।

नानक गुरमुख उभरे सच्चा शब्द सुमाहि पौड़ी ताडी तिसनो आखी है जे खसम तरे प्यार दर खड़ा सेवा करे गुर शब्दी विचार ताडी दर कर पाए सी सच रखे उरतार ताडी का महल अगला

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुरे अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाउ सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भय अचिंत हर धन निह चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय। महल भगती घर सरह सज्जन पहुण्यो बरसना ता बरस घना बहुल बरसह काहि। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहि। महला तीजा मिठा सो जो भावदा सज्जन सो जे रास।

पौड़ी नित जपिए सास ग्रास नाओ परवदगार दा जिसनु करे रहम तिस ना विसार दा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किस जाने जान बुझ विचारदा अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा जिसनु लाए सच तिसे उधारदा जिस दै हुए वल सो कदे ना हारदा सदा भग दी बाण है हौ तिस नमस्कार दा श्लोक महला पंजवां काम क्रोध लोभ छोड़ी दीजे अग्न जलाए जीव दया नित जापीए नानक साचा नाओ महला पंजवां सिमरत सिमरत प्रभ आप

तवन्य मित्र असाढ़े से कौट ने दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवै साहिब चित तेरिया भगता दिथिया मन की कटिया मैल साध संग उठिया जन्म मरण भव कटिया जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस स्यों लाइन रंग जिस दी सब धारिया ऊची हूं ऊंचा स्थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास त्याई जां आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है।

पंजवा खोजी लधम खोज छदिया उजाड़ तै सह दिती वाड़ नानक खेत ना सिजई पौड़ी अराध्य हो सच्चा सोए सब किश जिस पास दुहा सिरिया खसम आप किन मैं करे रास त्यागो हो सगल अपाव तिसकी ओट गहो पौ सरनाई भज सुखी हूं सुख लहो कर्म धर्म तत् ज्ञान संता संग होए जपिए अमृत नाम बिघन ना लगे कोई जिसनो आप दयाल तिस मन गुठिया पाइन सब निदान साहिब तुठिया सलोक महला पंजवा लगम लभन हार कर्म करन दो मां पिरी इको सिरजन हार नानक ब्याह ना पसी है महला पंजवा पापड़िया पछाड़ बाण।

नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह भेटत साध संगात महला पंजवा राम रमहु बड़ भागी हो जल थल महियल सोए नानक नाम आराध्य है।

दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए भगताए हो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रैन इको एक त्याए

जिन सच ना लगो रंग पौड़ी ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना जह जह रखें आप तह जाए खड़ोवना नाम तेरे कै रंग दुरमत धोवना जप जप तुद निरंकार भरम पौ खोवना जो तेरे रंग रत्ती से जोन ना जो

जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मै बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस हुआ आप किरपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसै दयाल बुझाए हुक्म मित जिसै पलाए आप मर मर जमह नित पौड़ी निंदक मारे तत्काल खिन टिकन ना दिते प्रभदास का दुख ना खव सकह हर जोनी जुते मथे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते दुख लगै बिन लाणिया नरक घोर सुते कंठ लाए दास रखियन नानक हर सत्ते।

हम हर की सेवा गुजरी कर पहला मलै न लाछे पार मलु कर्म लियो बैठो री आई आवत किने ना पेख्यो कमने जाने री बाई कौन कह किन बूझिए रमैया आकुल री बाई रहाउ ज्यों अकाश पंखी अलो खोज निरख्यो ना जाई ज्यों

पाणी लख चौरासी जिन अपाई सो सिमरो निर्वाणी कायक मंडल कापड़ी आरे अठसठ कायक राही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाह के पाही गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मह दे मरै सर्प जोन वल वल अवतरै अरी बाई गोविंद नाम।

जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै अंतकार जो मंदर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै अंतकाल नारायण सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बदत तलोचन ते नर मुक्ता पीतम।

ठाकुर लिव लागे जो तुम राजस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिसम भई मुख लागे सगली रैन सोई अंधियारी गुर किंचत कृपा जागे जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी मोहे तुम सर अवर ना लागे देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गली हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली रहाव प्रिय के बचन सुखाने ही अरे यह चाल बनी है भली लटुरी मधुरी ठाकुर पाई ओह सुंदर हर ढोल मिली एको प्रियो सखियां सब प्रिय की जो भावे पेर सा भली नानक गरीब क्या करे बेचारा हर भावे तित राहे चली देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलूलै राती हर प्रेम पीनी चोली है रहाव हो फिरो दीवानी आवल बावल तिस कारण हर ढोली है कोई मेलै मेरा प्रीतम प्यारा हम तिस की गुल गोली है सतगुर पुरख मनावो अपना हर अमृत पी झोली है।

हर जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार, रहाव लोकन की चतुराई उपमा, ते बै संतर जार, कोई भला कहो पावे बुरा कहो, हम तन दियो है तार, जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा तार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो हो लाज मरार, देव गंधारी, हर गुण गावे हम तिस बलिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन, जिस हृदय नाम मरारी रहाव, तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी, हम क्यों कर मिल है जूठारी, हम रह जिये होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़ियारी, हमरी मुदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टा।

0: एक समाई है, काटे अव घट रव्या सब ठाई, हर पूर्ण ब्रह्म दिखाई है, उस्तत करह सेवक मुन केते, तेरा अंत न कतहु पाई है, सुखदाते दुख भंजन स्वामी, जन नानक सद बल जाइय देव गंधारी,
1: माई होनहार सो होई है,
0: राच रहो रचना प्रभ अपनी, कहां लाभ कहां खोई है रहाओ, कह फूल है आनंद बिख सोग, कब हसनो कब रोई है, कब हूं मैल भरी अभमानी, कब साधु संग धोई है, कोई न मेट प्रभ का किया, दूसर नाही अलोई है, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जेहे प्रसाद सुख सोई है, देव गंधारी, माई सुनत सोच

सुखदाई पूर्ण प्रभ करता मेरी बहुत ज्ञान पजरत निर्गुण क्रूप कोलहीन नानक हौ अनंद रूप स्वामी भरत देव गंधारी मन हर कीर्त कर सदहु गावत सुनत जपत उधारै

ज्यों अपने प्रभ भाव नीचो नीच नीच अतनाना होए गरीब बलावो रहाओ अनक अडंबर माया के बिरथे तास्यों प्रीत कटावो ज्यों अपनो स्वामी सुख माने ताम है सुबा पावो दासन दास ऋण दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बड़े।

महा सुख पायो, चिंता रोग बदारियो, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बसारियो, माया बंद काटे कृपा निध नानक आप उधारियो, देव गंधारी मन सगल सियान परही, करन कराम नहार स्वामी नानक ओट गही रहाओ, आप मेट पए सरनाई एह मत साधु कही, प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया, परम अंधेरा लही।

नाम रस माते महा किल बिख कोट दुख रोगा प्रभ दिष्ट तुहारी हाते सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते।

हारहाउ खोजत खोजत खोज बीचारियो हर संत जना पह आहा तिने प्राप्त इहो निधाना जिनकै कर्म लिखा हा ते बड़ भागी।

चित्त हेरै अंध बिलाते काढ़ु करते क्या नाही करते रह नाम आधार दीजै नानक कौ आनंद सुख कनेरै सके दो देव गंधारी पंजवा मन गुरमिल नाम आराध्यो सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल भादेव रहा कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया पादेव भाव भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साधेव भयो अनग्रहो मिट्यो मोर्चा अमोल पदार्थ ला देव बलिहार है नानक लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगा देव देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफले आया जीवन फल ताको पार

जिस लाड लावै देव गंधारी पंजवा चंचल सुपने ही पुर जायो इतनी ना बूझै कबहू चलना विकल भयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया विखिया एक उपायो लोग सुने मन सुख कर माने बेग तहां उठ तायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी।

नानक दास बलिहारी चके तिन देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरण निहारो करहु अनग्रहु स्वामी मेरे मन ते कभू ना डारो रहाओ साधु धूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर मानो मन मह इहो सुख धारो गुण गावह ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारो नाम निधान नानक दान पावो कंठ लाए उड़ धारो देव गंधारी महला।

को उपजी छोड़ न कतुहू जाता रहाउ। बैठत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीरथ मजन कीनो साधु धूरी नाता सफल जन्म।

लाइया संकट घोर कटे खिन तर नानक हर दर्श समाइय देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाव दुई कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्म मन त्याया

पाए, छोड़ न जाए सद ही संगे, अन दिन गुर मिल गाए रहाओ। मिलियो मनोहर सर्ब सुखैना, त्याग न कतहु जाए, अनक अनक भांत बहु पेखे, प्रिय रोम न समसर लाए। मंदर भाग सोभ द्वार, अनहत रुण चुन लाए, कहो नानक सदा रंग माणी, ग्रह प्रिय तीके सद थाई।

दीन दयाल भये प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मारियो रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रतन जन्म नहीं हारियो प्रभ गुण गाए बिखे बन तरिया कुलह समूह उधारियो चरण कमल बसिया रिद पुत्र तास ग्रास उचारियो नानक उठ गही जगदीश पुनः पुनः बलिहारियो।

नामुनिय कत पाइय मन रूचा खोज असंखा अनकत पंथा बिन गुर नहीं पहुंचा कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव गंधारी महला पंजवा मैं बहु विद पेख्यो दूजा नाही री को खंड दीप सब पीतर रविया।

अचत राय बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक चतुर वेद उचरत दिन रात।

अपनीति दुर्मत ते ना तरै रहाउ मद माया कै भयो बावरु हर जस नह उचरै कर पर पंच जगत को डहकै अपनो उधर भरै स्वान पूछ ज्यो होए ना सूदो कहो ना कान धरै कहो नानक भज राम नाम नित जाते काज सरै देव गंधारी महला नवा सब किश जीवत को व्यवहार मात पिता भाई सुत बंधप हर खुन ग्रह की नार रहाव तन ते प्राण हो जब न्यारे तीरत प्रेत पकार आद करी को नहरा कर ते देत निकार मृग तृष्णा ज्यो जग रचना यह देखो हृदय विचार कहो नानक भज राम नाम नित जहां ते होत उधार देव गंधारी महला नौवा जगत में।

कोई अंगन बसरिया अनक उपरिया तो मैं हर हर करिया तो सुख सहजरिया रहाव मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन किरिया सगल बटरिया बिरख कतरिया बहुबंध है परिया हिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा महला नौवा हर की गत नह को जाने जोगी जति तपी पाच हारिये अर बहु लोग सियाने रहाव तिन मह राव रंक कौ करी राव रंक कर डारी रीते परे परे सखनावे यह ताको व्यवहारी

राम। हर रस बीता हर मन प्यारा, मन हर रस नाम चकोले राम। गुरमत मन ठहराइए मेरी जिंदड़िए, अनक ना काहू डोले राम। मन चिंदड़ा फल पाया हर प्रभ, गुण नानक बाणी बोले राम। गुरमत मन अमृत गुठड़ा मेरी जिंदड़िए, मुख अमृत बैन अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए, मन सुनिए हर लिव लाए राम। श्री वचुन्ना हर प्रभ पाया, गल मिलिया सहज सुपाए राम। जन नानक मन आनंद भया है मेरी जिंदड़िए, अनहत शब्द बजाए राम। सखी सहेली मेरिया मेरी जिंदड़िए, कोई हर प्रभ आन मिलावे राम। हों मन देवो तिसे अपना मेरी जिंदड़िए, हर प्रभ की हर कथा सुनावे राम। गुरमुख सदा अराद हर मेरी जिंदड़िए, मन चिंदड़ा फल पावे राम। नानक भज हर शरनागति मेरी जिंदड़िए, वडभागी नाम त्यावै राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदड़िए, गुरमत नाम परगासे राम। हों हर बाज उदीनिया मेरी जिंदड़िए, ज्यों जल बिन कमल उदासे राम। गुरपुरै में लाया मेरी जिंदड़िए, हर सज्जन

मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए हर हर नाम त्याए राम हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए जन नानक नाम समाए राम हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए ज्यों बालक लग दुध कीरे राम हर बिन चांत ना पाईऐ मेरी जिंदड़िए ज्यों चातरक जल बिन तेरे राम।

गुण गावै हर प्रभु कीरे राम ते सर्वन भले शोभ नीक है मेरी जिंदड़िए हर कीर्तन सुने है हर तेरे राम सो शीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए जो जाए लगे गुर पैरे राम गुर विट्टो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम च तेरे राम ते नेत्र भले परवान है मेरी जिंदड़िए जो साधु सतगुरु देख है राम ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए जो हर जस हर हर लेख है राम तिस जन के

जिस अंतर हृदय शुद्ध है मेरी जिंदड़िए, तिन जान सब डर सुट कत्ते राम, हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए, सब झख मारन

तिनका संग मल उतरै मेरी जिंदड़िए रंग राते नदर निशाने राम। नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए मिल साधु संग अगाने राम। हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए जप हर हर कृष्ण।

राम जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए सो हर धन निध पाए राम वडभागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम थान थनंतर राव रहे आ मेरी जिंदड़िए।

वाक्यो हर हर नाम अराधे राम कर सेवो हो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो जम का मार्ग साधे राम मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख हर दरगहा सुबा पाईए जिनको बधाता तुरहु लिखिया तिन्ना रहन दिन लिव लाईए हौ मैं ममता मोह छुट्टा जा संग मिलिया साधे जन कह नानक मुक्त हुआ हर हर नाम अरादे कर जोड़े हो संत एकत्र होए मेरे लाल जियो।

दयाल की अपर अपारा राम गोपाल दयाल गोविंद लालन मिलहो कंत नमाणिया नैन तरसन दर्स परसन नह नींद रैन विहानिया ज्ञान अंजन नाम बिंजन पये सगल शिंगारा नानक पयंपै संत जंपै मेल संत हमारा लाख उलहने मोहे हर जब लग नह मिले राम मिलन को करो उपाव किस हमारा नह चले राम चल चित बित अनित प्रयाविन कमन विधि ना तीजी है खान पान सिंगार बिरते हर कंत बिन क्यों जीजी है आसा प्यासी रैन दिनियर रह ना सकी है एक तिल है नानक पयम पै संत दासी तो प्रसाद मेरा फिर मिले सेज एक प्रयो संग दर्शना पाई है राम अवगन मोहे अनेक कात महल बुलाई है राम निर्गुण नमाणी अनाथ बिनवे मिलहो प्रभ कृपा निधे प्रम पीत खोइय सहज सोइय प्रभ पलक पेखत नाम निधे ग्रह लाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाइय नानक पयम पै संत सरणी मोहे दर्स दिखाइय संतन कै प्रसाद हर हर पाया राम इच पुन्नी मन शांत तपत बुझाया राम सफला सो दिनस रैनी सोहावी आनंद मंगल रस घना प्रगटे गोपाल गोविंद लालन कवन रसना गुण भना भ्रम लोभ मोह विकार थाके मिल सखी मंगल गाया नानक पयम पै संत जंपै जिन हर हर संजोग मलाया बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरे अन दिन नाम बखाना राम अमृत बाणी उचरा हर जस मिठा लागे तेरा पाणा राम कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन धन तुम मना मूरख मुग्ध अनाथ चंचल बालहीन।

दूर भगतन की मन तन लगो, हर जियो सब पतत पनीता राम, पतता पनीता होए तिन संग, जिन बदाता पाया नाम राते जी दाते, नित देहे चढ़े सो आया, रिद सिद्ध नव निद हर जप, जिन्नी आत्म जीता बिनवंत नानक वड भाग पाई है, साध साजन मीता जिन्नी सच वणंजिया हर जी।

संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर एच पुन्नी हमारी बिहागड़ा महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद वद सुख रैनड़िए प्रिय प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसों सदा पगा पग धूर बांचो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रिय रंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी मिलन

कै चरण लगे है, मन प्रिय प्रेम घना, हर की भगत मंगे है, हर भगत पाईए प्रभ त्याईए, जाए मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, अर्प तन तन एहो मना, बड पुरख पूरन गुण संपूर्ण, भ्रम भीत हर हर मिल भगै है, बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए, हर नाम नित नित नित जप है, हर नार सुहागणी सब रंग माणी, रांड ना बैसई प्रभ पुरख चिराणी, नह दुख पावे प्रभ त्यावे, तन ते बडभागिया, सुख सहज सोवे है किल विख खोवे है, नाम रस रंग जागिया, मिल प्रेम रहना हर नाम गहना, प्रिय बचन मीठे पाणी।

मन तन रव रहया प्रभ परमानंदा हर कंत अनंत दयाल श्री धर गोविंद पतत उदार नू प्रभ कृपा धारी हर मुरारी भय सिंध सागर तारनु जो सरन आवे तिस कंठ लावे एहो बिरख स्वामी संदा बिनवंत नान।

हर सारी सब किल विख नाश मन कर सदा मजन गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नास्ते जन्म मरण ना होए तिसको कट्टे जम के पासे मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो मिनवंत नानक धार कृपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावह संत जना प्रभ का जय कारो राम मिल संत गावह खसम पावह हर प्रेम रस रंग भिन्निया हर लाभ पाया आप मटाया मिले श्री विचुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम अपारू बिनवंत नानक सदा निर्मल सच शब्द रुण चुनकारू सुन बड़ भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी किस हृदय सुमानी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जिस आप प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर नामुआ कल कलेशा दुख हरे हर सरन पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मन तन पाणी बिनवंत नानक सदा गाइए पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत भये किश कह

खोजत संत फिर है प्रभ प्राण अधारिये राम तान तन कीन भया बिन मिलत प्यारे राम प्रभ मिलो प्यारे मया तारे कर दया लड़ लाए लीजी है देहे नाम अपना जपूं स्वामी हर दर्श पेखे जीजी है समर्थ पूर्ण सदा निकल ऊच अगम अपारे।

राम तपतमा कतह बुझे बिन स्वामी सरनाराम प्रभ सरन तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है नाथ निर्गुण कछ ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है दीन दयाल गोपाल प्रीतम समरत कारण करना नानक चातर कहा।

संग मिले जप पूर्ण कामा राम सब काम पूर्ण दुख बदीरन हर निमख मनहूना बीसरे आनंद अनदिन सदा साचा सर्व गुण जगदीसरे अगणत ऊच अपार ठाकुर अगम जाको तामा बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूरन मिले श्री रंग रामा कई कोटक जग फला सुन गावन हारे राम हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम हर नाम जपत

सद मना शुभ दिवसे आए गह कंठ लाए प्रभु ऊचे अगम अपारी बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारी बिहागरा महला।

लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम किरत कमाने दुख सहो प्राणी अनक जोन प्रमाया महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया एक सहार के नाम बाजू आन काज सियाणी बिनवंत नानक लेख लिखिया भरम मोहे लोभाणी बीच ना कोई करे किरत घण विछड़ पया आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपया तपत थम गल लातिया काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछतापया बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया तुझ बिन को नाही प्रब राखन हारा राम पतत उदारन हर बिरद तुम्हारा राम पतत उदारन सरन स्वामी कृपा निद दयाला अंधकूप ते उधार करते सगल घट प्रतपाला।

प्रभ कर लय छोड़ चिंत अचिंत होए बहुड़ दुख ना पाया नानक दर्शन पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया।

बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप अपाव थाके, जह भावत कह जाही, आद अंते मद पूरन, सर्वत्र घट घट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम, से पत सेती घर जाही, नरपत जान ग्रहयो, सेवक सियाणे राम, सरपर विचड़ना, मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख भूला, कहां अस्थित पाईऐ, बिन नाम हर के आन रचना, अहला जन्म गवाईऐ।

स्वामी तार अनुग्रह अपना कर लीना राम पूजा गह काज लियो साधु संग दीना राम साध संगम हर अरादे सगल कलमल दुख जले महाधर्म सोदान किरिया संग तेरे सिह चले रसना अरादै एक स्वामी हर नाम मन तन पीना नानक जिसनो हर मलाए सो सर्व गुण परबीना।

मिल प्रीतम सुख पाया, सच्चा शब्द विचार, नानक सुख दाता सेविया, आपे परखण हार पौड़ी, जीव जंत सब तेरिया, तू सब नारास, जिस तू देहे तिस सब किस मिले।

आईया सहज न लगो भाव शब्द साधना पायो मन हठ क्या गुण गाय नानक आया सो प्रवान है जे गुरमुख सच समाए महला तीजा अपना आपना पछाण मूड़ा अवरा आख दुखाए मुंडा दी खसलत ना गईया अंधे विछड़ चोटा खाए सतगुर कै भै भन ना घड़ियो रह अंक समाए अन दिन सहसा कदे ना चूकै बिन शब्द दुख पाए काम क्रोध लोभ अंतर सबला नित धंदा।

आए गुर का शब्द संभाल तू मूड़े गात मत शब्दे पाए नानक सतगुर तद ही पाए जा विचों आप गवाए पौड़ी जिस दै चित वसिया मेरा स्वामी तिसनों क्यों अंदेसा किसै गल्ले दा लोड़ी है हर सुख दाता सबना गल्लां का तिसनों त्याई दिया केव निमख घड़ी मुँह मोड़ी है जिन हर त्याया तिसनों सर्ब कल्याण होए नित संत जना की संगत जाए बहिया मुँह जोड़ी है सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के सब जन के बंधन तोड़ी है हर कृपा ते हुआ हर भगत जना कै मुहे दिठे जगत तरिया सब लोड़ी है। सलोक महला तीजा सारस ना जल जाऊ जिन हर का स्वाओ ना पाया नानक रसना शब्द रसाए जिन हर हर मन वसाया। महला तीजा सारस ना जल जाऊ जिन हर का नाउ वसारिया नानक गुरमुख रसना हर जपै हर कै नाई प्यारिया पौड़ी हर आपे ठाकुर सेवक भगत हर आपे करे कराए हर आपे वेखै विगसै आपे जित पावै तित लाए हर इक ना मार्ग पाए आपे हर इक ना उजड़ पाए हर सच्चा साहिब सचत पावस कर वेखै चलत सुबाई।

सच वसै अज्ञान अंधेरा जाय। सब किस देखै तिसै का जिन किया तन साज, नानक शरण करतार की करता राखै लाज। पौड़ी

जगत उपाया करते दान सबना कौ दिया आपे सेव बनायन गुरमुख आपे अमृत पिया आप निरंकार आकार है आपे।

0: रह सदा गुण गाय गिण कर्म किने ना पायु
1: भौक मोए बिल लाय
0: गुर कै शब्द मन तन भिजै आप वसै मन आई।

आपे खंड वर भंड करे, आप समुंदे आप है सागर, आपे ही विच रतन धरे, आप लहाए करे जिस कृपा, जिसनो गुरमुख करे हरे, आपे भौजल आप है बोहिथा, आपे खेवट आप तरे, आपे करे कराए करता, अवरना दूजा तुझै सरे। श्लोक महला तीजा। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, नाम पदार्थ पाइए, अचिंत वसै मन आए, जन्म मरण दुख कटिए, हों मैं ममता जाए, उत्तम पदवी पाइए, सच्चे रह समाए, नानक पूर्व जिन को लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया।

खंडन आपे सब कट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब बेता आपे गुरमुख भंजन जन नानक सलाहे ना रजै तुद करते तू हर सुखदाता।

पर बुझै सब आपे, एक थै आपे करे इयाणी, इकना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरे मन सच्चे पाणी, जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई, से जन सच्ची दरगह जानी। सलोक मर्दाना पहला, कल कलवाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी मोहे भरी, पीलावा अहंकार, मजलस कूड़े लब की, पी पी होए खुआर, करनी लाहन सत गुड़, सत सरा कर सार, गुण मंडे कर सील के हो, शर्म मास आहार, गुरमुख पाइए नानका, खादे जाहे विकार। मर्दाना पहला, काया लाहने आप मद, मजलस तृष्णा तात, मनसा कटोरी कूड़ भरी,

हरस्यों प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुबदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार। नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जम्मै होए खुआर महला तीजा। प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए। नानक सतगुर मिलिया मेरी प्यास गई, फिर पाया घर आई पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया, आपे दस अठ वर्ण उपायन। आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़ै, आपे बख्शे करे दया। आप अभुल ना भुलै कब ही,

कोई। ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना होए। महला तीजा, क्या जाना किव मरहेंगे, कैसा मरना होए।

गुर पर साथी जीवत मरे हुक्म बूझे सोई नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए पौड़ी जा आप कृपाल होए हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे आपे सतगुर मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे अपने सेवका की आप पैज रखे अपने भगतां की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा।

नानक गुरमुख पाईए जा को नदर करी पौड़ी आपे सब घटे अंदरे आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर जुग शक्ति गुबार कर वर्त्या सुन्ना हर उथै वेद प्राण ना सासता आपे हर नर हर

अमृत भोजन नाम हर राज राज जन खाहु सब पदार्थ पाइन सिमरन सच लाहु संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहु सलूक महला तीजा सब किछ हुक्मे आमदा सब किछ हुक्मे जाए जे को मूर्ख आपहु जाने अंधा अंध कमाए नानक हुक्म को गुरमुख बुझै

प्राप्त हुए। किस जोगी की नगरी सबको वस पेखी जोग ना होए। नानक ऐसा बिरला को जोगी जिस घट प्रगट होए पौड़ी। आपे जंत उपा

तृप्त भई हौ तिन बलिहार जाऊं। मैं की नदर ना आव ही वस है हपिया नाल तिखा तिहाया क्यों लह जां सर भीतर पाल। नानक तेरा बाणिया तू साहिब मैं रास मन ते धोखा तां लह जां सिफत करी अरदास। वडहंस महला पहला गुणवंती सोहरावया

चूड़ा भन पलंग स्यो मुंडे सन बाही सन बाह एते वेश करेंदिए मुंडे सहो रातो अबराह ना मनियार ना चूड़िया ना से बंगड़िया जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़िया सब सहिया सहो रावण गईया हों धाती कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तै सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टिया भरिए मांग सदूरे अगे गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई।

छड़ी गुर कै शब्द मलाए मेरी मेरी कर दे घट गए इना हाथ केहो ना आया सतगुर मिले है सच मिले सच नाम समाया आसा मनसा इहो शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा सुहागणी सदा मुख उजला गुर कै सहज सुभाए सदा फिर राव है अपना विचों आप गवाए मेरे मन तू हर हर नाम त्याए सतगुरु मोह को हर दिया बुझाए रहाओ दुहागनी खरिया बिल लांदियां तिन्ना महल ना पाए।

मिलाया, पूरे सतगुर हर नाम त्याया रहाय। ब्रह्म वेद बाणी परगासी, माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वरतै घर अपने, तामस बहुत अहंकारा।

देहे शरीर सुख होवै शब्द हर नाय, नाम परमल हृदय रहे आसमाय। नानक मस्तक जिस वड भाग, गुर की बाणी सहज बैराग।

मन आए, भरमे भूला फिरे संसार, मर जन्मे जम करे खुआर, नानक सेवड़ भागी जिन हर नाम ते आया, गुर प्रसादी

मैं अवगण भरपूर शरीरे हों क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे। जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया हे मैं गुण नाही हों क्यों मिला मेरी माया। हों कर कर थाका अपाव बहतेरे नानक गरीब राखो हर मेरे। वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी। हों हर प्रभ छोड़ दूजे लोभानी हों क्यों कर पिर को मिलो इयानी। जो पिर पावे सा सुहागण।

जिन पेर रावया सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हौ क्या करी दुहागण नित सुहागण सदा पेर रावे मैं कर्महीन कब ही गल लावे तू पेर गुणवंता हौ औगण यारा मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा वडहंस महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं मन वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा हौ जाए पुछा अपने सतगुर है गुर पुछ मन मुग्ध समझावा भूला मन समझै गुर शब्दी हर हर सदा त्याए नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा तो हर चरणी चित लाए हौ सब वेश करी पिर कारण जे हर प्रभ साचे पावा

पानी धोवां, नित नित सेव करी हर जन की, जो हर हर कथा सुनाए, तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा, नानक मन आस पुजाए, गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिल हर नाम ते आवा, गुर सत गुर पासो हर गोष्ट पूछा, कर सांझी हर गुण गावा, गुण गावा नित नित सद हर के, मन जीवै नाम सुन तेरा, नानक जित

खाले। जिसनो नदर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले, सो हर हर नाम सदा सदा संभाले। जिस सतगुर पूरा मेरा मिलया नानक हर जन हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया। वडहंस महला पंजवां घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अत ऊंचा ताका दरबारा अंत नाही किश पारा वारा। कोट कोट कोट लख तावै एक तिल ताका महल ना पावै। सहावी कौन सो वेला जित प्रभ मेला रहाव। लाख भगत जाको अराध है लाख तपीसर तप ही साध है। लाख जोगीसर करते जोगा लाख पुगीसर भोग है भोगा। कट कट वस है।

संतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगमताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडहंस महला।

श्रेष्ठ सो जानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त नवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब भरपुर लीना।

प्रभ दाते, जिसह जनावो हो तिनह तुम जाते, सदा सदा जाई बलिहारी, इत उत देखो ओट तुम्हारी, मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता, नानक साधु देख मन राता, बड़ा हंस महला पंजवा, अंतर जामी सो प्रभ पूरा, दान दे साधु की तूरा, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ, जाल काल महियल रहे आपर पूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे, जिसनो नदर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए, जी जंत सगले प्रत पारे, सरन परे हो नानक हर द्वारे, बड़ा हंस महला पंजवा, तू वड दाता अंतर जामी, सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी, मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा, हम सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाव, तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, चरण कमल हृदय उरतारे,

साध संग हर अमृत पीजै, ना जियो मरै ना कबहू सीजै, वडभागी गुर पूरा पाइय, गुर कृपा ते प्रभु त्याय रहाउ। रतन जवाहर हर मानक लाला, सिमर सिमर प्रभ भए निहाला, जत कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना।

किस बिन रह ना सका, ज्यों चातरक जल को बिल लाता, हौ क्या गुण तेरे सार संभाली, मैं निर्गुण को रख लेता, हौ पई उडीनी कंत को अमाली, सो पेर कद नैनी देखा, सब रस भोगण विसरे, बिन पेर किते ना लेखा, इहो कापड़ तन ना सखावई, कर ना सको हौ वेसा, जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा, तिने आगे हम आदेसा, मैं सब शिंगार बनाया अमाली, बिन पेर काम ना आए, जां सह बात ना पुछिया अमाली, ता बिरथा जोबन सब जाए, तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सहो रहया समाए, हौ वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिनके तुआ सद पाए, जिचर दूजा भरम सा अमाली।

तिन पाया बड़ा हंस महला पहला शंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद काया कूड़ बगाड़ काहे नाइय नाता सो प्रवान सच कमाई जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई लिखे बाजों सुरत नाही बोल बोल गवाई है जिथे जाए बही है भला कही है सुरत शब्द लिखाई है काया कूड़ बगाड़ काहे नाई है ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया अमृत हर का नाम मेरे मन पाया नाम मीठा मन लागा दुख डेरा ढाया सुख मन में आए वसया

वारी खसम कढाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

वारी खसम कढाए किरत कमावण सब उपायन आप आपे नदर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम भावे सो करे किश पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे नानका जिन नाम मिलिया कर्म होवा तुर कदे सब उपायन आप आपे नदर करे बड़हंस महला पहला करहो दया तेरा नाम बखाना सब उपाय आप आपे सर्ब समाना सर्बे समाना आप तू है उपाय तमे लाइया एक तुझ ही किए राजे टिकना भिख पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठा एत भरम भलाना सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दुख गया सुख आए समान गावन सुर नर सुगड़ सुजान सुर नर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन भावहि माया मोहे चेतह नाही अहला जन्म गवावहि एक मूड मुग्ध न

एक कर्म धर्म ना होए संजम जाम ना एक पछाणी वक्त सुहावा सदा तेरा अमृत तेरी बाणी हों बलिहारी साचे नावे राज तेरा कब हो ना जावे राजो ता तेरा सदा निहचल एहो कब हो ना जावे चाकर ता तेरा सोए होवे जोए सहज समावे दुश्मन ता दुख ना लगे मूले पाप नेड़ ना आवे हों बलिहारी सदा हुआ एक तेरा नावे जुगा जुगंतर भगत तुम्हारी।

किनारे सच्चा शब्द मिल रही मुइये फिर रावे भाई प्यारी सच्चा भाई प्यारी कंत सवारी हर हर स्यो ने हो रचाया आप गुआया ता फिर पाया गुरु कै शब्द समाया सा धन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा धन मेल लई पिर आपे साचे साहि सवारी निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम गुरमुख जिन्नी रावया मुइये फिर रव रहे भरपूरे राम फिर रव रहे भरपूरे वेख हजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली भोली फिर सहज रावै मिलिया कर्म विधाता जिन हर रस चाखिया शब्द सुभाखिया हर सर रही भरपूरे नानक कामन सा फिर भावै शब्दे रह हदूरे।

नानक हर की भगत नराली, गुरमुख विरलै कीजै, गुरमुख खेती हर अंतर बीजियै, हर लीजै शरीर जमाए राम, अपने घर अंदर रस पुंच तू, लाहा लै परथाए राम, लाहा परथाए हर मन वसाए, धन खेती वापारा, हर नाम त्याए मन वसाए।

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज कर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हूं मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पहु पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम गुरमति हुक्म बूझियै हुक्मे मेल मलाई राम हुक्म मलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवार नहारा पौ भंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया समाई वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच संभाल जियो अपने घर तू सुख वसै पोहे ना सकै जम काल जियो काल जाल जम जोहे ना साकै साचै शब्द लिव लाए सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रहाए दूजे पाए भरम भगुत्ती मन मुख मोही जम काल कह नानक सुन मन मेरे तू सदा सच संभाल मन मेरिया अंतर तेरे निदान है बाहर वस्त ना पाल जो भावै सो पुंच तू गुरमुख नदर निहाल गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सिखाई मनमुख अंधले ज्ञान विहूणे।

पारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम खोटे दरगहा सुतियन उभे करन पुकारा राम उभे करन पुकारा मुग्ध गुवारा मन मुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम ना पाया मन मुख संता नाल वैर कर

आखी है और करना किछु ना जाई राम। जित भावे तित लाए सी ज्यों तिस दी वडियाई राम। ज्यों तिस दी वडियाई आप कराई वरियाम ना फुसी कोई। जगजीवन दाता कर्म विधाता आपे बक्के सोई। गुर प्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई। आप करे किसे आखी है और करना किछु ना जाई।

क्या बख्श लए, फिर हुए ना फेरा राम, फिर हुए ना फेरा अंत साचन बेड़ा, गुरमुख मिले वड़ियाई, साचे रंग राते सहजे माते, सहजे रहे समाई, सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रत्ते अंत नबेरा, नानक नाम रत्ते से सच समाणी, बहुर ना पवजल फेरा, माया मोह सब बरल है, दूजे

सकै कोई। जिन सृष्ट साजी सो कर वेखै, तिस जेवड़ अवर ना कोई। मनमुख अंधा तप तप खपै, बिन शब्दै शांत ना आई। नानक बिन नावै सब कोई भुला, माया मोहे खोआई। एहो जग जलता देख कै, भज पए हर सरनाई। राम अरदास करी गुर पूरे आगे, रख लेवो हो देहो वडाई। राम रख लेवो हो सरनाई, हर नाम वडाई। तुद जेवड़े अवर ना दाता, सेवा लागे सेवड़ भागे। जुग जुग एको जाता, जात सत संयम कर्म कमावै। बिन गुर गत नहीं पाई, नानक तिसनो शब्द बुझाए। जो जाए पवै हर सरनाई, जो हर मत दे सा उपजै। होर मत ना काई राम, अंतर बाहर एक तू। आपे देह बुझाई राम, आपे देह बुझाई। अवर ना पहाई, गुरमुख हर रस चाखिया। दर साचै सदा है साचा, साचै शब्द सुभाखिया। घर है निज घर पाया, सतगुरु दे वडाई। नानक जो नाम रते से महल पाए। मत प्रवान सच साई, वडहंस महला चौथा शंत। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन सतगुर प्रीत लगाई। राम हर हर।

राम। जप हर हर नाम कमल पर गास्ते, हर नाम नमंग निद पाई। हम मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई। हर नाम वडाई सतगुर ते पाई, सुख सतगुर देव मन परसते।

किन के जिन सतगुर पुरख प्रभ ते आया तू वरदाता अंतर जामी मेरी श्रद्धा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी श्रद्धा पूरी अन दिन राम गुण गाए जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर हर नाम मेरा प्राण सिखाए किस बिन घड़ी निमख नहीं जीवा हर हर कृपा करे सुख दाता गुरमुख अमृत पीवा हरे आपे श्रद्धा लाए मलाए हरे आपे आप सवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम हरे आपे मेले करे सो होई राम जो हर प्रभ भावे सोई होवे अवर न करना जाई बहुत सियानप लया न जाई कर थाके सब चतुराई गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिन अवर ना कोई हरे आपे पुरख निरंजन सोई वड़ाहंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर बनासे सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास ग्रासे जिनको हर प्रभ कृपा सारी ते सतगुर सेवा लाया हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया मेरा सतगुर प्यारा

हर मिले हर गुण सुख घनी, गुर शब्द पाया हर नाम त्याया, बडभागी हर रंग हर बाणी, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव रंगिया, नानक बखाने नाम जाने, हर नाम हर प्रभ मंगिया, कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम, मन मैगल गुर शब्द वस आया राम, मन वसगत आया परम पद पाया, सा धन कंत प्यारी, अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है, वडभागी हर हर त्याया, देह घोड़ी जी जित हर पाया राम, मिल सतगुर जी मंगल गाया राम, हर गाए मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेवकी, प्रभ जाए पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुपहाय, हर गुरमति मन त्याया, जन नानक हर कृपा तारी, देह घोड़ी चढ़ हर पाया, राग बड़ा हंस महल।

जमाणी अस्थर थिया अमृत पिया रहया आवण जानी सो कर लता सहज समदा हर का नाम अधारा कहो।

गुरमंत्र शब्द सच दीता राम, सच शब्द ते आया मंगल गाया, चूके मनो अदेसा सो प्रभ पाया कतह ना जाया, सदा सदा संग बैसा प्रभ जी भाणा सच्चा माणा, प्रभ हर तन सहजे दीता कहो नानक तिस जन बलिहारी, तेरा दान सबनी है लीता तो भाणा ता त्रिपत अगाए राम, मन थिया ठंडा सब त्रिशन बुझाए राम, मन थिया ठंडा चूकी डंजा पाया बहुत खजाना, सिख सेवक सब पुंचन लगे हौ सतगुर कै कुर्बाना, निरभउ भये खसम रंग राते जमकी त्रास बुझाए, नानक दास सदा संग सेवक

0: तुद सलाही
1: गुण अवगण मेरा किसना बिचारिया
0: बख्श लिया खिन माही नौ निद पाई बजी वधाई वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वर घर पाया मेरे लाथे जी सगल वसूरे सलोक क्या सुनेंदो कूड़ वंजन पवन चलारिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच धनी चंत तिन घोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम से सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम से सहज सुहेले गुण अमोले जगत उदाहरण आए पै बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए जिन कौ कृपा करी मेरा ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक तिन कोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया सलोक लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखड़िया बेअन।

में से परधान्य हर से तीरंग राते हर रस अगाए सहज समाए घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने पाणे कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा इनकै सद कुरबाणी सलोक देह अंधारी अंध सुनी नाम विहूणिया नानक सफल जनम जय घट गुठा सच धनी संत तिन खनिया वन्या जिन मेरा हर प्रभ डीठा राम जन चाख अगाणी हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा हमें बूठा सुख भये दुख नास भरम बनास तन ते जप जगदीश ईसह जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तिन खनिया वन्या जिन घट मेरा हर प्रभु बूठा सलोक जो लड़ींदे राम सेवक से कांडिया नानक जाने सत साई संत ना बाहरा शंत मिल जल जलह खटाना राम संग ज्योति ज्योत मलाना राम समाए पूर्ण पुरख करते आप आपह जानिए कह सुन सहज समाद लागी एक एक वखाणिए आप गुप्ता आप मुक्ता आप वखाना नानक भ्रम पै गुण बिनासे मिल जल

मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो शरण आवे गुण निदान पावे सो बहुड़ जन्म ना मरता बिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता आठ पहर हर त्याईये राम मन इच्छे अड़ा फल पाईये राम मन इच्छ पाईये प्रभ त्याईये मिटह जम के त्रासा।

जिन जग तंदे लाया मोहलत पुन्नी पाई भरी जानी अड़ा घत चलाया जानी घत चलाया लिखया आया।

दूजी कारण भाली आप नरालम धंदे बाधी कर हुक्म छडावण हारू अज कल करदिया काल व्यापै दूजे भाए विकारू जम मार्ग पंथ न सुजई उजड़ अंध गबारूआ ना जल लेप तुलाइया ना भोजन प्रकारूआ।

हारेवा रोवे माया मुठड़ी धंधड़ा रूवण हारेवा धंधा रूवे मैल ना धोवे सुपनंतर संसारू ज्यों बाजी गर पर मैं भूले झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरे राखी नानक सहज सुपहाई वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा घर सचड़ै सेवी है सच खरा सत्यारूवा कूड़ लभ जा थाए ना पासी अगे लह ना ठाओ अंतर आओ ना बैसोह कहिए ज्यों सुनिए घर काओ जमन मरन वड्डा वे छोड़ा बिनसै जग सवाई लभ तंदै माया जगत भुलाया काल खड़ा रूआई बाबा आवहु भाई हो गल मिलह मिल मिल देहे असीसा हे बाबा सचड़ा मेल ना चुकई प्रीतम किया देहे असीसा हे असीसा देव हो भगत करेव हो मिलिया का क्या मेलो एक भूले नाम हो थे हो थाम हो गुर शब्दी सच खेलो जम मार्ग नहीं जाना शब्द समाना जुग जुग साचै वेसे साजन सहन मिलो संजोगी गुर मिल खोले फासे बाबा नांगड़ा आया जग मह दुख सुख लेख लखाया लिखड़ा साहा ना टलै जिहड़ा पुरब कमाया बह साचै लिखिया अमृत बिखिया जित लाया तित लागा कामण यारी कामण पाई बहुरंगी गल तागा होछी मत भया मन होछा गुड़ सा मक्खी खाया ना मरजाद आया कल पीतर नांगो बंद चलाया बाबा रोवो जे किसै रोवना जानियड़ा बंद पठाया है लिखड़ा लेखना मेटिया दर हकारड़ा आया है हकारा आया जा किस पाया रुन्ने रोवन हारे पुत भाई पाती जे रोवह प्रीतम अत प्यारे भै रोवै गुणसार संभाले को मरे ना मोया नाले नानक जुग जुग जान सजाना रोवह सच संभाले वडहंस महला तीजा महला तीजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद प्रभ सचड़ा हर सलाही है कार्ज सब किश करने जोग सा धन रांडना कबहू बैसे ना कदे होवै सोग ना कदे होवै सोग अन दिन रस भोग सा धन महल समाणी जिन प्रियो जाता कर्म बधाता बोले अमृत बाणी गुणवंतिया गुणसार है अपने कंत संभाल है ना कदे लगै विजोगो सचड़ा पिर सलाही है सब किश करना जोगो सचड़ा साहिब शब्द पछाणी है आपे लए मलाई सा धन प्रिय कै रंग रत्ती विचों आप गवाई विचों आप गवाई फिर काल ना खाई गुरमुख एको जाता कामन इच पुन्नी अंतर भिन्नी मिलिया जग जीवन दाता शब्द रंग राती जोब नमाती फिर कै अंक समाए सचड़ा साहिब शब्द पछाणी है आपे लहे मलाए जिन्नी अपना कंत पछाणिया औतिन पूछो संता जाए आप छोड़ सेवा करी फिर सचड़ा मिले सहज सुपहाय फिर सच्चा मिले आए साच कमाए साच शब्द धन राती कदे ना रांड सदा सुहागण अंतर सहज समाधि फिर रहया परपूरे वेख हदूरे रंग माणे सहज सुपाय इन्नी अपना कंत पछाणिया हौ तिन पूछो संता जाय फिरों विचुनिया भी मिलह जे सतगुर लाग है साचे पाए सतगुर सदा दयाल है
अवगुण शब्द जलाए, अवगुण शब्द जलाए दूजा भाव गवाए, सच्चे ही सच राती सच्चा शब्द सदा सुख पाया, हम मैं गई परांति फिर निर्मायल सदा सुख दाता, नानक शब्द मलाए फिर हम छुनिया भी मिल है, जे सतगुर लागे।

जन्म गवायो रोवे अवगुण यारी झूठी फिर जग जीवन किसनो रोइये रोवे कंत वसारे सब जग आप उपायो आवन जान संसारी सो फिर सच्चा सद ही साचा है ना ओह मरे ना जाए भूली फिरे धन इणिया रंड बैठी दूजे पहाय रंड बैठी दूजे पाई माया मोहे दुख पाए आप कटे तन सीजे जो किश आया सब किश जासी दुख लागा पाए दूजे जम काल ना सूजे माया जग लूजे लभ लोभ चेत लाए।

पिर नाले, गुर प्रसादी साचा पिर मिले, अंतर सदा संभाले, फिर अंतर संभाले सदा है नाले, मन मुख जाता दूरे, इहो तन रुलै रलाया काम ना आया, जिन खसम ना जाता हदूरे, नानक सा तन मिले मलाई, फिर अंतर सदा संभाले, फिकरो वह पिरह विछुनिया।

पौड़ी तू आपे ही आप है, आप कारण किया, तू आपे आप निरंकार है, को अवर नाम।

सब आखो सतगुरु वाहो वाहो जिन दान हर नाम मुख दिया। सलोक महला तीजा भै विच सब आकार है निरपो हर जीओ सोए सतगुर सेवे हर मन वसै तिथे भौ कदे ना होए दुश्मन दुख तिसनो नेड़ ना आवै ओहे ना सकै कोई गुरमुख मन विचारिया जो तिस भावै सो होए नानक आपे ही पत रखसी कारज सवारे सोए महला तीजा एक सज्जन चले एक चल गए रहंदे भी फुन जाहे जिन्नी सतगुर ना सेवेओ ते आए गए पछताहे नानक सच रते से ना विछड़ सतगुर सेव समाहे पौड़ी तिस मिलिया सतगुर सज्जन है जिस अंतर हर गुणकारी तिस मिलिया सतगुर प्रीतम है जिन हम मैं विचों मारी सो सतगुर पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जप्यो हो संतो हो राम नाम भौजल बिख तारी गुरपूरै हर उपदेश।

काम क्रोध विनाश सतगुर का पहु छोड़िया मन हट काम ना आवे रास जमपुर बदे मारी है को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन जिना हर हर नाम दिरडाया सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो हो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया किस सतगुर की सब पगी पव हो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो हो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई

खमनाई विस्पे कै थाम हो गिरहो भला जिथ हो को वरसाय शब्द रत्ते तिन्ना सूजी पई दूजे भरम भलाय पया किरत कमावना कहना कछू ना जाए नानक ज्योति सुभावे।

ना हो गई अचिंत वत्सय मन आय अंतर तीर्थ ज्ञान है सतगुर दिया बुझाय मैल गई मन निर्मल हुआ अमृत सारे तीर्थ नहाय सज्जन मिले सज्जना सच्चा शब्द सुपहाय।

गुर कै शब्द अपार एह सज्जन मिले ना विछड़ है जे आप मेले करतार एक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया शब्द ना करह विचार विछड़िया का क्या विछड़ जिन्ना दूजे भाई प्यार मनमुख सेती दोस्ती थोड़िया दिन चार इस प्रीति टुटदी विलम ना होवे

मारी साप ना मरे त्यों गुरे कर्म कमाहे सतगुरु दाता सेवी शब्द वसै मन आए मन तन शीतल शांत होए कृष्णा अग्न बुझाए सुखा सिर सदा सुख होए जा विचों आप गवाए गुरमुख उदासी सो करे

नानक साई भली प्रीत जित साहिब सेती पात्र है पौड़ी। हर इको दाता सेवी है हर एक त्याई है हर इको दाता मंगी है मन चिंदिया पाई है। जे दूजे पासों मंगी है ता लाज मराई है। जिन सेवया तिन फल पाया तिस जन की सब भुख गवाई है। नानक तिन विकटों वारिया जिन अन दिन हिरदय हर नाम त्याई है।

साध ना आयु जिचर गुरमुख शब्द ना लागे सतगुरु सेवे नाम मन वसे विचों भ्रम पौ भागे जेहा सतगुरु नो जाने ते हो हुए ता सच नाम लिव लागे नानक नाम मिले वडियाई।

आई मनमुख घर हुंदी वत ना जाननी अंधे भौंक मुहे बिललाए महला तीजा कंचन काया निर्मली जो सच नाम सच लागी निर्मल ज्योत निरंजन पाया गुरमुख भ्रम पौ भागी नानक गुरमुख सदा सुख पावे अन दिन हर बैरागी पौड़ी ते गुरसिख धन धन है जिनी गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी गुर सतगुर नाम दृढ़ आया तिन हूं मैं दुखदा भन्नी बिन हर नावे को मित्र नाही विचार दिता हर जनी जिन्ना गुरसिखा को हर संतुष्ट है तिन्नी सतगुर की गल मन्नी जो गुरमुख नाम के आए दे तिन चढ़ी चवगण वन्नी सलोक महला तीजा मनमुख कायर रूप है बिन नावै नक नाही अन दिन धंधे व्यापिया सुपने भी सुख नाही नानक गुरमुख होवै है ता उबर है नाही ता बदे दुख सहाय महला तीजा गुरमुख सदा दर सोहने गुर का शब्द कमाहे अंतर शांत सदा सुख दर सच्चै सोभा पाए नानक गुरमुख हर नाम पाया तैजे सच समाए पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई सलोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाव उस नु सुख ना उपजै भावे सौ गेड़ा आवो जाओ नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे स्यों लिवलाओ महला तीजा ए मन ऐसा सतगुरु खोज लहो जित सेवे जन्म मरण दुख जाए सहसा मूल ना होवे हूं मैं शब्द जलाए कूड़ै की पाल विचों निकले सच वसे मन आए अंतर शांत मन सुख होए सच संयम कार कमाए नानक पूरे

और पूर्व लिखे आस पौड़ी, हर नाम हमारा भोजन छत्ती प्रकार, जित खाया हमको तृप्त पई, हर नाम हमारा पहनन, जित फिर नंगे ना होवे, और पहनन की हमारी सर्द गई, हर नाम हमारा वणज

मन निर्मल होवे अज्ञान अंधेरा जाए, नाम रतन घर प्रगट होआ, नानक सहज समाए महला तीजा, शब्द साधना आयु नाम ना लगू प्यार, रसना फिक्का बोलना नित नित होए खुआर, नानक किरत पै कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी, धन धन सत पुरख सत गुरु हमारा, जित मिले हमको शांत आई, धन धन सत पुरख सत गुरु हमारा, जित मिले हम हर भगत पाई, धन धन हर भगत सत गुरु हमारा, जिसकी सेवा ते हम हर नाम लिवलाई, धन धन हर ज्ञानी सत गुरु हमारा, जिन वैरी मित्र हम को सब सम दृष्ट दिखाई, धन धन सत गुरु मित्र हमारा, जिन हर नाम स्यों हमारी प्रीत बनाई, श्लोक महला पहला कर ही मुंद विदेश पेर, नित झूरे संभाले मिल

पौड़ी जिन उपाए जी तिन हर राखिया अमृत सच्चा नाउ भोजन चाखिया तिपत रहे आघाए मिटी पपाखिया सब अंदर एक वरत है तिन्हें विरले लाखिया जन नानक भय निहाल प्रभ की पाखिया श्लोक महला तीजा सतगुर नो सब को वेखदा जेता जगत संसार डिठे मुक्त ना हो गई जिचर शब्द ना करे विचार हम मैं मैल ना चुकई नाम ना लगे प्यार एक आपे बख्श मलायन डुबदा ताज विकार नानक एक दर्शन देख मर मिले सतगुर हेत प्यार महला तीजा सतगुरु ना सेवे मूर्ख अंध गवार दूजा

0: है, मन हर सरनी पढ़ रही है।
1: हर दिन कोई मार जीवाल ना सके,
0: मन हुए निचिंद निसल हुए रही है। उठदियां बहदियां सुतियां सदा सदा हर नाम ते आई है।

अत भाई हुक्म भया बाहर घर छोड़िया हिन मह भई पराई नाम दान इशनान ना मन मुख तित तन धूड़ तुमाई मन मानिया नाम सिखाई पाए परहु गुर कै बलिहार जिन साची बूझ बुझाई रहा जग स्यों झूठ प्रीत मन भेदया जन स्यों वाद रचाई माया मगन एहन समग जो है नाम ना लेवै मरै बिख खाई गंदन वहन रत्ता हितकारी शब्दै सुरत ना आई रंग ना राता रस नहीं भेदया मनमुख पत गुआई साध सभा मह सहज ना चाखिया

इकत रूप फिर परछन्न कोई ना किस ही जेहा अंडज जेरज उत्पुज सेतज तेरे कीते जनता एक पुरब मैं तेरा देखिया।

जुगत सबाय सतगुर सेव पदार्थ पाव है छूट है शब्द कमाई सूचै भांडै साच समावै विरले सूचाचारी तंतै कौ परम तंत मलाया।

हारी जियो सतगुर बंधन तोड़ नरारे बहुड़ ना गर्भ मजारी जियो नानक ज्ञान रतन परगासिया हर मन वसिया निरंकारी जियो सोठ महला पहला जिस जल निद कारण तुम जागे आए सो अमृत गुर पाही जियो छोड़ो हो वेस भेख चतराई दुबदा इहो फल नाही जियो मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे है।

कियो, हर अफसर की सार ना जाने, फिर कीच बड़ाही जियो। अंतर मैल लोभ बहु झूठे, बाहर नावो हो काही जियो। निर्मल नाम जपो हो सद गुरमुख, अंतर की गत ताही जियो। पर हर लोभ निंदा कूड त्यागो हो, सच गुर बचनी फल पाही जियो। ज्यों भावै त्यों राखो हो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। सोठ महला पहला पंच पदे, अपना घर मूसत राख ना साक है। की पर घर जोहन लागा, घर दर राख है जे रस चाख है। जो गुरमुख सेवक लागा, मन रे समझ कमन मत लागा। नाम विसार अन रस लोभाने, फिर पछताहे अभागा रहाव। आवत को हरख जात को रोवह, एह दुख सुख नाले लागा। आपे दुख सुख भोग पगावै, गुरमुख सो अनरागा। हर रस ऊपर अवर क्या कही है, जिन पिया सो तृप्तागा। माया मोहित जिन एहो रस खोया,

गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलतो ठाक रखो घर अपने गुर मिले एह मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो पीवो हो अपेओ परम सुख पाईए निज करवासा होई जियो जन्म मरण भव भंजन गाईए।

गुर साखी अंतर जागी ता चंचल मत त्यागी गुर साखी का उजियारा ता मिटिया सगल अंधियारा गुर चरणी मन लागा ता जमका मार्ग भागा भै विच निरभउ पाया ता सहजै कै घर आया पणत नानक बूझै को बिचारी इस जग मह करनी सारी करनी कीरत होई जा आपे मिलिया सोई सोठ महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवक सेव करह सब तेरी जिन शब्द साद आया गुर कृपा ते निर्मल होआ जिन विचों आप गुआया अन दिन गुण गावह नित साचे गुर कै शब्द सुहाया।

रहाव, जागत रहे तिनी प्रभ पाया, छबदे हूं मैं मारी, गिरही मह सदा हर जन उदासी, ज्ञान तत बीचारी, सतगुर सेव सदा सुख पाया, हर राखिया उरतारी, एहु मनुआ दह दिस धामदा, दूजै भाई खुआया, मनमुख मुगद हर नाम।

दरगाह मिलै सजाई रहाउ। इस देही अंदर पांच चोर वसह, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। अमृत लूटह मनमुख नहीं बूझह।

कर कर विगुटे केहो चलै ना चल दिया नाल गुरमुख होवै सो नाम त्यावै सदा हर नाम संभाल सच्ची बाणी हर गुण गावै नदरी नदर निहाल सतगुर ज्ञान सदा घट चान अमर सिर बादशाह आन दिन भगत करह दिन राती राम नाम सच लाहा नानक राम नाम निस्तारा शब्द रते हर पाहा सूरठ महला तीजा दासन दास होवै तां हर पाई विचों आप गवाई भगता का कारज हर आनंद है अन दिन हर गुण गाई शब्द रते सदा एक रंगी हर सिओ रहे समाई हर जियो साची नदर तुम्हारी अपनिया दासा नू किरपा कर प्यारी राखो हो पैज हमारी रहाओ शब्द सलाही सदा हो जीवा गुरमती भव भागा मेरा प्रभ साचा अत सवाल्यू।

आया पूरे गुरु की सेवा कीनी अचिंत हर मन वसाया मन तन निर्मल सदा सुख अंतर विचों भरम चुकाया हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा ओ पाए गुर विचारा हर कै रंग राता शब्दे माता हम मैं तजे विकारा नानक नाम रता एक रंगी शब्द सवारन हारा सोठ महला तीजा हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारी जिचर काटे अंतर है सासा एक पाल खिन बिसर है तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूड मुगद सदा से पाई गुर कै शब्द परगास।

हाव हम शब्द मोए शब्द मार जवाले पाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल हुआ हर वस्या मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता हर सियों रहे आसमाई शब्द ना जान है से अन्ने बोले से कित आए संसारा हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम है वारो वारा बिस्ता के कीड़े बिस्ता माहि समाणी मान मुख मुग्ध गोबारा आपे कर वेख मार्ग लाए भाई किस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई ना मेट भाई करता करे सो होई नानक नाम वस्या मन अंतर भाई।

करनाई अपनी नदर करे पत राखै हर नामो दे वड्याई रहाउ पूरे गुरते आप पछाता शब्द सच्चा विचारा हृदय जग जीवन सद वस्या अज काम क्रोध अहंकारा

पछाता सफल जन्म जागे आया हर रस चाख सदा मन तृप्तिया गुण गावे गुणी अगाया कमल प्रगास सदा रंग राता अनहद शब्द बजाया तन मन निर्मल निर्मल बाणी सच्चे सच समाया राम नाम की गत कोए ना बूझे गुरमत हृदय समाई गुरमुख होवे सो मग पछाणे।

तेजन सोहन दर साचे पत पाई सोठ महला तीजा दुतुके सतगुर मिले उल्टी पई पाई जीवत मरे ता बूझ पाए सो गुरु सो सिख है पाई जिस ज्योति ज्योत मलाए मन रे हर हर सेती लिव लाए मन हर जप मीठा लागे पाई गुरमुख पाए हर थाए रहाओ बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई मनमुख दूजै पाए तोह कुटह मनमुख कर्म करह पाई पल्लै किशु ना पाए गुर मिलै नाम मन रविया पाई साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवै पाई गुर कै हित अपार आया सो परवान है पाई ये गुर सेवा चित लाए नानक नाम हर पाई है पाई गुर

तेरा मन वसै पाई सदा हर के गुण गाय रहाऊ नामे ते सब उपजे पाई नाए विसरे मर जाए अज्ञानी जगत अंध है पाई सूते गए मोहाए गुरमुख जागे ते उभरे पाई भवजल पार उतार जग मैं लाहा हर नाम है पाई हिरदय रखिया उरतार गुर सरनाई उभरे पाई राम नाम लिवलाए नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई जित लग पार जन पाए सोठ महला तीजा घर पहला सतगुर सुख सागर जागे अंतर होर थै सुख नाई हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया मर जन मैं रोवै ताही प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

वावह हर रस साधना आया संध्या तर्पण करह गायत्री बिन बूझे दुख पाया सतगुर सेवे सो वड भागी जिसनो आप मलाई हर रस पी जन सदा तृप्तासे विचों आप गवाई एहो जग अंधा सब अंध कमावे बिन गुर मग ना पाई नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे घर अंदर सच पाए सोठ महला तीजा बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते शब्दे देह बुझाई हर जियो कृपा करो तुम प्यारे सतगुरु दाता मेल मलाव हो हर नाम देव हो आधारे रहाओ मनसा मार दुबदा सहज सुमानी पाया नाम अपारा हर रस चाख मन निर्मल होआ गिल बिख काटन हारा शब्द मर हो फिर जीव हो सद ही ता फिर मरन ना होई अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावे कोई दात दात रखी हाथ अपने जिस पावे तिस देई नानक नाम रते सुख पाया दरगाह जापह से सोठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजे गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या नामे नाम समाए।

आपे पत्तल पातनी प्यारा, आपे पार लंगा, आपे सागर बोहे था प्यारा, गुर खेवट आप चला, आपे ही चढ़ लंगदा प्यारा, कर चोज वेखे पातशाह, आपे आप दयाल है प्यारा, जन नानक बख्श मला, सोरठ महला चौथा चौथा, आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज, आपे खंड आपे सब लोए, आपे सूत आपे बहुमणिया।

आप लखावे सोए, आपे गहर गंभीर है प्यारा, तिस जेवड अवर ना कोई, सब घट आपे भोग वै प्यारा, विच नारी पुरख सब सोए, नानक गुप्त वरतदा प्यारा, गुरमुख प्रगट होए, सोठ महला चौथा, आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापै, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेख प्रभ आपै, आपे वण तिण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापै, जप मन हर हर नाम रस त्रापै, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापै रहाओ, आपे तीर्थ तुलहड़ा प्यारा, आप तरै प्रभ आपै, आपे जाल बताएं दा प्यारा, सब जग मछली हर आपै,

प्यारी ज्यों हर प्रभ मेरे पाया आपे जंती जंत है प्यारा जन नानक वजह वजाया सोठ महला चौथा

आप निमाणिया मान आप दया कर रखदा प्यारा आपे सुगड़ सुजान मेरे मन जप राम नाम निशान सत संगत मिल त्याए तू हर हर

जन नानक सद कुर्बान झूठ महला चौथा आपे सेवा लाए दा प्यारा आपे भगत उमाहा।

प्यारी जप नानक भगत समाहा सोठ महला चौथा दो तुके अनक जन्म विछड़े दुख पाया मन मुख कर्म करे अहंकारी साधु पर सत ही प्रभ पाया गोविंद शरण तमारी गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी जब सत संग भए साधु जन हिरदय मिलया शांत मरारी रहाओ तू हिरदय गुपत वस है दिन राती तेरा भाव ना बुझ गवारी सतगुरु पुरख मिलया प्रभ प्रगटिया गुण गावे गुण विचारी गुरमुख प्रगास भया शांत आई दुरमत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म कीन सुख पाया सत संगत पुरख तुमारी पुरख है पुरख मिलया गुर पाया जिनको कृपा भई तुमारी नानक अतुल सहज सुख पाया अन दिन जागत रह बनवारी सोरठ महला चौथा हर स्यों प्रीत अंतर मन भेदिया।

एक कणी सिमरत सास्त सोदिया भाई बिन सतगुर भरम ना जाय अनक कर्म कर थाकिया भाई फिर बंधन पाए चारे कुंडा सोदिया भाई बिन सतगुर नाही जाय वडभागी गुर पाया भाई हर हर नाम त्याय सच सदा है निर्मला पहाई निर्मल साची सोए नदर करे जिस अपनी पाई तिस प्राप्त होए कोट मदे जन पाईए पहाई बिरला कोई कोई नानक रत्ता सच नाम पहाई सुन मन तन निर्मल होए सोट महला पंजवा दो तुके जौ लो पाओ अपाओ इह मानै तौलो मिलन दुराई आन आप।

रहाउ। कोट पराध मिट है जन सेवा, हर कीर्तन रस गाई, इहां सुख आगे मुख उजल, जन का संग वड भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कही है। अगम अगोचर सद अविनाशी, शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ पराधी, ओट संतन की आही। बूढ़त मोह ग्रह अंध कूप में, नानक लेहो निवाही। सोठ महला पंजवा कर पहला, जा कै हिरदय वसया तू करते, ताकी तै आस पुजाई। दास अपने कौ तू विसरह नाही, चरण धूर मन पाई। तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निदान सुख दाते स्वामी। सब ते ऊच बढ़ाई रहाओ, सो सो कर्म करत है प्राणी। जैसी तुम लिख पाई, सेवक को तुम सेवा दीनी। दर्श

साध शर्म छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो परम पलावा कहियत तिन मह उर्जियो सगल संसारा पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात एहो खसम का किया जाको कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत नाउ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सब ना करत उदारा कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया एहो पूरन तत बिचारा सोठ महला पंजवा खोजत खोज बिचारेउ राम नाम तत सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवो हो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी रहाओ मुकत भुगत जुगत सच पाईए सर्ब सुखा का दाता अपने दास कहो भगत दान देवे पूर्ण पुरख विधाता सरवणी सुनिए रसना गाईए हिरदय त्याईए सोई करण कारण समर्थ स्वामी जाते बिरथा ना कोई वड्डे भाग रतन जन्म पाए।

पंजवा कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाथे प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा प्रभ बाणी शब्द सुभाख्या गावहो सुनहो पढ़हो नित भाई गुरपूरै तू राख्या रहाउ साचा साहिब अमित वडाई भगत वच्छल दयाला संतां की पैज रखदा आया आद बिरद प्रतपाला हरे अमृत नाम भोजन नित पुंचो हो सर्ब वेला मुख पावो हो जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोबिंद नित गावो हो।

जोगे अंतर गुरु नानक की वडियाई। चौथ महला पंजवा घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी।

करै सो भला मनाइए सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै इयों दर्शन हर जियो पाइय भयो अनग्रहो प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर कृपा तारी सब अकुल निरंजन दीठा सोरठ महला पंजवा कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जिया का दातारे प्रतपालै नित सार संभालै एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परयो रामदास रहाउ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्ब कटां पर पूरी रे पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हों मित कर वरनो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुरे अपने मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराती तरियारे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परियारी सोठ महला पंजवा जिन्ना बात को बहुत अंदेसरू ए मिटे सब गया सहज सैन अर सुखमन नारी ऊंद कमल बिगसया देखो अचरज भया जेहे ठाकुर को सुनत अगाध बोध सो हृदय गुर दया रहाउ जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक भया करह बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी सरनया जह भंडार गोविंद का खुलिया जेहे प्राप्त ते लया एक रतन मोह को गुर दीना मेरा मन तन शीतल थिया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ भगत भंडार गुर नानक कौ सौंपे फिर लेखा मूल ना लया सोठ महला पंजवा चरण कमल स्यों जाका मन लीना से जन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस हृदय ना वस्या ते नर तृष्ण त्रिखाई हर अराधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाउ जेह जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिये प्रभ सरने जेह नर विसरिया पुरख बधाता ते दुखिया मह गणने जेह गुरमान प्रभु लिवलाई ते महा आनंद रस करिया जेह प्रभु बिसार गुर ते बेमुखाई ते नरक घोर मह परिया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय भये मगन चरनारा सोठ महला पंजवा राजन मह राजा उरझायो मानन मह अभमानी लोभन मह लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को इही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो भूमन भूम प्यारी हीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मह विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पाव है जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गाव है जैसी भूख तैसी का पूरन सगल कटां का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोठ महला पंजवा हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूरख

साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरवाना, तुम करहो भला हम भलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे कहो नानक हम इह हवाला, राख संतन कै पाछै।

संतन स्यों हमलाहा खाटिया हर भगत परे पंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहां करे गू जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद भये सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हर स्यों मन मानिया रंग रत्ते बिस्मादी।

तव आनंद मंगल सुख पाई है, काल ना भाने अंतर भेद जाने, ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ, अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी।

या आंद मंगल विश्रामा मन बाचत फल मिले अचिंता पूर्ण हो कामा इहां सुख आगे मुखी उज्जल मिट गए आवन जाने निरपौ भये हिरदय नाम वस्या अपने सतगुर कै मन पानी उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम भागा कहो नानक ताके पूर करम्मा जाका गुर चरनी मन लागा चौथ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कशु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याईए सिमरहो हर हर नाम परानी बिन सह काची दे अज्ञानी रहाउ मृग तृष्णार सुपन मनोरथ ताकी कछ ना वडाई राम भजन बिन काम ना आवस संग ना काहू जाई हौ हौ करत बेहाय।

पूर्ण अविनाशी काम क्रोध बिख जारे महाबिखम अगन को सागर साधु संग उधारे पूरा गुर मेत्यो परम अंधेरा पाज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया तां की पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काती जम की पासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भये बिगासा सोठ महला पंजवा करन करावन हार प्रभदाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला तो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बढ़ाई रहा गुर की सरन पए पै नास्ती साची दरगाह मानी गुण गावत आराध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभे अपने जिन पूर्ण पैज सुवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभे अपना अंत सेती घर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहलाती दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर ध्याया

मांगै तब कौन पड़ता तेरा ढाकै। दीन दयाल पूर्ण दुख भंजन तुम बिन ओट ना काई। काढ़ लेहो संसार सागर बह नानक प्रभ सरनाई। सोट महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सहाई। कथा कीर्तन सुखदाई गुरपुरे की बाणी। जप आनंद करहो नित प्राणी हर साचा सिमरहो पाई। साध संग सदा सुख पाई है।

जीवै बिघन बनासन सब दुख नासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाए हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ हुआ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिन सह मोह मेरा अर तेरा बिन सह अपनी धारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हो मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु दुआरी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी सोठ महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी कट कट माधो जिया संतो हो कट कट रहे समाहेउ पूर्ण पूर रहे सर्ब मह जल थलर मैया आहेउ रहाउ गुण निदान नानक जस गावै सतगुर भरम चुकायु सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहे समायु सूरठ महला पंजवा जा कै सिमरन होए आनंदा बिनसै जन्म मरण भय दुखी चार पदार्थ नव निद पावह बहुर ना तृष्णा भुखी जाको नाम लैत तू सुखी सास सास त्याव हो ठाकुर कौ मन तन जी अरे मुखी रहाउ शांत पावह होवह मन शीतल अग्न ना अंतर तुखी

गुरपूरा भेटियो वडभागी, जन नानक कतह ना धावहु, सूरत महला पंजवा, जाकै सिमरन सब कछ पाईऐ, बिरथी काल न जाई, तिस प्रभ त्याग अवर कत राचुहु, जो सब मह रहे आसमाई, हर हर सिमरहो संत गोपाला, साध संग मिल नाम त्यावहु,

प्रभ तुमरे बिसरत जगत जीवन कैसे पावे। सोठ महला पंजवा अबनासी जीयन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निधान भगतन कौ बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पया सुख पाई है बहुड़ दुख ना होई रहाओ। वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिन की धूर नानक दास बांचे जिन हर नाम हृदय परोई। तोरठ महला पंजवा जन्म जन्म के दुख निवारे सूका मन साधारे दर्शन भेटत होत निहाला हर का नाम बीचारे। मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवे काटे जम की फंदा रहाउ। समरथ पुरख पूर्ण बेधाते आपे करने हारा अपना दास हर आप उभारिया नानक नाम अधारा। सोठ महला पंजवा अंतर की गत तुम ही जानी तुझ ही पाहे नबेरो बख्श लहो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेर।

गुनी गहेरो काट सिलक कीनो अपनो दासरो तौ नानक कहा निहोरो चोठ महला पंजवा पये कृपाल गुरु गोविंदा सगल मनोरथ पाए अस्थिर पये लाग हर चरणी गोविंद के गुण गाय फलो समूरत पूरा शांत सहज आनंद नाम जप वाजे अनहद तूरा रहाओ मिले स्वामी प्रीतम अपने कर मंदर सुखदाई हर नाम निदान नानक जन पाया तगली इच्छ पुजाई चोट महला पंजवा गुर के चरण बसे रिद भीतर शुभ लखन प्रभ कीने।

संत प्रभ सगल उधारी दर्शन देखण हारी गुरपुरे की अचरज वडियाई नानक सद बलिहारी चौठ महला पंजवा संचन करो नाम धन निर्मल थाती अगम अपार बिलस बनोद आनंद सुख माणु खाए जीव हो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो।

नानक गुर पायो वड भागी तिस जे वड़े अवन ना कोई टूठ महला पंजवा सूख मंगल कल्याण सहज धुन प्रभ के चरण निहारिया राखन हार है राखियो बारिक।

तहज तुम उपजी रोगा घाण मटाई रहा क्या गुण तेरे आख बखाना कीमत कहण ना जाई नानक भगत पए अबनासी अपना प्रभ भया सहाई।

पावों अपने खसम भरोसा कहो नानक गुरु पूरा भेटियो मिटियो सगल अंदेसा चौठ महला पंजवां सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुरबचनी मन इच्छे फल पाया मेरा गुर पूरा सुखदाता करण कारण समरथ स्वामी पूर्ण पुरख बधाता रहाउ आनंद बिनोद मंगल गुण गावहु गुरु नानक पए दयाला जय जयकार पए जग भीतर हुआ पार ब्रह्म रखवाला।

गवाया भाई ठांड पई संसार अपने जी जनते आपे राखे जमह कियो हकतार हर के चरण हृदय उर तार सदा सदा प्रभ सिमरी है भाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ तिसकी सरणी उबरै भाई जिन रखिया सब कोई करन कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याई है भाई मन तन शीतल होए चौथ महला पंजवा संतो हो हर हर नाम त्याय सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया।

पूरी सब राखी हुए सर्व दयाल रहाउ। अन दिन नानक नाम त्याए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे ज्यों बारिक पित माता। सूरठ महला पंजवां घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिकदारो नह पति आया। उमराव हो आग्या तेरा मिल राजन रामन बेरा। अब ढूंढन कतो ना जाई गोविंद भेटे।

सर्ब थान को राजा तह अनहद शब्द अगाजा विस पह क्या चतराई मिल नानक आप गुआई चौठ महला पंजवा हिरदय नाम वसायो हो घर बैठे गुरु त्यायो हो गुरपूरे सच कहया सो सुख साचा लहया अपना होयो गुर मेहरवाना आनंद सुख कल्याण मंगल सियो घर आए कर इशनाना रहाओ साची गुर वडियाई ताकी कीमत कहन ना जाई सिर शाह पातशाह गुर भेटत मन ओ माहा सगल पराशत लाथे मिल साध संगत कै साथी।

सारी प्रभु पूरी लोच हमारी कर स्नान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर त्याई है अन दिन सो कृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़ पा

जी जंत सब पए पवित्रा सतगुर की सच साखी बिघन बनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दिरड़ाया होए पाप पए सब पावन जन नानक सुख घर आया सोरठ महला पंजवां साहेब गुनी गहेरा घर लश्कर सब तेरा रखवाले गुरु गोपाला सब जी पए दयाला जापे।

धारी तां गत पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बीना रहाओ हर चरण की ओत सतानी सब चूकी कान लुकानी जग जीवन दाता पाया हर रसक रसक।

रखवाला कर कृपा अपनी कर राखी मात पिता ज्यों पाला रहाऊ वडभागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मटाया

पूरी नावै अपना नाम आपे दिया प्रभ करन हार रख लिया हर दर्शन प्राण आधारा एहो पूर्ण बिमल बिचारा कर कृपा अंतर जामी दास नानक सरन स्वामी सोठ महला पंजवा गुरपुरै चरनी लाया हर

सदा सुपहाई मन चिंदे सगले फल पावहु जी कै संग सहाई रहाउ नारायण प्राण आधारा।

प्रभराव रहे आपर पूरी हेम कुशल पया इस नाना पार ब्रह्म बितो कुरबाना गुर के चरण कवल रिद तारी विघ्न न लागे तिलका कोई कार्य सगल सवारी रहाउ मिल साधु दुर्मत खोए पतत पनीत सब होए।

मिल त्याई है मन पाछत फल पाई गुर पूरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम त्याया।

सर्व गुणा सुखदायो मंदर चरके पंथ निहारो नैन नीर भर आयो हाँ हाँ पीत भयो है बीचो सुनत दे।

सब बिद जाने ता किस पह आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैजर खाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है।

हर हर नाम अवखद मुख पाया गन नानक सुख बसंती चौरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ भये आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप पौ जल पार उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है

प्रभु स्वामी पात मत कीनी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी बांचो संता तूड़ी सोठ महला पंजवा गुरपुरा नमस्कारी प्रभ सबे काज सवारी हरे अपनी कृपा तारी प्रभ पूरन पैज सवारी अपने दास को पयो सहाई सगल

सब कुशल खेम प्रभ धारी, सही सलामत सब थोक उबारी, गुर का शब्द विचारी रहाओ, साध संग मल लाथी, पार ब्रह्म भयो साथी, नानक नाम त्याया, आद पुरख प्रभ पाया, चोठ महला पंजवा, जित पार ब्रह्म चित आया, सो कर दइए वसाया, सुख सागर गुर पाया, ता सह

प्रभु की अकथ कहानी जन बोले अमृत बाणी नानक दास बखानी गुरपुरे ते जानी सोठ महला पंजवां आज।

मिल साध संग हर प्याया, आठ पहर अरादियो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाऊ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर्श

पास अपने की कार जे आप सवारी रहाओ मेरा प्रभ पर उपकारी पूर्ण कल दिन धारी नानक सरनी आया मन चिंदिया फल पाया सोठ महला पंजवां।

हर हर हर अरादु हर अराद सबो किस पाई कार्य सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी तू पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया इन सर्व सुखा फल पाया सोठ महला पंजवा परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना आनंद करह नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी संतो सुख हो आ सब थाई पार

सोई संत गुण गावे, प्रेम भगतता का मन लीना, पार ब्रह्म मन पावे, आठ पहर हर का जस रवना।

ता जो सिवरै तिसकी गत हुए उधर है सगले कोटा रहाउ संत संग जस गाया एहु पूरन हर तन पाया कहो नानक आप मटाया सब पार ब्रह्म।

नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय त्याई कर सही सलामत आई संतोख भया संसार।

हरे सगले दास को सुमत दीती रहाओ प्रव सगले तान वसाए सुख शांत फिर आए नानक प्रव सरनाए दिन सगले रोग मिटाए सोठ महला पंजवा सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकी सरनी पाईए दर्शन भेट होते आनंदा दुख गया हर गाइए हर रस पीवो हो पाई नाम जप हो नामो अराध हो गुरपुरे की सरनाई रहा तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन पाई।

गोविंद सद त्याई है, सगल कलेश मिट है इस तन ते, मन चिंदिया फल पाई है रहाओ। जी जंत जाके सब कीने, प्रभु उचा अगम अपारा, साध संग नानक नाम ते आया, मुख उजल पए दरबारा, सोरठ महला

सिमर माधो होहे पतत पनीत। काल बयाल ज्यों परयो डोले मुख पसारे मीत। आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ राखो।

मन की मन ही माहे रही, ना हर भजे ना तीरथ सेवे, चोटी काल गही रहाओ। दारा मीत पूत रथ संपत, धन पूरन सब मही, अवर सगल मिथ्या ए जानो, भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जोग हारियो,

रहाउ अटल पयो त्रू जा कह सिमरन हर निरपै पद पाया दुख हरता एह बिद को स्वामी तैं काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निधि।

जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाव। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करे। कौन नाम गुर जा कै सिमरै, भव सागर कहो।

बिखियन को तावत केहे बिदरू को ताहि रहाव। बेद प्राण सिमरत के मत सुन निमख नाही ए बसावे। पर धन पर दारा स्यों रचियो बिरथा जन्म सिरावे। मद माया कै भयो बावरू सूजत नह कश ज्ञाना घट ही भीतर बस्त निरंजन ता को मर्म ना जाना। जब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जब की फांसी। सोरठ महला नवा रे नार यह साची जी तार सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार तैसे ही एह सुख माया के उर्जे हो कहां गवार अजहू।

पूत संबंधी सगरे तन स्यों लागे जब ही निर्तन देखो नर कौ संग शाड सब भागे कहो कहा या मन बौरे को इनस्यों ने हो लगायो दीना नाथ सकल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यो भयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो नानक लाज।

तू ठह लागे जन्मे अकारत थोयो कर पर पंच उदर निज पोखयो पश की न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्ज रहे हो बिखियन संग बौरा नाम रतन बिसराना रहे हो अचेत ना चेते हो गोविंद बिरथा औद सरानी कहो नानक हर बिरद पछानो।

हरख सोग ते रह नियारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्यागे जग ते रह निरासा काम क्रोध जेह परसै नाहन तेह घट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जेह नर को कीनी तेह एह जुगत पछानी नानक ली।

बिंद सुख वास्ती नाम वसै सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राती जल बूजी तुझ है बुझाई आस निरास रह बैरागी

मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख दे वडियाई अपर अपार अगम अगोचर कहने कीम ना पाई सुन संवाद महा परमार्थ तीन पवन पत नामंग मस्त कलेख जिया जग जोनी सिर सिर लेख सहामंग कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ामंग मन मुख झूठ लह पै मान आपे ज्ञान अगामंग जिन चाखिया से साध जानन ज्यों गुंगे मिठियाई अकथ का क्या कथिए भाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत ना काई ज्यों चलाए त्यों चाल है भाई होर क्या को करे चतराई एक भरम भला एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुक्म चलावन हारा सेवा करी जे कछ हो अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुरु।

पुरतार सोरठ महला पहला पहला दुतुकी तू गुण गातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होय हम अपराधी निर्गुणे पाई।

पी पाखंडिया भाई मन तन नाम वसेख रहाउ बिख माया चित मोहया भाई चतराई पथ खोय चित मह ठाकुर सच वसै भाई जे गुर ज्ञान समोय रूड़ो रूड़ो आखिए भाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर सिंह बैरागी है भाई दर घर साच अपूल पाताली आकाश तू भाई धर कर तू गुण ज्ञान गुर मिले सुख पाया भाई चूका मनहु गुमान जल मल काया माजी है भाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाइए भाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजी है भाई क्या मांगो क्या दे पाहन नीर पखाली है भाई जल मैं बूढ़ है ते गुर बिन अलख ना लखी है भाई जग बूढ़ पत खोए मेरे ठाकुर हाथ वडाइया भाई जय भावे तै दे बैयर बोले मीठली भाई साच कह पिर पाए बिरह बेदी सच वसी भाई अदक रही हर नाय सब को आखे अपना भाई।

गुरमुख हृदय शब्द ना भेजो, हर नाम न लागा पाओ। कूड़े कपट पाज लह जासी, मन मुख फीका अलाओ। भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी,

कर पाती रहे हो, नग्न फिरे हो बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो, दुबदा छुटके नाही, मन कामना तीरथ जाए बस्यो, सिर करवत तराई, मन की मैल ना उतरे एह बिद, जे

कहो नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन।

ओरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन जीवै सच्चा सोए ससुरै पेयै पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावै पिर संग सदा शिंगारी नाओ मन कदे

कर्म मणि सब सच महला चौथा सूरठ ताम स्वामणि जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सत गुर नाम दृढ़ाया मन अनत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सत गुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे शिष्ट करता सिर जनहारिया तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया दाता करता आप आप भोगना हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हौ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया सलोक महला तीजा हौ मैं जल ते जल मोए भ्रम आए दूजै पाए पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए एहो जग जलता नदरी आया गुर कै शब्द सुपाए शब्द रते से सीतल पए नानक सच कमाए महला तीजा सफलो सतगुर से।

पुरख सुजान कुल उधारी अपना सोजन होवे परवान गुरमुख मोए जीवन दे परवान है मनमुख जन्म मराहे नानक मोए ना आखिए जे गुर कै शब्द समाहे पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम ते आई है सत संगत साधु लग

जे गुरु समझाई है सलोक महला तीजा पूर्व लिखिया कमावना जे करता है आप लिखिया आस मोहठ गौली पाई।

वे सही चुक गया वे सास नानक गुरमुखानु सुख अगला जिन्ना अंतर नाम निवास महला तीजा से सहन से सजना ये गुरमुख मिल है सुपाय सतगुर का पाना अन दिन कर है से सच रहे समाय दूजे पाए लगे सजन ना आखी है जे अवमान कर है वेकार मन मुख आप स्वार्थी कार्ज ना सकह सवार नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुदे आपे जगते अपाए कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हों मैं लेखा मंगी है फिर आवे जाया जिन्ना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा कुमाया।

जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया तंदा करतिया निफल जन्म गवाया सुख दाता मन ना वसाया नानक नाम तिना को मिलया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा घर ही मह अमृत भरपूर है मन मुखा साधना पाया ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने भ्रम दा भरम भुलाया अमृत ताज बिक संग्रह करत आप खुआया गुरमुख विरले सोजी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया तन मन सीतल होया

बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया। पौड़ी सो हर पुरख अगम है कहो कित बिद पाइये। तिस रूप नारेख अदृष्ट कहो जन क्यों ते आइये। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाइये। जिसे आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइये। गुर पूरै वेखा लिया गुर सेवा पाइये। श्लोक महला तीजा ज्यों तन कोलू पीड़िए। रतना पूरी दे जियो वंजे चौखनिए। सच्चे संदड़े ने नानक मेल ना चुकई। राती अतै दे महला तीजा सज्जन मैंडा रंगला। रंग लाए मन ले ज्यों मजीठे कपड़े रंगे पी पाहे। नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के। पौड़ी हरे आप वरतै आप हरे आप बुलाए दा। हरे आपे सिठ सवार सिर तंदे लाए दा। इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा। इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा। जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाइंदा। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है।

बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रह समाए। इस जग में नाम अलब है गुरमुख वसै मन आए। नानक जो गुर सेव है अपना हों तिन बलिहार जाओ। महला तीजा मनमुख मन अजित है दूजे लगे जाए। तिसनु सुख सुपने नहीं दुखे दुख व्याए। कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाद लगाए। एहो मन वस न आवे थके कर्म कमाए। भेख धारी भेख कर थके हट तीरथ नहाए। मन की सार ना जाननी हों मैं परम पलाए। गुर प्रसादी भव पया बड़ भाग वस्या मन आए। पै पय मन वस हुआ हों मैं शब्द जलाए। सच रत्ते से निर्मले ज्योति ज्योत मलाए। सतगुर मिले नाउ पाया नानक सुख समाए। पौड़ी।

पकड़ चलाया काल ता खरा ड्रामना ओ वेला हाथ ना आवे फिर पछतावना। श्लोक महला तीजा। सतगुर तेजो मोह फिरे से बत्ते दुख सहाय

नानक नगरी बख्शले शब्दे मेल मलाहे महला तीजा। जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाउ, ज्यों छुट्टड़ घर घर फिरे दोह चारन बदनाउ। नानक गुरमुख बख्शी है जे सतगुर मेल मलाओ पौड़ी। जो सेवह सत मरार से पवजल तर गया, जो बोले हर हर नाऊ तिन जम छड गया। से दरगाह पैदे जाहे जिन्ना हर जप लया, हर सेवह से पुरख जिन्ना हर तुदमया। गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पहु गया। श्लोक महला तीजा। थाले विच तै वस्तु पयो हर भोजन अमृत सार, जित खादै मन तृप्ति है पाइए मोख द्वार। एहो भोजन अलभ है संतो लभै गुर विचार। ए मदावनी क्यों विचों कढ़ी है सदा रखिए उर धार। ए मदावनी सतगुरु पाई गुरसिखा लदी पाल। नानक जिस बुझाए सो बुझसी हर पाया गुरमुख काल। महला तीजा। जो तुर मेले से मिल रहे सतगुर स्यों चित लाए, आप विछोड़न से विछड़े दूजे पाए खवाए। नानक बिन कर्मा क्या पाई है पूर्व लिखिया कमाई पौड़ी। बह सखियां जस गाव है गावन हारियां, हर नाम सलाहे हो नित हर को।

तो हुए मनमुख पर मैं सहसा हुए अंतर चिंता नींद ना सोए ज्ञानी जाग है सब है सुपाई नानक नाम रतिया बल जाओ पौड़ी से हर नाम त्याव है जो हर रत्या हर एक त्याव है एक इको हर सत्या हर इको वरत एक इको उत्पत्या जो हर नाम त्याव है तिन दर सट कत्या गुरमती देव आप गुरमुख हर जपया सलोक महला तीजा अंतर ज्ञान ना आयु जित किस सोजी पाई ऋण डिठा क्या सलाही है अंधा अंध कमाय नानक शब्द पछाणी है नाम वसै मन आय महला तीजा इक्का बाणी इक गुर इको शब्द विचार सच्चा सौदा हट सच

ताव सदा खटिया नाम अपार विख विच अमृत प्रगटिया कर्म पिया मनहार नानक सच सलाही है।

कूड़े आरी रज्ज है कूड़, जो विष्टा काग खावे, जिस हर होए कृपाल सो नाम ते आवे, हर गुरमुख नाम अराद कूड़ पाप लह जावे। सलोक महला तीजा, सेखा चौ चकिया चौ आया, एहो मन इकत घर आन, एहड़ तेहड़ छड तू गुर का शब्द पछाण, सतगुरे अगै टै पौ सब किस जाने।

लायु अंत दुख पहुताय आई अंदरों बाहरों अंधिया सुध न काई पाए पंडित तिनकी बरकती सब जगत खाए जो रत्ते हर नाई जिन गुर कै शब्द सलाहया हर स्यों रहे समाए पंडित दूजै पाए बरकत ना हो।

नानक गुरमुख मिला वढ़ियाईया जे आपे मेल मलाए पौड़ी हर रसना हर जस गावे हरी सुहावनी जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी जो गुरमुख चखे साद सा त्रिपतावनी गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी जिस होवे आप दयाल सा सत गुरु गुरु बुलावनी सलोक महला तीजा हस्ती सिर ज्यों अंकस है अहरण ज्यों सिर दे मन तन आगे राख कै ऊभी सेव करे यों गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काली नानक गुरमुख बुझी है जा आपे नदर करी महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान नानक कुल उदार है अपना दरगाह पावह मान पौड़ी गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइया एक सेवक गुरपास एक गुर कार लाइया जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिन्ना भाओ गुरु देवाइया गुर सिखा एको प्यार गुर मित्ता पुत्ता पाइया गुर सतगुर

पिच्छै सुख नहीं, मर जम्मै वारु वार, तृष्णा कदे ना बुझई, दुबदा हुए खुआर, मुह काले तिना निंदका, तित सच्चै दरबार, नानक नाम विहूणिया, ना उरवार ना पार पौड़ी, जो हर नाम ते आईंदे, से हर हर नाम रते मन माही, जिन्ना मन चेते एक अरादया, तिना एक सबिन दूजा को नाही, से पुरख हर सेम दे, जिन तुर मस्तक लेख लखाही, हर के गुण नित गाम दे, हर गुण गाए गुणी समझाही, वड्याई वड्डी गुरमुखा, गुरपूरै हर नाम समाही, सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर तीजै आप गवाए, शब्द मरह फिर ना मरह, ता सेवा पवै सब थाए, पारस परसे है पारस हुए, सच रह लिवलाए, जिस पूर्व होए लिखिया, किस सतगुर मिले प्रभे आए, नानक गणतै सेवक ना मिले, जिस बख्शे सो पवै थाए, महला तीजा, महल कुमहल ना

मात है अचिंत करे जिस दात नानक गुरमुख हर नाम मन वसै एहा सिद्ध एहा करमात पौड़ी हम ढाडी हर प्रभ खसम के नित गावह हर गुण क्षमता हर कीर्तन करह हर जस सुनह तिस कवला कंता हर दाता सब जगत पिखारिया मंगत जन जनता हर देव हो दान दयाल हुए विच पाथर कृ

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जोग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना सास ग्रास ना विसरै

तीजा बिन शब्दै सुद ना होवे जे अनेक करे सिंगार फिर की सार ना जाने दूजे पाए प्यार साख सुत साख लखणी नानक नारी विच कुनार पौड़ी हर हर अपनी दया कर हर बोली बैणी हर नाम त्याई हर उच्चरा हर लाहा लैणी जो जप दे हर हर दिन सरात तिन हौ कुरबैणी जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या तिन जन देखा नैणी हौ वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन मेलिया सैण सलोक महला चौथा हर दासन स्यो प्रीत है हर दासन को मित हर दासन कै वस है ज्यो जंती कै वस जंत हर के दास हर त्याईंदे कर प्रीतम स्यो नेव कृपा कर कै सुनो प्रभ सब जग मह वरसै मेह जो हर दासन की उस्तत है सा हर की वडियाई हरे अपनी वडियाई भाम दी जन का जयकार कराई सो हर जन नाम त्याईंदा हर हर जन एक समान जन नानक हर का दास है हर पैज रखो भगवान महला चौथा नानक प्रीत लाई तिन साचै तिस बिन रहन ना जाई सतगुर मिलै ता पूरा पाई है हर रस रसन रसाई पौड़ी रैन दिन सप्रभात तू है ही गावना जी जंत सरबत नाउ तेरा त्यावना।